ब्लैक मूवी का ये गाना था अलका याग्निक की आवाज में, एकदम से मैं ब्लैंक हो गया था। खैर, गर्मियां बस जो है जाने ही वाली हैं और सर्दियां शुरू होने वाली हैं, फिर हम दिल्ली वाले जो है

कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर के बढ़ने के प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुके हैं हमारे आज के प्रातःकालीन प्रसारण सभा। दोस्तों, आज है साल 2026 सितंबर महीने का शनिवार दिन और तारीख है 5। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गैर अतर और तकनीकी अभियंता तनातुम। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए गालो डायलेक्ट न्यूज, अपने क्षेत्र समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप अताने दालत न्यूज, 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम्स, जहां आपको मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन दालत न्यूज़।

0: 7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में। आज 8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ। 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज। नौ बज के 5 मिनट रहेगा इंग्लिश न्यूज। 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स मूवी रिव्यूज़ ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.5।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना।
2: शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य 7 केंद्र शासित

0: प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
0: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो दोस्तों इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत जिनके साथ आप महसूस करेंगे एक अलग ही सुकून। सुनिए और खुद को इस खूबसूरत माहौल में खो जाइए।

0: दोस्तों, ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कहीं मत जाएगा, अब आप सुन पाएंगे कालो भाषा में समाचार।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर है तानगा दमरो गम जब दोला जित पोल ग लोंग नाने तेरे अरसो का गलो मेकेन अगम मिलेन जी रे मेनकेन मेन जी नंगो गुमार लेन दो। प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी भारत स्पेस सेक्टर गादिगा सैटेलाइट जीएसएलवी एफ 17 ने तले तलो दर दब बोन में खादु कोला गोम तरो ब को एक तो निर्मल मोदी से मिता लोकम मेकेन ना सिग इसरो ग ला इंडस्ट्री ग लकेन ब मदुम दोला मोले नाम बम दोला साइंटिस्ट गादिगा तुको पिनी सिग आरसी ने मकी मोको को छेनम पान ब दागरुए बम दोला सबदादा रॉकेट सैटेलाइट और फाइटर प्लेन लोग मोबाइल तो कमला रघुता गे बा सिलो का टीचर्स डे आलोम ने पालन दुकला गवर्नर के टी फरनाइक अरुणाचल प्रदेश और नरो टीचर्स गादम ने टीचर्स डे आया गम ने जिलेन दो टीचर्स गादे नोनु गदिंच को सिब आपाव गादम ने आई गा छेनाम पान माल जब मेंटम रितम नाम अमने खा कादो ला माज ब कालिक दुना के अमला मेंटम तातो मेंटा ला टीचर्स ग ड्यूटी सिगे मुंब मदो ब्रुमासो को स्कूल आव गादग nem katom tam tatom nam laga ba teachers ngoy ay ga ejeb na dre kam pa dub gap lage o ka tolok bolok almana ago mai mem plaig ma renam dur mam na tarik ta ba rep lag du second rear men disa discipline ava ya ka go do do am la men ken jitu ta ya lo teachers naru am kom aljab iskula ga dam ne pori gala bentom ritom to kam dula chenma denam kom chendak ba game changer ba rut kam la go bonor bu ya dinch jab men dik ta tu deputy chief nisa nu chona men luga lolo चौकम लोग्यान भारत अमला कोरुम खोलोग आतव ग लागविन ब दोयनी तो मेला कुनम ने अल्लु ब लाची लामो दोकब अमला लोदुम ग तो दोना लोलो ताई कामती ओ कशिंगफो ग दिग अलाक लागविन ब दोयु एनम अमने इशकेनिंग नान मशीन ग कोम मोकोग जितो दिशियम निर्मल छोना मेन बे सिगिम दिनचिना ब खादोला ज्ञान भारत मिशन सिगी कोरुम खोलोग दोयु अमने दोबे मोलप अमला रिदु नाके अम तो ओकनोनोग लोकम योना दोयनी तोम रॉक्सी तल्ले ओक अतुआ मा कादुर हमने का मिशन लो आला जिलिप तो कम तो ओक मेंठाला ज्ञान भारत मिशन सिगिम ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले लोकर रिगदुना कम तो बरो केन लोग लोअर सेंग डिस्ट्रिक्ट लोक बाउंड्री बाब लोक तू तू में हमने खाला सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ओक ट्राइबल अफेयर्स का निगम निर्मु केंटो जी ने बुया हिमे ओक गर्मे डोलो इंगो दोला याचुला इजानोनो ये लाचिन रोग मेनु रुयो का अमला रोग तो यो लगा सो का बाउंड्री लगा बे तो तू मे को लो बदा अम ने पातुम रकम दम नाम ब इनाम छान ब रुकेन मा दो सिगिम ने इजंग नु नीलेन ब जुरुप दो ब मे लातु नाम ब के अम दा ओ का सोशल मीडिया लकम तलोक ब्लॉक आगो मै जाब्रु यो का नु याचु लो का जापा देला अम दुला दोन्या लो डेप्युटी स्पीकर निर्मल खादो निगोर एमएलए निर्मल पेशी जिलेन एमएलए निर्मल तोजिर खादो ताया लो गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन गालो वेलफेयर सोसाइटी लोअर सियांग यूनिट एकोम इमिंगला अगोमायम ने तादु मिंगतु तनगादुन गालो बेंके नागोम सि नाखासवाणी ठानगर लोक तफादु तिराब डिस्ट्रिक्ट केटी डोलो लोक गाडी को दुग्लो को एमडम कोवरम ने तादुला 25 सेक्टर असम राइफल गाद ग बटालियन गाद बुबाब जुकरला गाडी दुग्लो नम ने दादब पुलेन जिला को नीगा दम कम काची कामतु अलबरिला सिगिम ने असम राइफल गाद कम नियम सेंब दादा कादो मिसी दो नाके अमला कातम गेबा लुगो अलोरो तवान डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी कमिश्नर निर्मल नाम गया लांग मो लफीना ब डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी का कबा दुकुम हमने डीसी का कॉन्फ्रेंस हॉल दो ग दोला कबा दो तक लो डीसी निगम ब नारो डिस्ट्रिक्ट द योना सेंट्रल ओक स्टेट लोक फंड गो जिलेन दाक एमले लेट्स एमपी लेट्स ओक अनटाइट फंड दाक सोक आइन मुर को सोक अगर रिनम हमने अल्ले ब क्वालिटी खाद ब मोरु तो काम ल रोगो तो ओक डिपार्टमेंट एम कम लपा लपा लो इंगो दोला तारीख ताब रिरु दुना ब्रेगम कम कागो तो काम गेबा दोना लोलो नारुआ आयोग छेना ममने मेंटो मिनसे दोला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट लगा ब नारुआ मदुम रु लकामला देसी निगम बुया दिन जाब दोयुता तो मयोग निदो तुतव ओकलोक लिकावाली गला बासर पेंको ग 25 किलोमीटर ओक सिजी गला मग ग पेंको लोक बदायम ने दीद रइंग कुनबे इजा गाडी गोरा इंपो कुमा ब दोदु कुना कामला मेंकिन जितो सिगिम काला तले को दे पुति मारम ने तोलो बोलो इमम यो कामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फेला लका कोम दिंच जा बरोगतो मेट्रोलॉजिकल सेंटर ठानेगर ईस्ट कामिंग लोअर सुबनसिरी पाके केशांग पापुम पारे सीयोमी नामसाई छांगलांग ओका तिराप डिस्ट्रिक्ट गाचोगो निदो दो दोर दो गुम तीत बर दे दो अमला बैंकें जी तो क तान का दशर बगलों में के नागुम अग रेडियो ठान का दम लिखेंगो दा रोगाम जब हम दोला सिर्फ गलो पिगो ये गमने उन गौरव दोला काजुमनो तातु यारू बंदर बेकर बागर गलो का गोगीर को ताला जो

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार। एक प्यारी सी भीगी हुई सुबह का नमस्कार मेरे दोस्तों। अभी आप रूबरू थे, जैसे कि मैंने कहा, गालो समाचार। और अब घड़ी की सुइयों के साथ शुरू होता है हमारा और आपका बेहद अजीज सिलसिला सुबह से पहले, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM पर।

0: जरा खिड़की का पर्दा हटा कर देखिए, हवा में घुली है मिट्टी की सौंधी सी महक, पहाड़ों को धो रही है बारिश की हर एक झलक। ये खामोश सुबह, ये बूंदों का साज, जैसे कह रहा हो दिल से, आज शुरू करो एक नया आगाज। वैसे कमाल का मौसम है ना आज ईटानगर में। खिड़की के कांच पर फिसलती हुई ये बूंदे, बाहर हरी भरी वादियों पर लिपटा हुआ कोहरा और ऊपर से शनिवार का दिन वीकेंड की आहट, ऐसे रोमांटिक मौसम में दिल के तार चिर जाते हैं। मन करता है बस बिस्तर से लिपटकर पुराने गीत सुने या हाथ में चाय का गरम प्याला लेकर खामोशी से इस रिमझिम को देखते रहे। वैसे एक बात सच बताऊं दोस्तों, मुझे पता है वीकेंड का जश्न अक्सर कल रात से ही शुरू हो चुका होगा। बहुत से लोगों की महफिल जम चुकी होगी और शायद मेरे कुछ प्यारे दोस्तों का वीकेंड सेलिब्रेशन तो रात से लेकर इस भीगी सुबह तक लगातार चल रही होगी। लेकिन दोस्तों, एक दोस्त होने के नाते एक मशवरा जरूर देना चाहूंगी। रात की मस्ती को सुबह तक खींचकर ग्लास भरना कोई समझदारी नहीं। सुबह सुबह जाम चलाना शरीर और दिमाग दोनों पर कितना भारी पड़ता है ये सब हम जानते हैं। इस खूबसूरत शीतल सुबह का असली नशा तो हवा की ताजगी और मिट्टी के महक में है। ग्लास को थोड़ा आराम दीजिए, टेबल से बोतलों को हटाइए और उसकी जगह एक प्याले कड़क अदरक वाली चाय या नींबू पानी का लुत्फ उठाइए। मौसम इतना शानदार है, इसका मजा होश में आकर लेने का अलग ही सुकून है। तो दोस्तों, रोमांस सिर्फ बाहर के मौसम से नहीं, खुद से और अपनी जिंदगी से भी होना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है एक तंदुरुस्त शरीर और एक खुशगवार मन। मौसम चाहे कितना भी गीला क्यों ना हो, हम अपने दिन की शुरुआत पूरी ताजगी के साथ करेंगे। तो चलिए इस भीगी हवा में गोलते हैं सुरों की मिठास, सुनिए बरसात का ये लाजवाब तराना।
1: लेटेस्ट अपडेट।

दोस्तों, सुरों की इस मीठी बरसात के बाद आइए बात करते हैं योगा की। बाहर तेजी से पानी बरस रहा है, जमीन गीली है, पर अच्छी बात यह है कि योगा के लिए आपको आकाश के नीचे जाने की जरूरत नहीं है। कमरे का एक कोना, एक चटाई या बस एक साफ दारी काफी है। बरसात के मौसम में मन थोड़ा आलसी और दिमाग सुस्त हो जाता है, इसीलिए हम आसान शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जमीन पर सुखासना या पद्मासना में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। पहले करिए अनुलोम विलोम। दाएं नासिका को अंगूठे से बंद करें। बाएं से धीरे धीरे गहरे सांस लें और दाएं से छोड़े। 5 मिनट ये कीजिए। इसके बाद आइए ब्राह्मरी प्राणायाम पर। कानों को बंद करके बावड़े की तरह गुंजन करें। बरसात के दिनों में जब दिमाग पर थकान छाती है, ब्राह्मरी दिमाग की हर एक नस को शांत कर देता है। अब दूसरा आते हैं मर्जारियासना, जिसे कैटकाउ पोज भी कहते हैं। घुटनों और हाथों के बल चौपाई की तरह बैठ जाइए। सांस लेते हुए पीठ को नीचे झुकाइए और गर्दन ऊपर करें। सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करें और थोड़ी को छाती से लगाइए। बिस्तर पर ज्यादा देर लेटने से जो कमर अकड़ जाती है, ये आसन उसकी जकड़न को तुरंत खोल देता है। और अब आते हैं भुजंगासना, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। पेट के बल लेटकर दोनों हथेलियों को छाती के पास रखिए और धीरे से धड़ को ऊपर उठाइए। ये फेफड़े को खोलता है और मानसून में सांस लेने की क्षमता को बेहतर करता है। चौथा है बालासना, जिसे चाइल्ड पोज भी कहते हैं। आखिर में घुटने मोड़कर आगे झुक जाइए और माथा जमीन पर टिका दीजिए। ये पूरे शरीर और तांत्रिका तंत्र को बिल्कुल सुकून देता है। अब आइए इस सुकून को थोड़ा और गहरा करते हैं इस अगले गीत के साथ।

दोस्तों अब मन शांत हो चुका है पर शरीर को अब भी थोड़ी गर्मी और ऊर्जा की जरूरत है। बाहर बारिश देखकर जॉगिंग का प्लान ड्रॉप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर के अंदर ही इंडोर एक्सरसाइज के जरिए हम 15 से 20 मिनट में पूरी बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। आपके पास कई बढ़िया इंडोर ऑप्शन है जो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चुन सकते हैं। पहला है स्पोर्ट जॉगिंग और हाई नीस। एक जगह पर खड़े होकर 2 से 3 मिनट तक धीरे धीरे दौड़ने की एक्टिंग करें। फिर घुटनों को थोड़ा ऊपर उठाइए, इससे दिल की धड़कन बढ़ेगी और बिना बाहर जाइए कार्डियो का पूरा असर मिलेगा। दूसरा है स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियों की कसरत। अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो बस 5 से 7 मिनट तक आराम आराम से चढ़िए और उतरिए। ये पहाड़ों पर चढ़ने जैसा काम करेगी और आपके पैरों और हिप्स को जबरदस्त ताकत देगी। तीसरा है वॉल सिट एंड स्क्वाट्स। अगर जॉइंट्स पर ज्यादा दबाव नहीं देना तो दीवार के सहारे कमर टिकाकर 90 डिग्री पर चेयर पोज में 30 टू 40 सेकंड के लिए बैठिए, या फिर नॉर्मल 15 से 20 बॉडी वेट स्क्वाट्स लगाइए। चौथा है जंपिंग जैक्स एंड स्किपिंग विदाउट रोप। अगर जगह कम है तो बिना रस्सी के दोनों हाथ और पैर खोलकर जंपिंग जैक्स करें, सिर्फ 50 रैप्स कीजिए, बॉडी में गर्मी आ जाएगी। पांचवा है प्लैंक्स फॉर कोर स्ट्रेंथ। फर्श पर कोहनियों के बल आकर शरीर को लकड़ी के तख्ते की तरह सीधा रखिए। 30 सेकंड से शुरू कीजिए, ये पेट की चर्बी और पेट दोनों के लिए बेहतरीन है। बाहर बादल गरज रहे हैं पर आपके अंदर ऊर्जा गरजनी चाहिए। चलिए इस एनर्जी को बनाए रखते हैं और सुनते हैं एक मस्त तरह।

दोस्तों, दिनों का जोश और शरीर की कसरत। अब बात करते हैं हमारी आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण कड़ी की, मॉनसून हेल्थ टिप्स। बारिश जितनी हसीन है उतनी ही लापरवाही में सेहत पर भारी पड़ सकती है। इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस जल्दी पनपते हैं, इसीलिए इन जरूरी टिप्स को ध्यान से सुनिए और अपनाइए। बारिश में प्यास कम लगती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए, और सबसे जरूरी, पानी को हमेशा उबाल कर ही पिए ताकि मॉनसून के वाटरबॉर्न इन्फेक्शन से बचे रहे। दिन में एक बार तुलसी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी का हल्का काढ़ा या ग्रीन टी जरूर लें। ये सीजनल कोल्ड और वायरल फीवर से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी को बुलेट प्रूफ बना देगा। हम सब जानते हैं कि बरसात में पकौड़े और समोसे खाने का मन बेइंतहा करता है। कभी कभी ठीक है, पर रोजाना तली भुनी चीजों से बचे, क्योंकि मॉनसून में पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है। हल्का गर्म और ताजा पका हुआ खाना ही खाइए। पहाड़ी इलाकों में इस मौसम में गीलापन और सीलन सबसे बड़ी दिक्कत है। गीली छतरी, भीगे जूते और कपड़े कमरे से अंदर ना रखें। अगर भीगे हो तो पहले पैरों को अच्छी तरह सुखाइए और एंटी फंगल पाउडर का प्रयोग करें। आंवला, नींबू पानी और मौसमी जैसे फल खाइए ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मौसम की सुंदरता का आनंद लीजिए, खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्कियां लीजिए, पर अपनी सेहत को सबसे आगे रखिए। वीकेंड शुरू हो चुका है, मुस्कुराइए और दिन को खूबसूरत बनाइए। मैं लेती हूं आपसे विदा, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर, अरुण FM। सो ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कहीं मत जाइए, अभी आप सुन पाएंगे अपतनी भाषा में समाचार।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप रूबरू थे अपादानी बोली में ताजा तरीन समाचारों से। और अब जब घड़ी के कांटे आगे बढ़ चुके हैं, हवा में एक नई हलचल है। ईटानगर की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें धीरे धीरे शुरू हो रही है और चूल्हे पर चढ़ी चाय की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। तो वक्त हो गया है हमारे इस अहम पड़ाव का। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के इस मंच पर। और शुरू हो रहा है हमारा बेहद खास सिलसिला मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। पता है दोस्तों, हर दिन जब हम सुबह उठकर आईने देखते हैं या खिड़की से बाहर देखते हैं, तो लगता है कि बस एक और आम सा दिन है। पर सच

ये है कि कैलेंडर का हर एक पन्ना अपने अंदर हजारों कहानियां, फैसले और मोड़ समेट कर बैठा है। आज 5 सितंबर है। किसी जमाने में इसी तारीख पर अंतरिक्ष में किसी ने एक ऐसी मशीन भेजी थी जो आज भी तारों के पार चल रही है। किसी ने इंसानियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया और किसी ने आने वाली पीढ़ियों के हाथ में कलम थमाकर देश की तकदीर बदल दी। ये प्रोग्राम असल में वही छोटा सा झरोखा है जहां हम सिर्फ पहाड़ों और शहर की चार दीवारी में कैद नहीं रहते, बल्कि दुनिया भर की कशिश और अपने वतन के इतिहास को एक साथ महसूस करते हैं। इन्फॉर्मेशन भी, ताजगी भी और संगीत का ढेर सारा सुकून भी। तो बस अपनी रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, आराम से बैठिए और चलिए इस सफर पर हमारे साथ। पहले सुनते हैं एक बेहद प्यारा गीत।

दोस्तों, संगीत की इस ताजगी के बाद आइए घड़ी के कांटों को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और देखते हैं ग्लोबल हिस्ट्री के पन्नों पर 5 सितंबर की का दुनिया के लिए क्यों इतना अहम रहा है। 1698 में रशिया के एम्परर पीटर द ग्रेट ने आज ही के दिन दाढ़ी रखने पर टैक्स लगा दिया था ताकि लोग वेस्टर्न यूरोप के फैशन को अपनाएं। सोचिए अगर आज ऐसा कोई टैक्स लगता तो हमारे दोस्तों का क्या होता। वहीं 1972 में खेल के इतिहास का एक बेहद दुखदायी दिन जब मुनिक ओलंपिक विलेज में आतंकवादियों ने इजरायली एथलीट्स को निशाना बनाया। इस घटना ने पूरी दुनिया को सुरक्षा के नए मायने सिखाए। 1977 में आज ही के दिन नासा ने अपना हिस्टोरिक स्पेसक्राफ्ट वोयाजर 1 अंतरिक्ष में भेजा था। और कमाल की बात यह है कि आज भी ये सितारों के बीच हमारे सोलर सिस्टम के बाहर घूम रहा है और सिग्नल्स भेज रहा है। वहीं 1997 में आज ही के दिन मानवता की मूर्त मादर टेरेसा ने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनका जीवन हम सबको सिखाता है कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करने ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, जब हम दुनिया के इस इतिहास को देखते हैं ना, तो समझ आता है कि वक्त कितनी तेजी से बदल रहा है। कहीं कोई दाढ़ी पर टैक्स जैसी अजीब बात है, तो कहीं वोयाजर जैसी सितारों तक पहुंचने की कोशिश। जिंदगी में हम कितनी छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं, पर दुनिया कितनी विशाल है। चलिए इसी विशालता को महसूस करते हैं और लौटते हैं अपने मुल्क की तरफ, पर पहले एक खूबसूरत तराना।

चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अपने देश भारत के इतिहास के। 5 सितंबर का दिन हर हिंदुस्तानी के दिल के बेहद करीब है। हमारे देश

के इतिहास के कुछ अहम पन्ने हैं। हमारे दूसरे राष्ट्रपति महान विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म आज ही के दिन 1888 में हुआ था। उन्होंने कहा था कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। हमारे सभी गुरुजनों को हमारा शत शत नमन। पैन एम फ्लाइट 73 के हाईजैक के दौरान 23 साल की फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा बनोत ने 300 से ज्यादा यात्रियों की जान बचाई और आतंकवादियों की गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गए थे। उनकी कुर्बानी आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देते हैं। वही 1991 में आज ही के दिन रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले महान नेता नेल्सन मंडेला भारत आए थे और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, जो भारत और साउथ अफ्रीका के दोस्ती का प्रतीक बना। 2026 में आज ही के दिन देश में रिलायंस जियो की लॉन्च के साथ 4G डिजिटल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिसने हर गांव और पहाड़ तक इंटरनेट को आम आदमी की पहुंच में ला दिया था। दोस्तों, सोचिए जरा, एक शिक्षक जो हमें सही रास्ता दिखाता है और एक निर्जा जो अनजान लोगों के लिए अपनी जान दे देती है। हमारी मिट्टी में कितनी शक्ति और त्याग है। आज वीकेंड है, फुर्सत मिले तो अपने स्कूल या कॉलेज के किसी एक पुराने टीचर को जरूर फोन लगाइए या मैसेज कीजिए। उनकी एक मुस्कान आपके पूरे दिन को रोशन कर देगी। और इसी प्यारे से एहसास के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, सुरों के सफर के बाद अब वक्त हो चला है हमारे अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालने का। आइए देखते हैं दी अरुणाचल टाइम्स के मुख्य समाचार। लोअर सियांग सीमा विवाद पर शांति की अपेक्षा, गालो लेजिस्लेटर ने लोअर सियांग के सीमावर्ती गांव का दौरा किया और सीमा मुद्दे को आपस में बातचीत कर और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की अपील की है ताकि क्षेत्र में भाईचारा बना रहे। राज्यपाल की शिक्षा को नसीहत, टीचर्स डे के अवसर पर गवर्नर महोदय ने सभी शिक्षाओं से आह्वान किया है कि वो सिर्फ पाठ ना पढ़ाइए बल्कि समाज में गेम चेंजर्स बनकर नई पीढ़ी को सही दिशा दे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान, ट्राइबल आइडेंटिटी को लेकर उठाए जा रहे सवालों और कंट्रोवर्सी के बीच डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स और दस्तावेज सामने रखे हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एसआईआर हियरिंग के दौरान बोडुमसा में माहौल अचानक बिगड़ गया और स्थिति हिंसक रूप से बैठी। प्रशासन हालत पर कड़ी नजर बनाए हुए है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने अरुणाचल प्रदेश में 82.41 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार और हमारा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट का ये खास हिस्सा। उम्मीद है आपको ये शनिवार ज्ञान, सुकून और मुस्कान से भरा रहेगा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।

को। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गलकोब कोलाबरीट ला अरुणाचल प्रदेश ग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौनामेन मुयो चंगकम ग ताइकम ती सिंह फो म्यूजियम अरुणाचल पाली विद्यापद स्कूल लो ज्ञान भारतम गा लॉन्च जीपकू अला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर निमी अतुबो ग सोशल मीडिया पोस्ट लोक बिंतम जिलिंदुको। हिमे ओक बोर्डोली लो किलू असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर लगाब यलोंग दूनम लगाब सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर केंटो जिनी हिमे ओक गर्मेलो अंकर जिला लोकल रेसिडेंट दे दे गलकोब गम ओगु बिनला नी मनंग मनंगा असम अरुणाचल बॉर्डर इशू लगाब तमसर जिला सी अचलब सेंसिटिव मैटर रनम लगाब अलब मीटिंग ओगु दुंगला रिबोलो अलेरे अलाबिम पादुको। मिनिस्टर केंटो जिनी गलकोब अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली ग कार्डो निग्योर लोकल एमएलए बरिने पासी जिलेन ओक तोजीर कादू का सो एरिया गा अंकर ला नी दे दे गा तमसर जिपको अला बिम्पालेंदुको। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ला स्टेट फंडेड स्कीम्स तवांग लो आने दे दे गा रिव्यू दुब मयो तवांग डेप्यूटी कमिश्नर नामग्याल अंगमो फोर्थ डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी मीटिंग गा तवांग डिस्ट्रिक्ट ग डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल लो दुंगपाम गो पाम्बंग जिला रितुको। एमएलए लेज MP led ok United Fund lok flagship program de denga review dub ok project de denga time lo mudub department de denga order nga si jilin paku ala bimpa linduku। किलो थर्सडे आलुलो निदो इसी अचलब ओनम लगाब सी दिरांग लोक तावांग लामदा सी धर्मक पकु अला बिम्पा लेंदुको। हो लगाब बनु लामदा लोक नोटिफिकेशन आमा दे दे बोलो उंतुंग चांग रिमा बक अला सी बिम्पा लेंदुको। हो कोचिंग ब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोक बिम्पा कुनम सी लिखाबली बासर ओक आलो लामदा का सी निदो अचलब ओनम लगाब धर्मक पकु अला बिम्पा दुको। हो लगाब बनु लोम लोपी लगाब लमदा लोक अंतुंग चांग रिमाबक अला बिम्पादुको। ईटानगर मेट्रोलॉजिकल सेंटर लोक ईस्ट कामिंग लोअर सुबनसरी पाके केसांग पापुमपारे सीओमी नामसाई चांगलांग ओक तिराब डिस्ट्रिक्ट ना येलो अलर्ट ब सी इशू जीपको अला बिम्पालेंदुको। सेलोगा तागिंग निंग बिनसेका हबो।

0: Menang menang nga si tegap si gamgo aku tepai. Si alemane lema aku HIV oi loke yonam chonam la. Ane loke kulo aduku alabim palinduku. Aberitola lako berdungla acin ugumala donang tengnam loke so HIV si ninga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga berbenu so lema nga pamu maduba atuboga ayag nga aleba nichiko hospital lo cek laka. Gam rodu bermengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Naharlagan lo ke bimpalinduku.
1: नमस्कार दोस्तों, एक बेहद सुकून भरी सुबह मुबारक हो मेरे प्यारे श्रोताओं। अभी आप जुड़े हुए थे तागिन बोली में ताजा समाचारों के साथ, और अब वक्त ठहर चुका है एक ऐसी महफिल के लिए जहां लम्हे जिंदगानी बन जाती है और पुरानी यादें दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू, और शुरू होता है आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम का वो सिलसिला जिसका इंतजार हर आशिकी मौशिकी को रहता है सदाबहार। कहीं पढ़ा था मैंने कि बरसात का और पुराने संगीत का रिश्ता अकेलापन का सबसे हसीन मरहम

0: आज जरा अपने आसपास नजर डालिए। ये भीगे हुए पैर हवा में तहरते हुआ गीला कोहरा और जो धीरे धीरे पहाड़ की ढालनों से नीचे उतर रहा है और छत की चाजों से बरसते हुए मोती जैसे खतरे। मौसम ने आज पूरी ईटानगर को जैसे किसी महबूब के आंचल में समेट लिया है। ऐसी भीगी फिजाओं में नए दौर का शोर थोड़ा बेअसरदार सा लगता है। ऐसे में तो दिल सिर्फ वो धुने तलाशता है जो दिल के आर पार उतर जाए, वो नगमे जो शायद बरसों पहले लिखे गए थे लेकिन आज भी जब गुनगुनाओ तो लगता है कि बस आज सुबह हमारे लिए ही तरसे गए हैं। तो अगर आपके हाथ में चाय का प्याली आ चुका है, खिड़की का कांच थोड़ा सा धुंधला गया है, तो बस अपनी उंगली से उस कांच पर एक दायरा बनाइए, बाहर झांकिए और डूब जाइए इस सुनहरी संगीत के आगोश में। सुनते हैं सदाबहार का ये पहला लाजवाब नगमा।
1: डाउनलोड करिए
2: रूप तेरा मस्ताना

0: दोस्तों क्या लाजवाब मिठास थी इस गीत में, जैसे ठंडी बूंदों के बीच किसी ने गर्म शॉल उड़ा दी हो। लेकिन इस रूहानी मौसम का आनंद लेने के साथ साथ हमारे पहाड़ों पर सावधानी और मौसम की जानकारी सबसे जरूरी पहलू बन जाता है। आइए अब जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ईटानगर की तरफ से जारी किया गया आज का विस्तृत वेदर फोरकास्ट। सबसे पहले बात हमारे अपने शहर ईटानगर और कैपिटल कॉम्प्लेक्स की करते हैं। कैपिटल रीजन में सुबह से आकाश पूरी तरह घने काले बादलों से घिरा हुआ है। हवा में नमी का स्तर लगभग 88 से 94% तक दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से ठंडक और सीलन का असर साफ महसूस किया जा सकता है। IMD के अनुसार आज पूरे दिन रुक रुक कर मध्यम से लेकर तेज बारिश जारी रहने की पूरी संभावना है। दोपहर के वक्त कुछ हिस्सों में एक दो तेज स्पेलिया या थंडर एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। आज ईटानगर का अपेक्षित अधिकतम तापमान लगभग 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान गिरकर लगभग 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक आने का अनुमान है। मौसम की इस शीतलता को दिल में महसूस कीजिए और चलिए यादों की गलियों में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस अगले एवरग्रीन नगमे के संग।
1: शिमारू के नए

स्टेट वेदर बुलेटिन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मॉनसून ट्रफ का प्रभाव बना हुआ है। बे ऑफ बंगाल से आने वाली नम हवाएं सीधे हमारी पहाड़ियों से टकरा रही है, जिससे पूरे राज्य में रेनफॉल एक्टिविटी तेज बनी हुई है। वेस्टर्न अरुणाचल यानी तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। विशेषकर बालूपुंग से बोमडिला और सेलापास के रास्ते पर विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक सीमित गई है। आकाश में लगातार हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे ऊंचाई वाले हिस्सों में ठंडक काफी बढ़ गई है। वहीं सेंट्रल बेल्ट जैसे पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, कुरुंगकुमे, इस बेल्ट में मध्यम से भारी बारिश का येलो वॉच रखा गया है। नदी नालों जैसे दिक्रोंग और सुबनसिरी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। ईस्टर्न और फुटहिल डिस्ट्रिक्ट जैसे ईस्ट सियांग, पासीघाट, लोअर दिबांग वैली, लोहित, चांगलांग और रोइंग के फुटहिल इलाकों में पिछले 24 घंटों में काफी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। आने वाली 24 से 48 घंटों में यहां पर थंडरस्टॉर्म के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने ट्रैवल करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बारिश के चलते स्लिपरी रोड्स और सेंसिटिव स्ट्रेचेस पर रॉक फॉल या माइनर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। इसीलिए पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त हेडलाइट्स ऑन रखें, रफ्तार धीमी रखें और रिवर साइड या फ्लड प्रोन एरियाज में जाने से परहेज करें। मौसम चाहे कितनी भी बेचैन हो, पर आपके मन का सुकून हमेशा कायम रहना चाहिए। चलिए इस खूबसूरत सफर को मुकम्मल करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जो दिल के हर तार को छू लेता है।

दोस्तों क्या बात है, संगीत जब हवा में घुलता है तो हर एक बूंद शायरी बन जाती है। तो बस दोस्तों, बरसात की इस मीठी ठंडक का आनंद लीजिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए, गर्मा गर्म चाय का घूंट भरिए और अपनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरिए। सदाबहार में आज के लिए बस इतना ही। मैं अब लेती हूँ आपसे विदा, पर आपका और संगीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप सुनते रहिए अपना मनपसंद स्टेशन आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM, जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO 10 कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और

0: में हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
4: India believes that endless war.
5: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। एक सौ

0: 64 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
2: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
3: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
5: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का ये बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन US उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अब वक्त है आज के हेलो ईटानगर का। हेलो ईटानगर एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम अपने आसपास की दुनिया से जुड़े उन विषयों पर बात करते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और सोचने के लिए भी जरूरी है। यहां बात होती है एजुकेशन की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, एनवायरमेंट की, हेल्थ और सोसाइटी से जुड़े मुद्दों की और उन छोटी बड़ी बातों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किसी न किसी तरह प्रभावित करती है। हर एपिसोड में कोशिश होती है कि किसी एक विषय को थोड़ा करीब से देखे, उसके बारे में जाने, उससे जुड़े सवालों को समझे और शायद प्रोग्राम खत्म होने तक उस विषय को देखने का हमारा नजरिया भी थोड़ा बदल जाए। तो अगले कुछ मिनटों आपके साथ इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू और आज का विषय है ऐसा जिसे हम इसे शायद ही कोई अनजान हो। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा शख्स जरूर रहा है जिसने हमें कुछ सिखाया हो, किसी ने हमें पहली बार किताब पढ़ना सिखाया, किसी ने हमारी गलती सुधारी, किसी ने सवाल पूछने की

आदत डाली, और कभी किसी ने सिर्फ एक छोटी सी बात कहकर हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया। जी हाँ, आज बात होगी टीचर्स और एजुकेशन की, क्योंकि आज है 5 सितंबर टीचर्स डे। लेकिन आज हम सिर्फ टीचर्स डे की शुभकामनाएं देने या टीचर की तारीफ करने तक अपनी बात सीमित नहीं रखेंगे। आज हम एक थोड़ा बड़ा सवाल उठाएंगे, आखिर एक टीचर का काम क्लासरूम की चार दीवारों के बाहर कितना दूर तक जाना है? क्या टीचर का काम सिर्फ सिलेबस पूरा करना और स्टूडेंट को एग्जाम के लिए तैयार करना है, या फिर एक टीचर अनजाने में ही सही पूरे समाज के फ्यूचर को तैयार कर रहा होता है? आज के हेलो ईटानगर में इसी पर बात करेंगे, द टीचर बियॉन्ड द क्लासरूम, यानी कैसे एजुकेटर्स सिर्फ स्टूडेंट को नहीं बल्कि सोसाइटी को भी शेप करते हैं। और आज के डिजिटल दौर में जब इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पर मौजूद है, टीचर की भूमिका भी बदल रही है। कभी टीचर इन्फॉर्मेशन का प्राइमरी सोर्स हुआ करते थे, आज एक स्टूडेंट के पास गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्सेज और AI जैसे कई सोर्सेस हैं। तो फिर टीचर की जरूरत कहाँ रह जाती है? शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल जाना और सही इन्फॉर्मेशन को पहचानना दोनों अलग बातें हैं। आज की टीचर सिर्फ ये नहीं बताता कि आंसर क्या है, वो ये भी सिखाता है कि सवाल कैसे पूछना है, इन्फॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई करना है, किसी क्लेम पर अंधा विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ कैसे करना है। तो अगले कुछ मिनट हम बात करेंगे उस टीचर की जो क्लासरूम से बाहर भी अपने स्टूडेंट के साथ बना रहता है, उनकी सोच में, उनकी डिसीजन में, और आखिरकार उस सोसाइटी में जिसका हिस्सा वो स्टूडेंट बनने वाले हैं। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के हेलो ईटानगर, और पहले सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, टीचर का नाम आते ही हमारे दिमाग में आमतौर पर एक क्लासरूम का सीन आता है। ब्लैक बोर्ड, चौक या मार्कर, बुक्स, नोटबुक्स और स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम थोड़ा गौर करें तो टीचिंग का मतलब सिर्फ किसी सब्जेक्ट को समझा देना नहीं है। एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स सीखता है, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीख रहा होता है। साइंस पढ़ता है तो सिर्फ फॉर्मूलास या डेफिनेशन नहीं सीखता, वो ऑब्जर्व करना और एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन तक पहुंचना भी सीखता है। हिस्ट्री पढ़ता है तो सिर्फ डेट्स याद करना ही एजुकेशन नहीं है। हिस्ट्री हमें यह समझाने का मौका देती है कि डिसीजन और इवेंट्स का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। लैंग्वेज पढ़ता है तो सिर्फ ग्रामर नहीं सीखता, अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना भी सीखता है। यानी एक सब्जेक्ट के पीछे कई लाइफ स्किल्स छुपी होती हैं, और इन स्किल्स को डेवलप करने में टीचर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक अच्छा टीचर स्टूडेंट को हर सवाल का आंसर देने के बजाय कभी कभी उससे सही सवाल पूछना सिखाता है, और शायद यही एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि अगर स्टूडेंट सिर्फ आंसर याद करेगा तो उसकी लर्निंग एक एग्जाम के साथ खत्म हो सकती है, लेकिन अगर स्टूडेंट सोचना सीख गया तो लर्निंग जिंदगी भर चल सकती है। अमेरिकन एजुकेटर और फिलोसोफर जॉन ड्यूवी ने एजुकेशन को सिर्फ प्रिपरेशन फॉर लाइफ नहीं बल्कि लाइफ का एक हिस्सा माना था, और इसी थॉट को हम आज के क्लासरूम में भी देख सकते हैं। स्कूल में जो स्किल्स डेवलप होती है वो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखती, वो बाद में डिसीजन में भी दिखती है, रिलेशनशिप में दिखती है, वर्क प्लेस में दिखती है, और सोसाइटी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी दिखती है। इसीलिए एक टीचर का इम्पैक्ट मार्कशीट से बहुत बड़ा होता है।

दोस्तों, एक टीचर डायरेक्टली सोसाइटी को कैसे बदलता है? इसका जवाब एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। आज एक टीचर एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, कल उन 50 स्टूडेंट की अपनी अपनी जिंदगी होगी। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई टीचर खुद बन सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई गवर्नमेंट सर्विस में जाएगा, या फिर कोई फार्मर के रूप में नए मेथड्स अपनाएंगे, या फिर कोई आर्टिस्ट, या फिर कोई जर्नलिस्ट होगा, और कोई शायद किसी एक प्रोफेशन में ना जाकर अपने परिवार और कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। लेकिन इन सबके डिसीजन में उनके एजुकेशन का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर होगा। इसीलिए टीचर का इन्फ्लुएंस एक चेन की तरह होता है। टीचर स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करता है, स्टूडेंट अपनी फैमिली और कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करता है, और धीरे धीरे वही इन्फ्लुएंस सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, इसीलिए टीचर का कंट्रीब्यूशन भी हमेशा इमीडिएटली विजिबल नहीं होता। एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को ट्रीट करता है तो अक्सर हम डॉक्टर का काम देख सकते हैं। एक इंजीनियर जब ब्रिज बनाता है तो ब्रिज हमारे सामने होता है, लेकिन टीचर ने जिस स्टूडेंट को कभी सालों से पहले एनकरेज किया था, उस एनकरेजमेंट का इम्पैक्ट शायद डेकेड्स बाद सामने आएगा।

दोस्तों, आज की दुनिया में एक और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस। एक वक्त था जब किसी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था, बुक्स ढूंढनी पड़ती थी, टीचर से पूछना पड़ता था। आज वही इन्फॉर्मेशन कुछ सेकंड में स्मार्टफोन पर मिल सकती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन का इतना इजीली अवेलेबल होना एक नई प्रॉब्लम भी लेकर आया है। हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती। इंटरनेट पर एक ही टॉपिक पर कॉन्ट्रोडिक्टोरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सोशल मीडिया पर कोई क्लेम वायरल हो सकता है। एक एडिटेड वीडियो को ओरिजिनल कंटेक्स्ट से अलग करके शेयर किया जा सकता है। एआई किसी सवाल का कॉन्फिडेंट आंसर दे सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंट आंसर का मतलब ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर नहीं होता। तो डिजिटल एज में एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकता है, उसे ये भी आना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, क्या सोर्स रिलायबल है, क्या सोर्स इन्फॉर्मेशन रिसेंट है, और क्या हमें इसे शेयर करने से पहले वेरीफाई करना चाहिए। यहां टीचर की भूमिका और भी इम्पोर्टेंट आ जाती है। आज टीचर इन्फॉर्मेशन का गेटकीपर कम और गाइड ज्यादा है। टीचर स्टूडेंट को हर आंसर खुद देने के बजाय उससे आंसर तक पूछने का तरीका सिखा सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट ने क्रिटिकल थिंकिंग सीख ली, सवाल करना, वेरीफाई करना, एनालिस करना, तो वो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अडॉप्ट कर सकती है। इसीलिए टेक्नोलॉजी टीचर की जगह नहीं लेती। टेक्नोलॉजी टीचर के पास एक नया टूल जरूर लेकर आती है, और एक अच्छा टीचर स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर नहीं, रिस्पॉन्सिबल यूजर बना सकता है। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग जैसे वर्ड्स बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर बात पर शक करना नहीं है। इसका मतलब है किसी बात को एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में सोचना, सवाल पूछना, एविडेंस देखना एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट समझना। एक एजुकेटेड सोसाइटी वो नहीं जहां सब लोग सवाल का आंसर जानते हो। एक एजुकेटेड सोसाइटी वो है जहां लोग सवाल पूछने से डरते ना हो, और टीचर्स उन कल्चर को डेवलप करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब आते हैं आज के थीम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा पर, द टीचर बियॉन्ड द क्लासरूम। एक टीचर का इन्फ्लुएंस सिर्फ स्कूल के गेट तक नहीं रुकता दोस्तों, वो स्टूडेंट के बिहेवियर में जाता है, उसके डिसीजन में जाता है, उसके कम्युनिकेशन में जाता है, और कभी कभी उसके करियर चॉइस में भी। एक टीचर जो क्लासरूम में स्टूडेंट को दूसरों की बात सुनना सिखाता है, वो इनडायरेक्टली एक बेटर लिसनर डेवलप कर रहा है। और जो टीचर स्टूडेंट्स को अपनी गलती एक्सेप्ट करके उससे सीखना सिखाता है, वो उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल दे रहा है।

एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ कितना जानते हो नहीं हो सकता, ये भी मैटर करता है कि आप जो जानते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे इग्नोर करते हैं या सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों में टीचर का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं नजर आता है।

0: दोस्तों 5 सितंबर को हम टीचर्स डे इसीलिए मनाते हैं क्योंकि ये डॉक्टर सर्वेली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी है। वो फिलोसोफर, स्कॉलर, टीचर और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका जीवन खुद एजुकेशन और टीचिंग की इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन टीचर्स डे का मतलब सिर्फ एक दिन टीचर को विश करना नहीं होना चाहिए। अगर हम सच में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं तो हमें टीचर्स के रोल को भी समझना होगा। तो दोस्तों बस आज हेलो ईटानगर में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। यह आकाशवाणी ईटानगर कारून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये शिक्षक 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
1: India believes that endless war.
2: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से भेंट की थी। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के इलाकों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। सरकार ने ISO 10 कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनर को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया है। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से

वेलकम बैक दोस्तों। दिल्ली से राष्ट्रीय समाचार का दौर यही पूरा हुआ। सुबह खैर और सुप्रभात, मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। और अगले एक कुछ मिनटों के लिए शुरू हो रहा है हमारा खास दौर फिल्मी कब्जा। फ्राइडे निकल चुका है दोस्तों, शनिवार की सुबह है और फिल्म इंडस्ट्री में पिछले दो तीन दिनों में काफी कुछ ऐसा घटा है जिस पर बात होनी चाहिए। कल थिएटर्स में दो अलग मिजाज की फिल्में आई हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नए ट्रेलर्स ड्रॉप हुए हैं और पिछले 48 घंटों में कुछ स्टेटमेंट्स और अपडेट्स ऐसे रहे जिन्होंने इंटरनेट पर अच्छी खासी बहस शेयर दी है। इन्हीं सब पहलुओं पर तसील से बात करेंगे बिना किसी जल्दबाजी के और साथ में सुनेंगे कुछ बेहतरीन गाने। शुरुआत करते हैं इस पहले ट्रैक के साथ।

0: फर्स्ट मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
1: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
2: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ आऊँ।

0: राइट ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टक्कर,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कल बॉक्स ऑफिस पर आई बड़ी रिलीजेस की। कल 4 सितंबर को सिनेमा घरों में आई मिर्जापुर द मूवी पंकज त्रिपाठी, अली फैसल और दिव्येंदु को बड़े पर्दे पर देखने के लिए लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे। एक लंबी वेब सीरीज को 2.5 घंटे की फीचर फिल्म में ढालना आसान काम नहीं होता और यही इसके रिव्यूज में भी दिख रहा है। आम दर्शकों को वही रॉ एक्शन, तीखे डायलॉग्स और उनके पसंदीदा किरदार बड़े कैनवस पर बेहद पसंद आ रहे हैं, जिसके चलते ओपनिंग डे पर इसने लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का कारोबार दर्ज किया है। वही फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि स्टोरी थोड़ी रश महसूस होती है क्योंकि इतने सारे सब प्लॉट्स और कैरेक्टर्स को 2 घंटे में रैप करना डायरेक्टर के लिए एक चैलेंज था। फिर भी मास ऑडियंस के लिए ये इस वीकेंड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन चुकी है। इसके मुकाबले दूसरी रिलीज थी अर्शद वारसी की जीवन या भीमा कौन। ये एक सोशल सटायर और कॉमेडी है। अर्शद वारसी ने

डबल रोल निभाकर हंसाने की कोशिश जरूर की है, पर ऑडियंस और रिव्यूअर्स दोनों का कहना है कि स्क्रिप्ट 90s के फॉर्मेट पर चलती है और राइटिंग में ताजगी की कमी है, जिसकी वजह से इस फिल्म को मॉर्निंग शोज में काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। तो थिएटर जाने का इरादा तो हो, इन दोनों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक और मीठा सा गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप। अगर आपका मन भीड़ भाड़ से दूर घर पर बैठकर स्क्रीन देखने का है तो ओटीटी स्पेस में इस हफ्ते कुछ सॉलिड क्राइम थ्रिलर्स ने दस्तक दी है। नेटफ्लिक्स पर 3 सितंबर को आई फिल्म गांधारी, इसे डायरेक्ट किया है देवशीष मखीजा ने, जो हमेशा रियल और ग्रिटी स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। ये एक माँ की कहानी है जो अपनी किडनैप बेटी को ढूंढने के लिए पूरी क्रिमिनल बेल्ट से टकरा जाती है। इस फिल्म का एक्शन स्टाइलाइज्ड नहीं है बल्कि बेहद ऑथेंटिक और पेनफुल लगता है। सोशल मीडिया पर जो लोग सीरियस और डार्क सिनेमा पसंद करते हैं वो इस फिल्म के लीड परफॉर्मेंस की बेहद तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा अगले हफ्ते Z5 पर तिग्मांशु दुलिया की नई वेब फिल्म गमासान आने वाली है। तिग्मांशु का जो रो यूपी बिहार बेल्ट का पॉलिटिक्स और क्राइम दिखाने का स्टाइल है, टीजर देखकर लगता है कि ये फिल्म उसी ट्रैक पर वापस लौट रही है। मतलब डिजिटल स्पेस में एक्शन और मिस्ट्री लवर्स के लिए ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। इस रिव्यू के बाद चलिए सुनते हैं एक और गाना।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पिछले 48 घंटों में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा शोर मचाया है। मुकेश खन्ना ने हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के एक पुराने रिमार्क को लेकर जो पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है, उसने इंडस्ट्री के अंदर और बाहर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने उनके पर्सनल लाइफ और चॉइसेस को लेकर इस तरह के शब्द चुने, उसे लेकर सोशल मीडिया पर आम ऑडियंस काफी नाराज दिख रही है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि एक सीनियर आर्टिस्ट को दूसरे सीनियर आर्टिस्ट के प्रति ऐसी जुबान शोभा नहीं देती। इसके साथ ही उन्होंने रणबीर कपूर के आने वाले प्रोजेक्ट रामायणा पर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि एनिमल फिल्म में जो उनका जो वायलेंट अवतार था, वो भगवान राम के किरदार से कॉन्ट्रास्ट करेगा। इस बात पर अब रणबीर के फैंस और पुरानी जनरेशन के फिल्म लवर्स आमने सामने आ चुके हैं। इंटरनेट पर ऐसी बहस आम हो गई है, पर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर का बैलेंस अक्सर इन बातों से थोड़ा हिल जाता है। माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं इस अगले खूबसूरत गाने के साथ।

दोस्तों गॉसिप और हेडलाइंस के बीच कभी कभी ऐसे सच सामने आते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कल ही एक लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू में श्रेया घोषाल ने उस दौर के बारे में बात की जब वो इंडस्ट्री में नई आई थी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया आने से पहले औरतों के लिए इंडस्ट्री में अपनी बात कहना और एक्सप्लॉइटेशन से बचना कितना कॉम्प्लेक्स और अकेला सफर होता था। आज इंटरनेट ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां आवाज उठाई जा सकती है, जो पहले लगभग ना के बराबर था। वही तापसी पन्नू ने भी कल एक कन्वर्सेशन में खुलकर शेयर किया कि कमर्शियल सिनेमा के प्रेशर में उन्हें कई बार आखिरी वक्त पर अच्छे प्रोजेक्ट से रिप्लेस किया गया, सिर्फ इस बेसिस पर कि उनका बॉक्स ऑफिस पुल किसी मेल लीड के बराबर नहीं समझा गया और लगान के एक्टर अमीन हाजी का एक पर्सनल नोट भी सामने आया जहां उन्होंने बताया कि जब करियर में उन्हें काम मिलना बंद हो गया था तो उनके अंदर का आर्टिस्ट कितना टूटा था और कैसे उनकी फैमिली ने उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। ग्लैमर के पर्दे के पीछे जो इंसानी जिदोजहद होती है उसे देखकर लगता है कि ये सितारा भी हमारे ही तरह आम इंसान है। तो इस गहरी बात को महसूस करते हुए सुनते हैं एक और गीत।

0: वेलकम बैक टू फिल्म गपशप दोस्तों। आने वाले दिनों में क्या नया देखने को मिलेगा, अब जरा कैलेंडर के उन पन्नों पर नजर डाल लेते हैं। अगले फ्राइडे यानी 11 सितंबर को रिलीज होने जा रही है प्रियदर्शन की फिल्म हैवान। सैफ अली खान और अक्षय कुमार लगभग 18 साल बाद एक साथ फ्रेम शेयर कर रहे हैं, पर ट्विस्ट यह है कि इस बार अक्षय कुमार एक फुल फ्लेज नेगेटिव लीड के किरदार में है, जिसके लिए उनका लुक काफी डार्क रखा गया है। कल इसके प्रमोशनल इवेंट पर अक्षय ने सैफ के साथ अपने पुराने शूटिंग दिनों को याद किया और वेटरन एक्टर लेट अशरन जी का इस फिल्म में जो आखिरी कैमियो शूट हुआ था उसे याद करके उनका गला भर आया। वहीं दूसरी तरफ संजय लीला बंसाली की एम्बिशियस फिल्म लव एंड वार, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल हैं, उसके पहले बड़े शेड्यूल का पैकअप कल अनाउंस हुआ है। फिल्म का स्केल कैसा होगा ये बंसाली के सेट से लीक हुई ब्रीफ क्लिप से पता चल रही है। इस एक्साइटिंग अपडेट के बाद सुनिए हमारा ये अगला गाना।
1: तन मन सुलगा

0: उसकी शादी में आई हूँ।
1: अच्छा उसकी शादी मुझसे हो रही है।
0: What?
1: तुम्हें वो कैसे कपड़े कैसे पहन रखे तुमने? बैक पे टैटू तुमने कब बनवाया? और ये गोरा कौन है तुम्हारे साथ?
0: I don't owe you any explanation. हमारा ब्रेकअप हो चुका है, रिमेम्बर?
1: ब्रेकअप? अभी तीन दिन पहले तक तो तुम मुझे बड़े सेंटी एसएमएसेस भेज रही थी, I miss you वाले।
0: तुमने रिप्लाई किया? नहीं ना, बस I got over you.
1: Got over you? तीन दिन में got over you?
0: See, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है। We're free. So let's just enjoy ourselves, okay?
2: Bia, come. Let's dance.
0: Come on.
1: Bia, नाम भी बदल लिया?
3: भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हो? डांसिंग भाई, सब डांसिंग। ओह नो, लोनली लोनली।

0: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
1: नर्स दीदी क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला, सच में बहुत परेशान हूँ।
0: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
1: सच में दीदी?
0: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों सितंबर का आखिरी हिस्सा और भी बिजी होने वाला है। 18 सितंबर को मेघना गुलजार की डायरेक्टोरियल फिल्म दायरा थिएटर्स में आएगी। इस फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार स्क्रीन पर एक साथ दिखेंगे। दोनों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल प्ले कर रहे हैं और ट्रेलर से लगता है कि ये एक प्रोसीजरल क्राइम स्टोरी है जो सोशल इश्यू को डायरेक्ट टच करेगी। उसी दिन कॉमेडी जोनरा में कुणाल खेमू की फिल्म वाइव रिलीज होने जा रही है, जिसमें प्रीति जिंटा एक लंबे ब्रेक के बाद स्क्रीन पर वापस आ रही है और उनके साथ है स्पर्श श्रीवास्तव। और फिर 25 सितंबर को सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फोल्क फैंटेसी थ्रिलर द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पर्दे पर आने को तैयार है, जो ये बताता है कि बॉलीवुड अब जेनेरिक फार्मूला से आगे निकलकर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए इस अपडेट के बाद सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, नई रिलीजेस का रिपोर्ट कार्ड हो, ओटीटी पर आई कहानियां हो, इंडस्ट्री के अंदर के सच हो या आने वाले दिनों के बड़े प्रोजेक्ट्स, हमने कोशिश की कि पिछले कुछ घंटों का हर अहम पहलू आपके सामने सीधे और आसान तरीके से रखा जाए। वीकेंड का पहला दिन है, चाय पीजिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए और अगर सिनेमा देखना पसंद हो तो अच्छी फिल्मों का इंतखाब कीजिए। फिल्मी गपशप में आज के लिए मैं आपका दोस्त लेती हूँ आपसे इजाजत, जाते जाते आपको छोड़ जाती हूँ इस आखिरी नगमे के साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के साथ। दोस्तों, इस गीत के बाद आप सुन पाएंगे दिल्ली से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहें जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सा में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
1: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
2: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
1: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। केरलम के त्रिशूर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा कल रात केपामंगलम के पन्नाम्बिकन्नू में एक कार के हाईवे पर खड़े एक ट्रक से टकराने से हुआ। कार सवार सभी युवक तमिलनाडु के छात्र थे। स्थानीय लोगों, दमकल कर्मियों और पुलिस ने युवकों को कार से निकाला। उनके शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है।

नमस्कार दोस्तों, दिल्ली से राष्ट्र समाचार के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुबह का सफर आगे बढ़ते बढ़ते अब अपने आखिरी दौर तक पहुंच चुका है और वक्त हो चला है हमारा मॉर्निंग ट्रांसमिशन के आखिरी सिलसिले का, यानी रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, रेडियो सुनने का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है। अभी तक हम अपनी पसंद के गाने और बातें आपसे साझा कर रहे थे, लेकिन इस आखिरी पड़ाव में आपकी फरमाइश, आपकी मैसेजेस और अलग अलग शहरों और पहाड़ों से भेजे गए आपके संदेश हमें मिल चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपके चुने हुए गानों का ये सिलसिला। पहला गाना हम प्ले करने वाले हैं झारखंड के चाईबासा से शिवा गोप जी और उनके पूरे परिवार की फरमाइश पर।

दोस्तों, झारखंड के चाईबासा से अब सीधे रुख करते हैं पड़ोसी राज्य असम की तरफ, जहां से हमारे श्रोताओं का एक पूरा ग्रुप जुड़ चुका है। सुनीता, देवशीष, अमोल, विमोल, बाइकोन, रमेश और लक्की ने मिलकर ये फरमाइश भेजी है। इन सभी दोस्तों की पसंद पर पेश है साल 1992 की फिल्म पायल का बेहद मीठा नगमा, मेरी दुनिया में आना।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, असम से ही हमारी एक और रेगुलर लिसनर प्रिया बोरो ने हमें मैसेज किया है। तो प्रिया, आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं साल 1993 की फिल्म फूल किस से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सजाया हुआ ये प्यारा गीत फूल फूल में बनी है तेरी तस्वीर।
1: एक्सपीरियंस द

चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और यहाँ एक बार फिर हमारी रेगुलर लिसनर मंथली सुनीता जी, देवशीष, अमोल, विमोल, बाइकॉन, रमेश और लकी ने मिलकर अपनी एक और दिलचस्प पसंद हम तक पहुंचाई है। इन सभी साथियों की रिक्वेस्ट पर आइए सुनते हैं साल 2001 की फिल्म कसूर से कुमार सानू का गाया हुआ बेहद मशहूर नगमा कोई तो साथी चाहिए।

0: दोस्तों अब चलते हैं गोलाघाट असम के खूबसूरत चाय के बगानों की तरफ। रोमेश, रूनू और लकी ने मिलकर एक क्लासिक ट्रैक की फरमाइश की है और इस ट्रॉय ने ये गाना खास तौर पर अपने सभी दोस्तों के नाम डेडिकेट किया है। तो दोस्ती के नाम रोमेश, रूनू और लकी की तरफ से पेश है फिल्म वारंट का किशोर कुमार की आवाज में गाया हुआ ये बेहतरीन गीत रुक जाना ओ जाना।
1: डाउनलोड करिए और

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। गोलाघाट के बाद अब रुख करते हैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट असम की तरफ। वहां से हमारे श्रोता सोम तोदू ने अपना पसंदीदा नगमा सुनने की दरख्वास्त की है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में साल 2002 का ये रोमांटिक टाइटल ट्रैक। तो सोम तोदू जी की फरमाइश पर पेश है फिल्म क्या दिल ने कहा से क्या दिल ने कहा।

दोस्तों अगला मैसेज हमें मिला है हेलम असम से और ये फरमाइश भेजी है हमारी रोजाना की रेगुलर लिसनर ज्योति सुरेन। ज्योति आपकी खूबसूरत पसंद को शामिल करते हैं हुए अहम बजाने जा रहे हैं साल 2005 की फिल्म जहर का बेहद मशहूर और जज्बाती नगमा अगर तुम मिल जाओ।

दोस्तों फरमाइश तो हमारे पास अभी और भी काफी आई हुई है, लेकिन वक्त की पाबंदी हमें आगे और गाने बजाने की इजाजत नहीं दे रही है। घड़ी की कांटे बता रही है कि हमारे सेगमेंट का समय यही पूरा होता है। तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा इच्छपित में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गैर अतर और तकनीकी अभियंता तानातू। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे कविता के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा।
1: हो सकता है कि बच्चा शिक्षा में ठीक नहीं होगा, लेकिन परमात्मा ने हरेक को कोई ना कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग।
0: श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके प्रति लगातार जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे अनजाने में ही इसकी चपेट में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक दिवस समाज में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने का अवसर है। ये भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महाशिक्षक बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकुरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से बातचीत की। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers' Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that they should also preserve the child within themselves. He stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
1: अब जैसे ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है, क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है, क्या माइनोरिटी ऑब्जर्व करने में कोई किसी बच्चे में बदलाव नहीं आ रहा है। लगातार मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
3: This year, 82 teachers and educators have been selected for the National Teachers Awards from three departments. These include 48 teachers from the Department of School Education and Literacy, 21 teachers and faculty members from higher educational institutions and polytechnics, and 13 skilled trainers from the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The awardees highlighted the experiences and innovations that have shaped their teaching journey. They shared several creative approaches adopted by them to make classroom learning more engaging and effective. The Prime Minister further underlined that Teachers' Day is about appreciating the strong contribution of teachers to our society and noted that it is also a day to pay homage to Bharat Ratna Dr. S. Radhakrishnan. President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology and adopt innovative teaching methods. In her message on the occasion of Teachers' Day today, the President said that teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through their guidance and mentorship. President Murmu also paid tribute to former President Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. On the occasion, the President will confer National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. Vice President C.P. Radhakrishnan and Home Minister Amit Shah have extended their greetings on the occasion of Teachers' Day. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished center of learning in commerce, economics and management. The government has proposed allowing up to 3-year permissions for importing and transporting petroleum in ISO tank containers and introducing a 7-working-day deemed approval mechanism for complete applications as part of proposed amendments to the Petroleum Rules 2002. The Ministry of Petroleum and Natural Gas issued a draft notification on Thursday proposing the Petroleum Amendment Rules 2026. The External Affairs Ministry has said 3 more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazaar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Ranthir Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. Meanwhile, death toll from the floods in the Himalayan nation has crossed 1,340, while 5,000 still remain missing. External Affairs Minister S. Jaishankar is set to address the annual high-level session of the UN General Assembly on the 26th of this month. Mr. Jaishankar will deliver India's national statement during the afternoon session of the general debate, which will be held from 22nd to 28th of this month. And in women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at the Dubai International Stadium tonight at 8 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
4: आप श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का

में 103.5 मेगाहर्ट्ज से और आज पहली प्रसारण में आपके साथ थी आरजे याजू और हमारे इस दूसरे प्रसारण सभा के साथ है प्रसारण अधिकारी गोपाल राय, तकनीकी अभियंता एचएम भूषण और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी और मैं आपके रेडियो साथी कविता। आप सभी श्रोताओं का हमारे इस दूसरे प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोता दोस्तों, अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम फिल्मी लहर, पर उसके पहले आइए झटपट से नजर डालते हैं हमारे आज के प्रसारण में प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी की ओर।

जैसा कि आपको बताया गया है कि अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम फिल्मी लहर और उसके बाद 11:25 पर आप सुन पाएंगे भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। उसके बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। 12:10 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम यादों की बारात, जो कि खास तौर पर डेडिकेटेड है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। 12:30 पर आप सुन पाएंगे फौजी भाई बहनों का प्रोग्राम गीत माला। 1:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। 1:10 पर आप सुन पाएंगे हिंदी क्लासिक म्यूजिक का प्रोग्राम। 1:40 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गाने। 2:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। उसके बाद हम लौटेंगे 2:30 पर प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s के साथ। 2:58 पर आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस। 3:00 आप सुन पाएंगे मिशमी कमान श्रोताओं का प्रोग्राम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताय खामती श्रोताओं का प्रोग्राम। 3:30 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गाने। 3:40 पर आप सुन पाएंगे वांछोर श्रोताओं का समाचार। 3:45 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गाने।

3:04 आप सुन पाएंगे ईदू मिशमी श्रोताओं का कार्यक्रम। 4:05 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गाने और 4:20 पर आप सुन पाएंगे तकसा श्रोताओं का समाचार। तो ये थी हमारी इस दूसरी प्रसारण में प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में। जहां होती है दिल से दिल की बात। और जैसा कि आज है 5 सितंबर और आज सारा राष्ट्र मना रहा है शिक्षक दिवस। जी हां, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन आज के दिन हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है बतौर शिक्षक दिवस के तौर पर। उनके जीवनी के कुछ रोचक तत्व आइए जानते हैं और साथ ही सुनेंगे हम हिंदी फिल्मी गाने। जी हां, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वे राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान करते थे। वे केवल 2500 ही लेते थे। आगे भी उनके जीवनी के कुछ ऐसे रोचक तत्व के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आइए

सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम फिल्मी लहर में, और आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जी हाँ, जैसे कि आज 5 सितंबर है और सारा राष्ट्र मना रहा है शिक्षक दिवस। उनसे जुड़ी हुई ये भी एक रोचक तत्व है, जैसे कि वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद संभालने वाले पहले इंडियन थे। उन्होंने वहां 1937 से 1952 तक स्प्लैनिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रीजनल एंड एथिक्स के रूप में पढ़ाया। वे 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे और 1962 से 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी। देश की शिक्षा और उनके महान योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्रोता दोस्तों, आइए इस प्रोग्राम में आगे आइए सुनते हैं ये गाना गुरु रंधावा की आवाज में फिल्म तुम्हारी सुलु से।

मेरी श्रोता, इसी गाने के साथ ही प्रोग्राम फिल्मी लहर से दीजिए इजाजत। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का सीधा प्रसारण सुन पाएंगे आप आकाशवाणी दिल्ली से।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
2: तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पूरा।
3: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण दे रहे हैं शोएशार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आइए विज्ञान भवन चलें।
4: सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शोएशार खान और अंग्रेजी में
5: सीधे प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन के भव्य प्लेनरी हॉल से आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवसर है शिक्षक दिवस का और समारोह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का। ये वो अवसर है जब राष्ट्र उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण, नवाचार और सेवा भाव से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस समय विज्ञान भवन का प्लेनरी हॉल देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए शिक्षकों की उपस्थिति से विशेष रूप से गौरवपूर्ण दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों के चेहरों पर उत्साह है, गर्व है, वर्षों की मेहनत के बाद मिले इस राष्ट्रीय सम्मान की खुशी है। आज यहां उपस्थित प्रत्येक शिक्षक अपने साथ अपने विद्यालय की एक कहानी लेकर आया है। किसी के साथ ग्रामीण भारत की कहानी है, किसी के साथ दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने की कहानी है, किसी ने विद्यार्थियों में शिक्षकों की उपस्थिति से विशेष रूप से गौरवपूर्ण दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों के चेहरों पर उत्साह है, गर्व है, वर्षों की मेहनत के बाद मिले इस राष्ट्रीय सम्मान की खुशी है। आज यहां उपस्थित प्रत्येक शिक्षक अपने साथ अपने विद्यालय की एक कहानी लेकर आया है। किसी के साथ ग्रामीण भारत की कहानी है, किसी के साथ दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने की कहानी है, किसी ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है तो किसी ने तकनीक और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा दी है। आज इन सब प्रयासों को राष्ट्र की ओर से सम्मान मिलने जा रहा है। कौशिक।
6: गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दिस एंशियंट मंत्र कैप्चर्ड द रिवरेंस that India has for its teachers. On the occasion of National Teachers Day, from the family of Akashvani and Prasar Bharati, we convey our best wishes to all the teachers of the country who are the builders of Viksit Bharat 2047. And as my colleague Shoaziar Khan mentioned that today we have 48 teachers who excel in their fields and who are building the next generation of India, the leaders of India's tomorrow, who will be guiding us towards Viksit Bharat at 2047. These teachers, as Shwez mentioned, come from far and distant places of India, but every one of them carry a success story. And it is indeed a great moment for all these teachers who will be receiving the National Teachers Award from the Honorable Rashtrapati Ji in just a short while from now. What a pride moment it is indeed for them. And yesterday, the Honorable Prime Minister also interacted with the teachers.

0: And he also took feedback from them about how today's children, especially in schools, are performing. And he also told them to pay attention to those students who spend more time on the screen. So screen time has to be reduced, and this has to be channelized towards sports or other skilling activities. And as we know that Teachers' Day is celebrated on the 5th of September, which happens to be the birth anniversary of India's second president, the philosopher president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the president of India from 1962 to 1967. Dr. Radhakrishnan was an academic of repute, a philosopher, and he was also a statesman. Dr. Radhakrishnan was born on the 5th of September 1888 at Tiruthani of North Arcot District in erstwhile Madras Presidency. His family hailed from Sarvepalli village in Nellore district of Andhra Pradesh, and he spent his early years in Tiruthani and Tirupati. Dr. Radhakrishnan was awarded scholarships throughout his academic life and joined the Voorhees College in Vellore for his high school education. And he graduated from the Madras University at the age of 16. Dr. Radhakrishnan studied philosophy, and he wished to study mathematics also. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan wrote his bachelor's degree thesis on the ethics of the Vedanta and its metaphysical presuppositions. Dr. Radhakrishnan became president of India. Some of his erstwhile students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday. But he replied, "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th of September is observed as Teachers' Day." Thus, his birthday has since been celebrated as Teachers' Day in India. And the Honorable Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu, will arrive at the plenary hall of Vigyan Bhavan in just a short while from now.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, thodi hi der mein Vigyan Bhavan mein 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस कार्यक्रम में प्रत्येक पुरस्कार विजेता के द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को दर्शाने वाले लघु वृत्तचित्रों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रोताओं, 5 सितंबर भारत के लिए केवल एक तारीख नहीं, ये दिन है देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का। इसी कारण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा व्यक्ति के विचारों को विकसित करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है और उसे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसीलिए शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है। श्रोताओं, एक सुंदर विचार है, शिक्षक वो नहीं जो केवल पाठ पढ़ाए, शिक्षक वो है जो जीवन पढ़ना सिखाए। और वास्तव में एक शिक्षक विद्यार्थी को केवल ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो उसे ये भी सिखाता है क्या सोचना है, कैसा सोचना है और सही तथा गलत में अंतर कैसे करना है। यही शिक्षा की वास्तविक शक्ति है। श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश के उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है, इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। श्रोताओं, विज्ञान भवन का यह ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा

0: कर रहा है और अब मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं। माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगुगाहट यहाँ पर अब बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है, कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहां से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रसाद करेंगी।
1: एंड ऑन द डेस वी कैन सी दैट द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर Education, Shri Jayant Chaudhary, Dr. Sukanta Majumdar, Honorable Minister of State for Education and the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, has arrived at the plenary hall of the Vigyan Bhavan and she has been loudly cheered by all the awardees and the delegates who are present at the plenary hall.
0: Yatyant garima mein drishya hai, Bharat ki Rashtrapati is vakat

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए,
1: महोदय आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति से विधिवत अनुमति लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
2: गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित है और पूरे सभागार में सम्मान और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि और शिक्षकगण राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त मंच की तरफ हैं और मंच पर आसीन है माननीय राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी,
2: इस पुण्य अवसर
0: शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंता मजूमदार,
2: पहले 24 पुरस्कार विजेताओं पर हम एक
0: देवश्री मुखर्जी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके अलावा मिस दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है, और श्री टी के अनिल कुमार सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन विद्यालय।
3: एंड नाउ शॉर्ट फिल्म ऑन द फर्स्ट लॉट ऑफ 24 नेशनल टीचर अवार्ड।
4: विज्ञान शिक्षा को नई दिशा दी, उन्होंने वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी, AI इनेबल्ड बायोलॉजी एजुकेशन और QR आधारित ट्री टॉक जैसे नवाचारों से उन्नत स्टेम अधिगम को सुलभ बनाया, जिसके लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सुश्री अमुथा जेनी 22 वर्षों की सेवा में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN समावेशी एवं आनंदमय शिक्षा तथा युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। कम लागत वाली शिक्षण सामग्री एवं KVS फोनिक्स वर्कबुक विकसित किए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री अमुथा जे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: पंजाब के पटियाला स्थित राजकीय विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री दिनेश कुमार ने करीब 25 वर्षों से विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्हें पंजाब स्टेट अवार्ड 2020 और टीचर ऑफ द ईयर ऑफ पंजाब अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान शिक्षा में अपने समर्पित योगदान के लिए श्री दिनेश कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिकलिंग में सुश्री सुषमा तमांग ने दूर दराज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इंस्पायर मानक इंटरनेशनल YRE कंपटीशन और एशियाई सम्मेलनों में सफलता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सुश्री सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के बरमसिया स्थित मिडिल स्कूल बरमसिया में सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी ने कोयला खनन क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सामग्री, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और व्यवसायिक कौशल के अवसरों से बच्चों की सीखने की चुनौतियों को कम किया, जिसके लिए सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के नया ग्राम स्थित गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में श्री शांतनु पात्र ने वंचित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, तकनीक सक्षम एवं अनुभवात्मक शिक्षा को नई दिशा दी। उन्होंने ARVR ब्लेंडेड लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रभावी उपयोग किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शांतनु पात्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: चंडीगढ़ के मलोया कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में श्री रवि जायसवाल ने विज्ञान शिक्षण को नवाचार, तकनीक और अनुभवात्मक अधिगम से समृद्ध किया। उन्होंने कम लागत में CV रमन डोम थिएटर, मोबाइल साइंस लैब तथा पुनर्चक्रित सामग्री से साइंस एंड नॉलेज पार्क विकसित किया। उनके तकनीक सक्षम एवं नवाचारी योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

0: और 2026 से सम्मानित किया जाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार करने में सुश्री लालनुन मावी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजोरम के लंगले स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वेंग हाई स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव आईसीटी टूल्स और फ्री रेमिडियल कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को मजबूत किया। सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए सुश्री लालनुन मावी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुनीता यादव ने छत्तीसगढ़ के खिचड़ी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल आईसीटी उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्योता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित पीएम श्री जीएमएसएसएस में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को ARVR, रोबोटिक्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एवं QR आधारित संसाधनों से युक्त आधुनिक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया। उनके एजुकेशनल पेरेंटिंग अभियान से 150 से अधिक वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहयोग मिला। समावेशी नवाचार, बालिका सशक्तिकरण, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: बिहार के विदायदिह स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉपआउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेल्ली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेल्ली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के पोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी जिसके लिए सुश्री

0: गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यार्थी को भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर, अनुभवात्मक स्टेम एवं एआई सक्षम शिक्षण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक, कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अम्भारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मणिपुर के कोंगबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे ने हैंड्स ऑन साइंस एजुकेशन, लो कॉस्ट लर्निंग टूल और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। उनके विद्यार्थियों ने CSIR इनोवेशन अवार्ड और DSC साकुरा साइंस जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह हिल्स स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित EMRS में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि कृपया यह पुरस्कार अपने कार्यक्रम में प्रदान करें।
3: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स whom a telefilm was played at Vigyan Bhavan, and we can see that the Honorable Rashtrapati Ji, the Union Minister for Education Shri Prahlad Joshi, and the Union Minister of State for Education Shri Jayant Chaudhary, and Dr. Sukanto Majumdar, and other dignitaries are on the dais. And now the first teacher to receive the award is Shri दिव्यंदु सेन फ्रॉम राजस्थान महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पचपहाड़।
4: और अब वो क्षण आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का पुरस्कार वितरण शुरू हो चुका है।
2: दिनेश कुमार पंजाब,
4: चार विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे
3: हैं। श्री दिनेश कुमार फ्रॉम पंजाब विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
2: तमांग सिक्किम।
4: मंच पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। एक एक करके सब शिक्षक
3: सुषमा तमांग
4: पुकारा जा रहा है।
2: मुनमुन भट्टाचार्य जी झारखंड।

0: The Honorable Rashtrapati Ji.
1: Manjri Di Mahajan, Himachal Pradesh.
2: And now, Himachal Pradesh Ki Manjri Ji Mahajan, Maranyi Rashtrapati Ke Samaksh, Apna Puraskar Lene Ke Liye, Bade Utsah Aur Garv Ke Saath Aage Badhti Hui. Maranyi Rashtrapati
1: Jay Prakash Rao, Andaman and Nicobar Islands.
2: And now, Andaman and Nicobar Islands Se Aaye, Shikshak Jyoti. Divyang Hai. माननीय राष्ट्रपति की आवाज हल्के हल्के इस छड़ी के सहारे मरते हुए माननीय राष्ट्रपति उन्हें ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं.
0: रिसीविंग द अवार्ड, व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर जय प्रकाश राव, द टीचर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. एंड दिस इज इंडीड अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द टीचर्स हु आर हियर एट द
1: कुंडा जयवन बच्चाओ महाराष्ट्र.
0: And Ms. Kunda Jayavan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
1: Khushbu Kumari, Bihar.
2: And now, Bihar ki Khushbu Kumari, Maranyi Rashtrapati se apna ye samman grahan karte hue.
1: Archana Shukla, Madhya Pradesh.
0: And from Madhya Pradesh, Ms. Archana Shukla, and she received this award from the Honorable Rashtrapati Ji for her work especially on innovation.
1: Renu Tripathi, Uttar Pradesh.
0: Ms. Renu Tripathi from Uttar Pradesh is Ghaziabad, and she is working for especially school dropouts, STEM and automation among
1: Bhavani her students. Bhavani Bombelli, Telangana.
0: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli, and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
1: Suman Goel, Delhi.
0: To receive the award from the Honorable Rashtrapati Ji, and now Ms. Suman Goel from Delhi, and she specializes on ICT and digital tools in education.
1: Umakant Nayak, Orissa.
2: Rashtrapati ke haathon samman praapt karte hue शिक्षकों के चेहरे पर एक प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है. ये केवल एक पदक या प्रमाण नहीं, ये उनके पूरे जीवन की मेहनत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान.
0: From Puducherry, Mr. Ganeshan S. is receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
1: Mahadev Hanumant Shinde, Goa.
2: गोवा से महादेव हनुमंत शिंदे माननीय राष्ट्रपति से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए.
1: Wanglembam Govind Singh, Manipur.
0: And from the land of jewels, Manipur is Wanglembam Govind Singh.
1: Shri Prasad Arvind Tingare, Sainik School.
0: From Sainik School, Shri Prasad Arvind Tingare receives the National Teachers Award from the Honorable
1: Sangeeta Yadav, Central Board of Secondary Education.
2: CBSE ki Sangeeta Yadav, Maranyi Rashtrapati ke aage. उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण कर रही है.
1: मोहम्मद जफर आलम, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल.
2: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार. माननीय
1: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय.
0: And now the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, is being escorted to the dais along with the Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayant Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education, and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
2: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया, और अब माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए महाराष्ट्र के कैच धारो रोड स्थित निवासी माध्यमिक विद्यालय नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है. बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से उन्होंने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई. उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया, जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया. उन्होंने 7D VR AR लैब,
3: और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस

0: एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया। 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री याको तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याको तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने एआई सक्षम एफएलएन डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांद में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर दराज के विद्यार्थियों तक पहुँचाई। उनके नवाचार आईसीटी आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के रंगिया स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एनएफआर में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाई कोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाई कोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निःशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता

0: उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबिल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना कुमारी एस ने टॉय बेस्ड पेडागॉजी, अबाकस मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्यार्थियों ने प्रतिभा करंजी जैसे स्टेट कल्चरल प्लेटफॉर्म्स और इंस्पायर जैसे नेशनल साइंस प्लेटफॉर्म्स पर सफलता हासिल की, जिसके लिए सुश्री रत्ना कुमारी एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कंटेंट को शिक्षण का हिस्सा बनाया। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांघी में श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव बोर्ड, टॉय लाइब्रेरीज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में योगदान दिया, जिसके लिए श्री थंगाराज एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री आर रोनल्ड मेरो ने नागालैंड के सिक्चू स्थित GHSS सिक्चू सुक्सा में समुदाय संपर्क, व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम है। ICT आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनल्ड मेरो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉपआउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिस

0: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बर्दोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित आईसीटी सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षाई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं एआई सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो यूआरएससी नेशनल साइंस डे में 4 बार भी जीता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
3: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कहीं खेल
4: गतिविधियों को। राष्ट्रपति नेशनल टीचर्स अवार्ड टू द फर्स्ट अवॉर्डी इन दिस सेशन इज कविता नरसिंह राव गिट्टे फ्रॉम महाराष्ट्र एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर
2: नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक गुजरात।
4: नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक एंड ही इज नोन फॉर हिज इनोवेशंस 7DVR लैब्स आईसीटी एंड चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एंड
2: मोहम्मद मुस्तफा कमाल
4: पार्टिसिपेटेड इन इसरो कॉम्पिटिशन।
3: दूसरे चरण में अब माननीय राष्ट्रपति बाकी 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही है।
4: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख who is a social science teacher and he has trained 1,000 teachers. He is also a master trainer. And now from Kerala, Sunil Kumar KP, who has used Malayalam ICT and digital tools. And the next winner is from Arunachal Pradesh, Yakun Tame.

0: दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली पूर्णिमा पटेल रिसीव्स द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
1: उत्तर प्रदेश.
2: उत्तर प्रदेश से डॉक्टर इफ्तिखार खान अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं. माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी.
1: रत्न कुमारी एस कर्नाटका.
0: फ्रॉम कर्नाटका रत्न कुमारी एस एंड शी हैज यूज्ड टॉय बेस्ड पेडागोजी फॉर एजुकेशन.
1: मोहम्मद अयाज रैना जम्मू एंड कश्मीर.
2: और अब जम्मू और कश्मीर से मोहम्मद अयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष.
1: अनिल कौशिक हरियाणा.
0: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा. He has 40 models in his mathematics lab and is now receiving the award from the Honorable Rashtrapati.
1: Ranjan Devnath, Tripura.
2: Aur ab Tripura se Shri Ranjan Devnath apna puraskar grahan kar rahe hain. Taaliyon ke beech sabhi unka swagat abhinandan kar rahe hain.
1: Shalini Kushwaha, Uttar Pradesh.
2: Uttar Pradesh se Shalini Kushwaha ko ye puraskar diya gaya hai unke शिक्षा के क्षेत्र में अदम्य और अद्भुत कार्य के लिए.
1: थंगराज एम तमिलनाडु.
0: फ्रॉम तमिलनाडु थंगराज एम इज रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन एंजॉयबल एंड रिलेटेबल एजुकेशन.
1: वर्तिका गुलाटी राजस्थान.
2: राजस्थान से वर्तिका गुलाटी माननीय राष्ट्रपति से उन्होंने नमस्कार किया झुककर. माननीय राष्ट्रपति ने अभिवादन स्वीकार किया और अब माननीय राष्ट्रपति से वो पुरस्कार ग्रहण कर रही है. शिक्षा के क्षेत्र में
1: आर रोनाल्ड मेरू नागालैंड.
0: फ्रॉम नागालैंड आर रोनाल्ड मेरू विल बी रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन इंटरएक्टिव एजुकेशन. हियर ही विल रिसीव द अवार्ड
1: फ्रॉम प्रताप सिंह मध्य प्रदेश
0: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फ्रॉम मध्य प्रदेश शैलेंद्र प्रताप सिंह will receive the award and he has worked to say that there is no dropouts from his school.
1: Devo Basantrao Kulkarni, Navodaya Vidyalaya Samiti.
0: Larger enrollment has been there in his school. From Maharashtra, Vaibhav Basantrao Kulkarni, who has worked extensively on lively education, receives his award from the Honorable Rashtrapati ji.
1: Rajesh Bajoloi, Assam.
2: Assam se Rajesh Bajoloi apna puraskar grahan kar rahe hain. In sabhi shikshakon ne apne apne kshetra mein
1: राधा राजेश इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन.
2: सेकेंडरी एजुकेशन कर्नाटका से इस वक्त उसका प्राप्त कर रहे हैं राधा राकेश.
1: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय
0: राष्ट्रपति महोदय. ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुकांत मजुमदार एंड द मिनिस्टर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री टी के अनिल कुमार, the Secretary Department of Higher Education, Shrimati Deepthi Gaur Mukherjee, and the Secretary Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Dr. Devashish Mukherjee, have now taken their seats on the dais. And the Honorable President will also confer awards to teachers and to the institutes who have worked in higher education. And now, telephone.
3: Architecture शिक्षा को sustainable design और real world learning से जोड़ा है. ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़कर वे विद्यार्थियों को आवास, स्कूल, अवसंरचना की वास्तविक चुनौतियों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं. वास्तुकला शिक्षण के लिए प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
4: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया. तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला

0: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेस के शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं। शिक्षा कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित आईआईटी गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्णन। वे इंजीनियरिंग, साइंसेस और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्णन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण, शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है। वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं। शिक्षण, शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भू विज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध, प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया। भारत की पहली कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी स्थापित की। भू विज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा, शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा, शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है। उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी, फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा, शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध, शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग, समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक्स एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण, शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेख
1: शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागॉजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजेस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एचएस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित PSG पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री MOUs के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशि कलायस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के इरोड स्थित शक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर कन्नन रथिनम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में सीखने का एक व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के ITI अरिकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने ITI विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। COVID-19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री किरण प्रकाश झरकर ने कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक connecting trainees to skills, और Skillbook mobile application ने practical learning और employment oriented resources से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश जरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीख

0: महीने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के बिलीमोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल ईवी विद स्टीयरिंग जनरेशन में क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यवहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में सीओपीए एचआईवीआई की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में श्री सौमेन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सौमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल्स सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्कप्लेस रेडिनेस कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी डीआरडीओ, इसरो, बार और इंडियन रेलवे जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च

0: शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
1: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल
0: आईआईटी रुड़की की प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही हैं। इन्होंने
2: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू and he works on chemical engineering and has trained many students.
1: Dr. Vinay Chamola
0: aur Professor Vinay Chamola jinhone electrical aur electronics engineering ke kshetra mein kaam kiya hai BSc Plani se.
1: Dr. Srikant Golapudi IIT Bhubaneswar
2: from IIT Bhubaneswar Dr. Srikant Golapudi who works in metallurgical engineering
1: Dr. Mithun Radhakrishna
0: जो कि केमिकल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है IIT
1: प्रोफेसर सौरभ दत्ता IISER भोपाल
2: फ्रॉम IISER भोपाल प्रोफेसर सौरभ दत्ता रिसीव द अवार्ड फ्रॉम ऑनरेबल राष्ट्रपति
1: प्रोफेसर विक्रम विशाल IIT बॉम्बे
0: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को पुरस्कार दिया जा रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र से है।
1: डॉक्टर जयराज सिंह सरवैया NFSU गांधीनगर
2: For his work in forensic sciences, Dr. Jairaj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory,
1: Professor
0: University of Gujarat. Professor Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur. Rasayanik Vigyan Kshetra ke liye Professor Shankar Prasad Rath ko puraskar diya ja raha hai, jo IIT Kanpur, Uttar Pradesh se
1: hai. Dr. Manisha Nigam, Kimbati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand.
2: Kimbati Nandan Bahuguna University, Uttarakhand receives her award in the field of biochemistry from the
1: Dr. Amar Mohan Rao Dastande, JNMC, Vardha.
0: को दिया जा रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में बाल रोग के लिए उन्होंने कार्य किया है, वर्धा महाराष्ट्र से।
1: डॉक्टर अरुण बाबू एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश
2: फ्रॉम आंध्र प्रदेश इज मंगलागिरी एम्स डॉक्टर अरुण बाबू ही हैज वर्कड स्पेशली ऑन पेडियाट्रिक ट्रीटमेंट एंड इनोवेशन
1: मणिपुर यूनिवर्सिटी
2: 400 साइंटिफिक पब्लिकेशंस डॉक्टर पी लीलावती देवी Receives her award from the Honorable President for her work on Manipuri dance.
1: Professor Ashutosh Mohan, BHU Varanasi.
0: Professor Ashutosh Mohan ko, jo ki Prabandh Adhyan Sansthan Banaras se hai, unko puraskar diya ja raha hai.
1: Professor Ankuran Datta, Guwahati University, Guwahati.
2: Dr. Ankuran Datta of the Guwahati's Public Relations
1: Professor
2: and Communication received the award from the Honorable
1: University,
2: President
1: Bangalore.
2: Of India.
0: सुश्री शिवानी वी कर्नाटका यूनिवर्सिटी बेंगलोर से हैं, इनको संस्कृत विश्वविद्यालय से
1: प्रोफेसर राजीव चौधरी पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर
2: प्रोफेसर राजीव चौधरी रिसीव्स द अवार्ड फॉर हिज वर्क ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड हिज
1: पंडित रविशंकर शुक्ला
2: यूनिवर्सिटी रायपुर
1: पॉलिटेक्निक बेंगलुरु
0: सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर विश्वनाथ HS को पुरस्कृत किया जा रहा है, बेंगलोर कर्नाटका से।
1: डॉक्टर शशिकला एस PST Polytechnic College Coimbatore
2: From Tamil Nadu's Coimbatore Dr. Shashikala S receives the award for a work
1: Dr.
2: in electronics
1: Kanan
2: and electrical engineering
0: बहुत ही विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर करण शक्ति रथिनम को पुरस्कृत किया जा रहा है, इरोड तमिलनाडु।
1: डॉक्टर संदीपन प्रहलाद नरोटे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर
2: From Maharashtra Solapur district the government polytechnic Dr. Sandeep Narote of the electronics and engineering department received the award from the honorable president of
1: india Dr. Harish A government
2: and skilling and entrepreneurship
1: Kozhikode Kerala
2: Harish A of ITI Kerala receives the award from the honorable president of india
1: Jack Mohan government industrial training institute Mandi Himachal Pradesh
2: He specializes in fitter trade and also is a master trainer, Sri Jagmohan from IIT Himachal Pradesh.
1: By Uddhav Rao Patil Government Industrial Training Institute, Dharashiv, Maharashtra. Sandeep Banerjee, Government ITI, Taliganj.

0: receives the award from the Honorable President.
1: Patel Rajesh Bhai, Maganbhai, Government ITI, Bilimora.
2: उद्यमशीलता के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति
1: हीरालाल शर्मा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चोमू
0: एंड ही हैज वर्क्ड इन द फील्ड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड हिज स्पेशल
1: अर्चना राकेश यादव गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदिवासी त्र्यंबकेश्वर नासिक
0: And she works on fashion design. Rina
1: Gupta, Government Industrial Training Institute, Ujjain.
0: Dr. Gupta's work is on Divyang's digital skilling.
1: Somain Pandit, Tollyganj Government ITI.
0: Somain Pandit specializes in industry-oriented learning and drone technology.
1: Tulika Kalita, Northeast Skill Center, Guwahati, Assam.
0: She has trained 1,400 workplace readiness workers.
1: Sanjay Kumar, Kaushal Vikas aur Udyam Shilta
2: Kshetra mein ye puraskar pradan kiye ja rahe hain mananiya rashtrapati dwara.
1: Jyoti Bala Rathor, NSTIW Indore.
0: She works on skilling and empowerment of her students from
1: Sri Lanka. Pranab Kumar Chaudhary, Central Tool Room and Training Center, Bhubaneswar.
0: Pranab Kumar Chaudhary also specializes on skilling and entrepreneurship. And what a proud moment it is indeed to receive the award from the Honorable President of India. And the Honorable President of India has been escorted to Ajay and she is accompanied by the Minister for Education, Sri Pralhad Joshi, and the Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary and Sri Sukant Majumdar, and the secretaries in the Department of Education, Literacy, School Education and Literacy, and Skill Development and Entrepreneurship, and the Secretary Department of Higher Education.
2: और अब समय आ गया है जब माननीय राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति का संबोधन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी संदेश होगा. श्रोताओं, सभी शिक्षकों ने तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति
0: स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग.
3: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजन सभी को नमस्कार. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ. देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है. शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है. मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है. उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ. साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था. मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है. उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ. मैं भी कभी शिक्षक समुदाय के सदस्य

चाह रही हूं, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है। देवियों और स्वजन, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उद्दात विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित है। यह प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों की सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक

0: उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्वविख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींच कर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षा की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।

0: Honorable President of India doing namaskar to all the awardees and other dignitaries who are present at the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And the Honorable President of India is now departing from the plenary hall of Vigyan Bhavan, and the Minister for Education, the Ministers of State for Education, and the Departmental Secretaries of the Department of School Education and Literacy, the Department of Higher Education, and the Department of Skill and Entrepreneurship, now escorting the Honorable Rashtrapati Ji towards from the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And as the Honorable Rashtrapati Ji in her address,
1: आप सुन रहे थे भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, और आइए अब सुनते हैं।
2: मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वे कल गृह मंत्रालय के विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वरिष्ठ उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने

व्यापक तैयारियां शुरू की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर गिद्धों के संरक्षण पर बल दिया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा और महिला एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई। उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu today said that a Viksit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teachers Award 2026 in New Delhi, the President said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms.
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: President Draupadi Murmu today presented the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The President also presented national awards to teachers for 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister stressed that bringing about real change in children requires teachers to be

0: become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
1: मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा. बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते. टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे.
0: Highlighting key health and social issues, Mr. Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction.
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम. अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है. मेरे मन में एक विचार आता है या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा. खेल कूद मतलब वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता. और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए.
0: Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished center of learning in commerce, economics and management. The External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a five-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing
2: spokesperson Randeep Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. He noted that 1,907 Indians have safely crossed over to Nepal from China. Mr. Jaiswal said that the Indian embassy in Kathmandu is facilitating the return of Indian evacuees on flights back home. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation rose to 1,344 after rescue workers recovered more bodies from affected areas. The rising water levels of major rivers in Bihar, including Ganga, Gandak and Kosi, continue unabated. Flooding has affected 16 districts, while the situation remains serious in 14 districts, including Patna. According to the Water Resources Department, the Ganga River in Patna is flowing nearly 2 meters above the danger mark. In women's cricket, India will take on arch-rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium at 8 p.m. Indian Standard Time tonight. In badminton, Indian men's doubles pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tan Wee Kyong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. And that is the end of this news bulletin.
3: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज. आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात. और अब समय है हमारे प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का, जहां हम सुनाते हैं आपको 60 से लेकर 80 के दशकों के बेहतरीन गाने. तो आइए आज इस प्रोग्राम में सुनते हैं ये 80 के दशक का बेहतरीन गाना फिल्म निकाह से. जी हाँ, महेंद्र कपूर की संजीदा आवाज से ये गाना सजाया गया है और इसका संगीत रवि ने दिया है. आइए सुनते हैं ये गाना.
4: अभी अलविदा मत कहो.

0: माँ, अम्पी और मैं हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
1: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
0: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम

0: दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें। यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता दोस्तों, अब जो आप गाना सुनने जा रहे हैं वो ये गाना जो है प्रेमी प्रेमिका के बीच उस खूबसूरत एहसास और वादे को दर्शाता है, जहां नैनों की मस्ती में खोकर दिल बेकाबू हो जाता है। गाने में उजाला हो या अंधेरा, हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ निभाने का जो है ये प्रॉमिस नजर आता है इस गाने में। तो आइए सुनते हैं ये गाना मोहम्मद रफी एवं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म कारवां से।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारे साथ हिंदी क्लासिक म्यूजिक का ये प्रोग्राम, जहां हम सुनाते हैं 60 से लेके 80 के दशकों के कुछ बेहतरीन गाने। और इस सिलसिले को जारी रखते हुए आइए आप सुनते हैं फिल्म गुमराह का ये सदाबहार नगमा, जिसे महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज से सजाया है। साहिल लुधियानवी ने इसके जो बोल लिखे हैं और संगीत रवि ने दिया है। आइए सुनते हैं ये गाना।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता दोस्तों, इसी गाने के साथ ही प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक को समेटने का वक्त हो गया है। आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में।
1: दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने। और इस सिलसिले में पहला गाना सुनते हैं अजहर फिल्म से अरमान मलिक की आवाज में।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा। हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: माँ, अम्पी और मैं, हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
1: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
0: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें? यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
3: शान एवं श्रेया घोषाल के सुरीले आवाज में आइए सुनते हैं PK फिल्म का ये गाना।

आप सुन रहे थे अलका याग्निक एवं सोनू निगम की आवाज में फिल्म दिल है तुम्हारा का ये गाना। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। उसके तुरंत बाद यानी कि 2:30 पर हम लौटेंगे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s के साथ।

0: Doubles pair Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Than Wik Yong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. The Indian pair defeated Denmark's Kemar Stroop and Anders Karup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in the quarter-final yesterday. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today held an inter-ministerial virtual meeting with Jal Shakti Minister C.R. Patil and other senior officials to review preparations for Swachhata Hi Seva 2026. In a social media post, Mr. Lal said that as the campaign enters its ninth edition, the nation is renewing its commitment to a cleaner and healthier India. He urged citizens to come forward, participate wholeheartedly in the campaign and make Swachhata Hi Seva a true Jan Andolan. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from 17th of this month to the 2nd of October. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts. Relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Vishal Sharma. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा. उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की. उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया. प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे. बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी. भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे. चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा. और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है.
2: काम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं. विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है. हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं. हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं.
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है और समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है. शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
3: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
3: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है, प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
3: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
4: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किए है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और

0: प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारक्रीट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉ त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
2: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर 3 बंदर हो गए हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
1: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग

आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित समाचारों को। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप अब से थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

आइए सुनते हैं हमारा प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s। और इस प्रोग्राम में आइए आज पहला गाना सुनते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर से। आवाज है कुमार सानू एवं आशा भोसले की।

0: आप सुन रहे थे क्रिमिनल फिल्म का ये गाना अलका याग्निक एवं कुमार सानू की आवाजों में।
1: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
2: नर्स दीदी क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला, सच में बहुत परेशान हूँ।
1: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
2: सच में दीदी?
1: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करें नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

आपने सुना ये गाना फिल्म गुलाम का। जी हाँ, ये फिल्म बनी थी 1998 में। इसका ये रोमांटिक गाना आपने सुना कुमार सानू एवं अलका याग्निक में। आइए आप सुनते हैं फिल्म दिल तो पागल है का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s में।

आपने सुना उदित नारायण एवं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दिल तो पागल है का ये गाना, और इसी गाने के साथ ही प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s आज के लिए यही समेटते हैं। और अब से थोड़ी देर में यानी कि 2:58 पर आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस, उसके बाद आप सुन पाएंगे मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम, और उसके बाद आप सुन पाएंगे ताए खमती श्रोताओं का कार्यक्रम, और हम लौटेंगे 3:30 पर प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गानों के साथ।

अभी आप सुन रहे थे ताए खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब समय है हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गानों का। तो आइए चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया की ओर और जानते हैं क्या कुछ है नई खबरें। मिर्जापुर द मूवी ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गजरा उड़ाने का काम किया है। हनुमान अंश की आंधी के बावजूद मिर्जापुर को पहले दिन बेहतरीन ओपनिंग मिली है। म्यूजिक कंपोजर और सिंगर विशाल दिदलानी लेविस लाइफ जीते हैं। फराह खान अपने लेटेस्ट ब्लॉग में विशाल के लेविस फार्म हाउस पहुंची है। फिल्म लगान में बाघा का रोल निभाने वाले एक्टर अमीन हाजी ने आमिर खान की पर्सनल लाइफ पर कुछ बातें शेयर की है। उन्होंने बताया कि आमिर अपनी दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव संग कैसा रिश्ता रखते हैं। मिर्जापुर द मूवी में रवि किशन का ऐसा भोकाल देखने मिला है जो काफी समय से उनके साथ होता हुआ नहीं देखा गया। उन्होंने फिल्म में इतना पावरफुल विलन का रोल निभाया कि कुछ समय तक मेन हीरो भी उनके सामने हारता हुआ नजर आया। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने जन्माष्टमी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें कमेंट सेक्शन रेस्ट्रिक्ट था। पश्चात के जोहर सीन पर उनके बयान विवादित रहे जिसके कारण उन्हें धार्मिक नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी आलोचना की। राजकोट में हुए धार्मिक समारोह में भक्ति स्वामी ने उन्हें संपूर्ण कहा और विश्व हिंदू परिषद के मंत्री ने महिला शक्ति के लिए कलंक बताया था। आगे भी हम आपको बॉलीवुड की खबरें साझा करेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये गाना आरको प्रणव मुखर्जी एवं यसर देसाई की आवाजों में।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट में और हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खबरों की। तो आगे खबर है, फेमस पंजाबी एक्ट्रेस ईसा रिखी की सिंगर रेपर बादशाह संग शादी टूट गई है। बीते दिनों बादशाह और ईशा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अलग होने का ऐलान किया। वहीं अगली खबर है, दिलचस्प बात यह है कि द्विवेंदु शर्मा की असली जिंदगी की लव स्टोरी भी उनकी किसी फिल्म जितनी ही दिलचस्प है। उनकी पत्नी आकांक्षा शर्मा एक होशियार ज्वेलरी डिजाइन है। श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे थे प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और साथ ही आपने सुना हिंदी फिल्मी गाना। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे वांचो श्रोता का समाचार।

0: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि सेप्टेम्बर लेट मनी अगा तारीख हूनी बार इरुमा केम वांचो साय का हो वांग वांगना हो वांगे का हो पाई फाले मंचुई यामी खमे अनि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ए विकसित भारत ले लाइनो लंपन माइकोलेटी अचंग चौकाई वाई लेवन ले हले न्यू दिल्ली तो नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 सो ओकम कमा प्रेसिडेंट ने मास्टर बुटो अचोक चन के सोसाइटी ती माइके सोसाइटी आंग अचंग आई वाई लिचुवन ले प्रेसिडेंट मुर्मू ए अनि हले नेशनल टीचर्स अवार्ड बुको ले हायर अवार्ड स्टेट सानत यूनियन टेरिटरीज अनत बोमा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अरोक तो केले स्कूल मास्टर बु पुनी अचत आंको ले प्रेसिडेंट ने हलेवे नेशनल अवार्ड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बोमा पॉलिटेक्निक्स तो केले मास्टर बु चातांग चुको ले हायर टू सो मा होमे डेमोक के खो मा को पो ले हायर अवार्डी बु बामा रिंग के डॉक्यूमेंट्रीज बु चु आहो ले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए मास्टर बुफे लाइन नौसम अंग अपो अनो के खामा लाइला लान चिचांगले मामाली होंजे चु अनो लको को लाका ले जे हले मनी न्यू दिल्ली तो नेशनल टीचर्स डे अवार्ड कप के थंपे अरों के माका ले प्राइम मिनिस्टर मास्टर बुफे हले अरों क मा लाइन नौसम बु पंग वे मै मै शोले जनलो ले नो के रोंग मा होम लोनो तो होंटे जेलांग ना लाई ले अपोनो ले को है ले आका दो पुले सोशल मीडिया मा होले चे हले नाउ सम आंग लाई सिलेबस खा अंकल लान चिचंग ले रोई खुई निंग ले आशम ले मामा ततली चू अपोनो ले को अंक मोट ले चुआका ले मनी गालो लेसले तो थम मिनिस्टर केंटो जिनी मा अपाले इबाय आसाम अरुणाचल निबा पोंगतो हिमे बोडोटी मा टूमा डोंके खोमा हाजाबामा वनरे आंग ले लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट खांग के हिमे गेरमे बोमा हाजा होरो नाम तोले नुई ले फाउला हामले हले डिप्टी स्पीकर कार्डो निग्योर एमएलएस पेसी जिलेन हेजा तोजीर कादु नी गालो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काटो के थाम बोमा पुलिस बुले गुइले हाखा तो खनाक नु रंगवन तो आता तपाले हयमा हया डेलीगेशन सम ए पंगनु सा हा तो वे मोनी ची अंके खनाक नु बामा वे तु मै लंगो क रोंग मा कन सम मोंग सम ले ngo को बोमा चात ले तुमा नक डोंग आंग डंग ले सोंग ngo बखै ले काले अरुणाचल प्रदेश संके वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट तो ड्वाफ लिली ट्राफ बटा मोंडो ग्रास लेके ऑफियो पोगोन जापोनिकास हिंगरांग लमले अटक के इंडिया का खा मयो पोंगवांग के चंगले हले यातनी होता पुली आगा मीटर्स जो तो के हा हो तो लमले तकले हले तक के का अतल लले डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन ए हले तक के अरुणाचल बोटैनिकल हेरिटेज तो बोंग मैपुले वन के बोमा रिसर्चर्स हे या फिल टीम्स थम तो चू अचोकले लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोमा हाखा तो के स्टेक होल्डर्स थामले जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक 2026 हन पंगमा थोंग नुई मोट नुई चाहुरान हु सत मोट बोमा हनुई अरा अपांग के सत मोट तो ले अचोन अथाना मनी हया मीटिंग ओकम के मा एमएलए हागे अपा ए अपातानी चावन मा अटू अजाले कप के हया टू सो अरुणाचल प्रदेश संघ के शोन पाक जायका ले अहो अंग के अचों के कल्चरल प्लेटफॉर्म अंगजाउ अचांगना लवन ले चीए स्टेक होल्डर्स थाम पे चु हाखा तो शोन शोन पात मे चाय पा का पा हुंगन अंग मुई डोंग के थाम रोंग मा ले ना मे को अंग ले हम कुई खप अंग के पा खत ले तिखै लका ले हले इंचार्ज डीसी हागे तारुंग बोमा एसपी केनी बागरानी चु हाक ले ला के मीटिंग मा होनु यालिंग लोक अंग के पब्लिक वॉक सत मोट वन ही यति खोंगपोंग नाम ते बाले इमरजेंसी सर्विसेस अंतोले ट्रैफिक रेगुलेशंस बामा ले पंगनुली बामा वही अरोले नाहलगन पुलिस एलपीजी सिलेंडर्स अहुले पाउके चारम जो लमले अटक के बोमा haje sai ka khoma rang se ban ngui dau ke mi hak tu ta khak le haje ba ma nahalgan police station ma bharatiya nyay sanhita khang ke section 3058 ne ma case na la le tiktok ke ma police haje mi hak itanagar ma ig park colony gate number 1 ha ma ngo ke arjun juga le aman ke chang policing dowa chi len ke busubi busuti ba ni juli lam to akap lam le kap le chi hala kap ke phai ma police pangnu kha to wai lam ke hosuk ma lpg cylinders hale charam atak la suk le police training center ptc bandodwa ma mega blood donation came atu jale police personnel he ya trainees thamba ma aji puramban aku units jau kap chok le hale voluntary blood donation bu mongte to chu na tu na ya bak le khanak kho san ang ba ma na ching la le na hal kan ang ke dreams itanagar ang ke rk mission hingham anto le ne arunachal life saving foundation le asam la le tu ja le hayama ptc principal dusu kalinge haya makhang e ptc chi makhang e khanak kho san ang aji ko ko le ke khama mongko le mok ngana kap pulwan le haboma women's cricket ma india aja dubai international stadium ma apan angke t20 asia cup ma final group a khama pakistan pe panai hayamesh rangnak achat baji mukhang hawangwangai india hototoke mes ni ma thailand boma hong kong tole lat phai ma semi final to hai anke changle taji ma pakistan tamlalan arab abutan homi chu hale thailand to latan changle ani ka ka ho ibai
2: aap sun rahe the vancho shrotaon ka karyakram vancho shrotaon ka aap pura karyakram sun sakte hain आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर और आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।
3: तागप्सा आगोमगो HIV bemar higum allu ba hensla yenam higi naru lok dinsna
4: HIV bemar higi yo lok nyomin hitakko amyom ne HIV bemar gan lok ilala HIV gan namne yubam dobam hila beji syringe nigbam hit lok ok anne HIV gayom ne aki lok awam sin nyogla tu
3: am ge mu ba toka amum ba dubam hit lok alakiya ya hit lok gombagom ya hit lok dobam tibam hit lok ok तारु पीक लोक HIV हिगी न्योंग मादो
4: नक HIV टेस्ट इका हिला येरु तोला का हेंगोर बोलो नोम ने मोक लासिन इला दो नोक गुनाम हुनाम अमसिन अल्लुब ग्रुप हुपु लासिन इला दो
3: HIV ही गुंबोसियो का अल्लुब देन हेन लाजुका टेस्ट कोत का ओक HIV गन नमने अरिक माप जुका हिगी अरिक सा कामा
4: HIV का लगी लगा हिगी ने अल्लुब हेन नाम लगा नेशनल एड्स

0: हेल्पलाइन 1097 नंबर होगो कॉल रू तोलाका
1: हकना दिन्स ना आवाही गुम गुमिन होइन लगाबा अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नहर लगन पेला लोक का जिलेंतू।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने। पहला गाना पेश है यस बॉस फिल्म से अभिजीत की आवाज में।

0: तनिष्क बख्शी के एवं श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना जलेबी फिल्म का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे ईद मिसमी श्रोताओं का समाचार।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
4: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे वंच श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे ईद मिसमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
5: एचा आकाशवाणी ईटानगर सेलापुचे हिमा मानुली एतनी ईदमिश्मी आहोला के दरगा लम्बो आजो आहिमो एचाम आजो आहिया तीचा लम्बर में आतिकाची इमु दोने आती प्रभा एवे जोता आतो हामे अरुंदगा नेम इंडिया माचे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मु में एतनी आजो आहिया के बने टीचर्स दे इन एनागा माची ला हेगा आजो आहिया में क्रोथोहिमी आजो आहिताची येचु प्रभा रोगा में तांदो प्रा अथुजीदा लगादा अहोगा तांदो आसला इंडिया माचे प्रेसिडेंट शारुबा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में आजो अहिया के बने तांदो उगारु बचिदा ने प्रेसिडेंट में लगाने अन्यू यू स्टेट तो ने यू यूनियन टेरिटरी अति माचे काप्रू यू आजो अहिया ऐ तो ने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तारु माचे इमोलंबो अवार्ड हा बदा अहोगा प्रेसिडेंट में आजो काची अहिमु माचे अन्यू खेगे आजो अहिया बु नेशनल टीचर अवार्ड हाँ बदा आहोगा आजो अहिया टीचर नंबर में आजो अहितोया है आजो पुम एचाम बु आरमाचे आजो अहिजी ना ने एतानी महा इंडिया माचे प्रेसिडेंट शारुबा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आला मावा सुहु इयोनुबा इनी टीचर्स दे अमुमा ने एनगा माचे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में ला हेगा ने आजो अहितोया में जीगा गाने आजो आहितोगा जीगा टीचर नंबर में अतु तेगवर अरुंदगा दा नगाचिदा आहोगा अहम बयागा लिखिगा बने आसाम बेदातिया तिकोची इमुगो गापा काजी खगा अतो गोचा अरुणाचल प्रदेश सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट दोने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर केंटो जिनी में बुनी अरुणाचल प्रदेश लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट हिमी गेमरे दोने आया आतिको एपेगाची इकशा आतिको मामा गिबादा आहोगा आसाम अरुणाचल प्रदेश आती पाही चिपो है बहाने रुगा मिखा का चबुगे ने आती पाही दो जिया में वो सतो दो ने जहाँ दगा गए ने जी जी ना ने मिनिस्टर में लगा ने रुगा मी एको बहे खोआन दो आगे माने गुमी तो बारो आगे माने आयोजित गए दा लाए बता आहोगा मिनिस्टर शो है डिप्टी स्पीकर कार्डो निगियोर दो ने एमएलए कानी बेसी जिले ने तुझेल कार्डो गालो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आलम्रो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोने पुलिस डिपार्टमेंट माचे इमो आलम्रो में गगनबेया बदा आहोगा यता एशिया आंतिका माचे आसिब्रा डॉर्फ लिली टर्फ अलिम्या मोन्डो ग्रास लाइगा आसिब्रा गे इंडिया आंतिका एमा एचा होन ने हेंदो अरुणाचल प्रदेश वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट माचे एजर कानी दोने माओ यहो मंगा मीटर यू आंतिका माने अलातिका बचा है परमबाबुदा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मैन में लगातार आहोगा ऐतन हो गया बा जीरो म्यूजिक फेस्टिवल अखावची पुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोने किसा इमो लम्बो में इमुठोई जगह को लम्बो एमएलए हागे आपा में बुनी आज पुआ मीटिंग ची नगाने आ फेस्टिवल मने आपतानी इमुची कल्चरल इशू अवता ची इमु में असगम बा एक गाजिदा लाए बदा आहोगा फेस्टिवल प्रभा एहोगा बने अरुंदा इमु के बने उन्जिखी जोंबोजी ना ने एमएलए में लाइबा मीटिंग मा डीसी इंचार्ज हागे तारुंग एसपी केनी बागरा दो ने एकशा डिपार्टमेंट मा माचे आजावा बोल नंबर में गिंबिया बदा ला होगा गेस्पु अकुईगा अर्जुन जुगा लाएगा असुहनु इमुगे ईटानगर इंदिरा गांधी पार्क लारुका नंबर खेगा अन्यूदो ने रोत्यापा नाहलगन पुलिस में अन्यो का सो गेस्पु अलगा नगेता ने नाहलगन एसपी डॉक्टर नीलाम नेगा में ला होगा ने कैप्टन आतिकाची इमु में

0: nga imu ka ji ji me ji ga ji atu su ge ne ji ji na la ga da aho ga na la gan ma che trims ta ma ko ita na gan ma che ar commission hospital ta ma ko do ne ar ne che life saving foundation me aro ga ge ne buni police training center bandai do ma ne iu cha ga ma iu khi ni imu me iu cha ba da aho ga ma ho iu mi cha ge ma ne iu ar nda ga imu chiyo phu bu ga ai do ne iyo chai ga chi jo ta bu pra ba bu e ga cha thu ga ne ati ga chi mu ka ba ne iyo cha ji na ne btc ban de do ma chi principal do su ka ling me la ga chi da a ho ga T20 asia cup ma india me abu ni dubai ma chi international stadium ma ne pakistan go e ma gai bo da la ho ga thailand ne hong kong a ne pa india me ba semi final ma khe ga ba ma ho match he अम्बतो इयो बाजिमाने आखापगाम बोदा ला होगा अरुणाचल प्रदेश मा अबुन्यानाया ईटानगर ने नाहरलगन ला प्रगे पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट एदोने इकिसा होलोसो डिस्ट्रिक्ट मा आयोसदा ने ईटानगर मिटियोरोलॉजिकल सेंटर मचमे ला होगा ने डिस्ट्रिक्ट बागे मा अरुण्यामया अबुली चेदोने नाप्रा आयोसदा ला होगा एतानिसि इदुमिस्मि आहो लिमाओ दबाय
1: HIV/AIDS chipo asawe auda kaga
2: HIV
3: अभी आप सुन रहे थे इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम
4: नानी में आगे मन खाई
1: HIV/AIDS है जापा जी गे आखों गे जेपा हाथ गे आई ओदो ने आनंदो में थोब मन HIV/AIDS खी घूमी
4: अलने एचआईवी हेमे गई जिंगा जी तमाको अतुसुव अरुंदा

0: Meneng meneng nga si tegap si gamgo aku tepai. Si alemanelema aku HIV oiloke yonam chonam la. Aneloke kulo aduku alabim palinduku. Abaritola lako ba dungla achin ugumala donang tengnam loke so HIV si nyinga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so lema nga pamu maduba atuboga ayag nga aleba nichiko hospital lo check laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Nahalagan loke bimpa linduku.
1: श्रोता दोस्तों आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज में जहां हो रही है दिल से दिल की बात और अब समय है हमारे प्रोग्राम हिंदी फिल्मी गानों का तो लीजिए पहला गाना आइए सुनते हैं किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खट्टा मीठा से

0: माँ, अम्पी और मैं, हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
1: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
0: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें? यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता दोस्तों, आइए अब सुनते हैं नितिन मुकेश एवं लता मंगेशकर के आवाज में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गाना।

आप श्रोता सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। श्रोता, हमारी दूसरी प्रसारण सभा के प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे प्रसारण अधिकारी गोपाल राय, तकनीकी अभियंता एचएम भूषण और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी। और अब से थोड़ी ही देर में आप श्रोता सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर आरजे साजिद के साथ। तो मुझे आपकी रेडियो

0: दी कविता को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर।
3: मजूसा डुबा रंगकड़ो पांग हजनीरा खड़ो पांग सप्तेम्बर जिलिंग रंगबंगा तारीख अरु रंगजा बलेबी खुमनी थोड़ी जमसो तांसा प्रोग्राम दफंग रहे मजू रंगजा सौ सैतन मन कचे रुंग रंग रो कोहंग कुनका मामाई र नंगमुंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू र मजूसा न्यू दिल्ली नंग नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 नंग मसौ फानबाई द प्रजु क्वालिटी एडुकेशन र विकसित भारत तयंग लक्षिमो फान द अरो सिंगमुंग मई र मामा मास्टर हिंग सिरिंग र प्र सिंगमुंग प ओनती सिंगमुंग जंग र मोरो प्रेसिडेंट मुर्मू र फान द मजूसा टीचर्स डे सकान नंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू र क्रसनल खाग स्टेट तामंग नई सनल खग यूनियन टेरिटोरीज तामंगरा परम करोक खग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तामंग मुल्ला वाब्लोंग मचर खग मासूर हिंग नेशनल टीचर एवार्ड कूत परम प्रेसिडेंट र हायर एडुकेशन इंस्टीट्यूशन तामंग नई पॉलिटेक्निक तामंग व क्रसनल खग टीचर्स हिंग नई फैकल्टीज मेंबर्स हिंग डॉ नेशनल एवार्ड कूत मास्टर र लिवनसा रवु प तह र परजु नौसा प वोंका म नरी सचारा मोरो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र मनीषा न्यू दिल्ली नंग नेशनल टीचर्स डे अवार्ड विनर्स मई हेंग जम रफान त परजु मास्टर हेंग म रो त अरो नौसा हेंग म चेंज लमन म मास्टर हेंग रा र मोरो प्राइम मिनिस्टर मोदी र मास्टर हेंग जम रफान चेन त वांगमान प सोशल मीडिया पोस्ट नंग कुत प्रयु फान द गालो नोवांग एमले हिंग संग नंग मिनिस्टर केंतु जेनी प अरांग कयांग रो मनीषा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट नंग हिमे किंग नई गैलमे किंग ला परम बलांग बलिबा किंग ताम प रायगत प्रयु इर किंग ताम वांग महिंग जम रफान द अनिंग्श असम नई अरुणाचल बॉर्डर हासरे नंग हिमे बोडोटी हा नंग फाइ खोंगरो हान रंग मोरो द डिप्टी स्पीकर कार्डो निंगयोर रनै एमएलए पीसी जिलन रला एमएलए तोजिर कादु परम गालो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वंग महेंग रनै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रला परजु पुलिस महेंग र किंगन रोरी प नरी तातुंग ओफान द परजु वलांग यंग र हांती म तोंगबाई रंग मोरो सिंगमुंग वांग बोडो मई मरो खेप द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन र नई स्टेक होल्डर्स मई यंग र जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक 2026 मंग मोरो कोऑर्डिनेशन नई सिक्योरिटी र ट्रैफिक मैनेजमेंट एसेंशियल सर्विसेस क्लीनलीनेस नई एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ताम प आरिंग सताई रो कचुपाई पर सहंग रंग रोकते एमले हागे अपा रमनेसा प्रिपेटोरी कोऑर्डिनेशन मीटिंग नंग मसा उपान बाई ते प्रजुंगो आपतनी नौ हानंग फेस्टिवल तथुं ची इर फेस्टिवल नंग अनचल प्रदेस वंग वर्ड ऑफ कल्चर ताम तकवाई सिंग रोकते अरो इर फेस्टिवल म करुमलो कम सोमकारंग मरो एमले र स्टेक होल्डर्स मयंग म रोकते मीटिंग नंग इंचार्ज डीसी हागे तारुंग नई एसपी केनी बगरा डॉ फोक्त परजु वेनु मैनेजमेंट मंग मरो नई पब्लिक वर्क्स म रा पावर ड्रिंकिंग वाटर नई इमरजेंसी सर्विसेस म रा ट्रैफिक रेगुलेशन ताम मंग मरो अरेंजमेंट कम कम नंग रफान त नहालुगुन पुलिस र बांग सुमसे मई प अहुक केस नंग लुत अरो अहुक वांग खुला रूम खा

गुड इवनिंग, नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे तीसरे प्रसारण सभा में, यानी आज की आखिरी प्रसारण सभा। मैं हूं आपकी रेडियो साथी और आपकी होस्ट बिंदुंग दिंदो मांझ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजंग एवं तकनीकी अभियंता होलीराम बर्मन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारा ये प्रसारण सभा। दोस्तों, आज सबसे पहले वक्त है कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का, जिसके बाद 4:45 पर आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसके बाद आप सुनेंगे इंग्लिश न्यूज। ठीक 5 बजे प्रसारित होगा नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम नोक्ते भाषा में समाचार, जिसके बाद 5:05 पर हम आएंगे इवनिंग ड्राइव के कार्यक्रम में। 5:30 पर हम आपके साथ सुनेंगे शाम की महफिल का खास कार्यक्रम, जिसके बाद ठीक 6 बजे प्रसारित होगा स्पेशल प्रोग्राम आज के टीचर्स डे के ऊपर। आप सुनेंगे एक इंटरव्यू डॉक्टर एम क्यू खान, हमारे इंटरव्यूअर रहेंगी मृदुला रॉय। 6:30 पर श्रोताओं प्रसारित होगा आदि भाषा में समाचार, जिसके बाद 6:35 पर हम लाएंगे आज के कलाकार का खास कार्यक्रम। आज के कलाकार में हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के जो ना सिर्फ गीत से हमें मदहोश करते हैं, बल्कि उनके जो जीवन है, उनकी जीवन शैली भी हमें खास इंस्पायर करेंगे। ठीक साथ

बजे आप सुनेंगे निशी भाषा में समाचार, जिसके बाद 7:05 पर हम सुनेंगे माई स्टेट माई प्राइड, और फिर आएगा दोस्तों 7:35 पर हिंदी फिल्म सॉन्ग का एक छोटा सा कार्यक्रम। 8 आप सुनेंगे वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप। 8:15 पर हम लाएंगे अरुणाचल न्यूज रील। 8:30 पर प्रसारित होगा वेस्टर्न मेलोडीज का कार्यक्रम तिची कोकोलोलो के साथ। ठीक 9 श्रोताओं आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत का कार्यक्रम, जिसके बाद 9:30 से आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले FM गोल्ड के लिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का पहला कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। दोस्तों गुड इवनिंग ईटानगर में चलिए सुनते हैं पहला गीत। हम सुनेंगे फिल्म चमेली से सुनिधि चौहान की आवाज में भागे रे मन।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं टीचर्स डे। एक ऐसा दिन जब हम उन सभी टीचर्स को दिल से थैंक यू कहते हैं जो सिर्फ हमें किताबी ज्ञान नहीं देते बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाते हैं। टीचर वो होता है जो हमारी गलतियों पर हमें डांटते भी है, समझाते भी है और हर बार हमें बेहतर बनने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। स्कूल और कॉलेज के दिन शायद वक्त के साथ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन एक अच्छे टीचर की बातें और उनकी दी हुई सीख हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और सच कहूँ तो हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा टीचर जरूर होता है जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। तो आज के इस खास मौके पर ईटानगर के सारे टीचर्स को हमारे तरफ से दिल से हैप्पी टीचर्स डे। आपका समय, आपकी मेहनत और आपका पेशेंस हम सब के फ्यूचर को शेप करता है। चलिए दोस्तों अब सुनते हैं एक और गीत गुड इवनिंग ईटानगर के इस कार्यक्रम में। हम सुनेंगे चांद तारे।

0: The Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to Rs. 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership.
4: दोस्तों, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहती हूँ. आज सिर्फ टीचर्स डे विश मत कीजिए, बल्कि अपने टीचर्स को जेन्युइनली थैंक यू बोलिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा थैंक यू मैम भी उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ला सकता है. इसी खूबसूरत थॉट के साथ मैं हूँ आपकी अपनी बिंदुंग दिंदो मंच, और जुड़े रहिए हमारे आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, क्योंकि हम बात करते हैं दिल से दिल तक. और वंस अगेन ईटानगर के सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, और हाँ, अपने फेवरेट टीचर को आज जरूर विश कीजिए. दोस्तों, अब कुछ देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसके बाद प्रसारित होगा इंग्लिश न्यूज, और फिर हम सुनेंगे नोक्ते भाषा में समाचार.
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है. अभी आप सानु शर्मा से समाचार सुनेंगे. पहले मुख्य समाचार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा. उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की. उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया. प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे. बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी. भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी, और अधिक राहत सामग्री के साथ बैली ब्रिज भेजे जाएंगे. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. शिक्षा दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है, वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है. राष्ट्रपति ने कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता, कौशल विकास और उद्यमिता देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि ज्ञान की शक्ति बनने के साथ साथ भारत को दुनिया के स्किल कैपिटल बनना देश की प्राथमिकता है. ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने, सही फैसला लेने और देश की प्रगति में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाती है. उन्होंने कहा कि समर्पित शिक्षक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्र निर्माता है. राष्ट्रपति ने महिला अधिकारियों और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सावित्रीबाई फूले के योगदान को भी याद किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पुरस्कार प्रदान किए. 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूली शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए. राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए. इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल है। समारोह में सभी पुरस्कार विजेताओं के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र भी दिखाए गए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और डॉ सुकांत मजुंदर, स्कूली शिक्षा सचिव टी के अनिल कुमार, उच्च शिक्षा सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी तथा कौशल विकास और उद्यमिता सचिव देवाश्री मुखर्जी भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बचपन बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में वास्तविक बदलाव लाने के लिए शिक्षकों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर उनके जीवन का हिस्सा बनना होगा। श्री मोदी ने बच्चों के अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई। उन्होंने स्क्रीन की लत कम करने के लिए खेलकूद, बाहरी गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने का

0: सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर महिलाएं स्वेच्छा से स्वास्थ्य जांच के लिए आगे आ रही हैं, जो बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके प्रति लगातार जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे अनजाने में भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षा दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी है। गृहमंत्री ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखाते रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षा ज्ञान कौशल आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्षों में इस संस्था ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले प्रतिभा को तैयार किया है। शताब्दी समारोह शिक्षा दिवस के अवसर पर हो रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। बिहार में गंगा, गंडक और कोसी नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ से 16 जिला प्रभावित है, जबकि पटना समेत 14 जिलों में हालत गंभीर बनी हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रहा है। विभाग ने अनुमान लगाया है कि गांधी घाट गेज साइट पर बाढ़ का नया उच्चतम स्तर दर्ज किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप नदी के बहाव वाले इलाकों, खासकर दियारा क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्री ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे समेत 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बैली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉ त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्र की लूट है। श्री द्विवेदी ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा की जांच में अनियमितताएं सामने आई है, जिसमें स्ट्रांग रूम तोड़ने और प्रश्न पत्र में छेड़छाड़ करना शामिल है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पूर्ण परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायत के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। चाइना मास्टर बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी भारतीय जोड़ी आज शेंजेन में मेंस डबल सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेविन क्योंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंड्रेस स्कारूप रास्मुसेन को हराया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। President Draupadi Murmu today said that a Viksit Bharat will be possible with quality education. Addressing the National Teachers Awards Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers' Day, the President said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms. President Murmu added that academic excellence, skill development and entrepreneurship plays a crucial role in development of the nation. The President noted that establishing India as the skill capital of the world alongside becoming a knowledge power is a priority of the country. President Murmu today conferred the National Teachers Awards. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The President also presented national awards to 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Short documentaries on each awardee depicting the exemplary work done by them are showcased at the event. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of the student. He made these remarks while interacting with the National Teachers Day Awards winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with the teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive. And for that, they should also preserve the child within themselves. He stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus. Highlighting key health and social issues, Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction. Modi also referred to the national education policy and stressed the importance of taking children outside the classroom and connecting them with real-world skills and forms of work. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of the India's premier institutions of higher education. It is a distinguished center of learning in commerce, economics and management. Established in 1926 by eminent industrialist and philanthropist Sir Sri Ram, the college has over the past century nurtured generations of scholars, professionals, administrators, entrepreneurs, policymakers and nation builders. The flood situation remains critical in 14 districts of Bihar, including the state capital, Patna. Several rivers are flowing above the danger mark, while low-lying areas remain uninundated. The flooding has affected normal life in several areas. Relief and rescue operations are underway in the affected areas. External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a five-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trisuli Bazaar area of Nepal, bringing a total count of Indian evacuees to 169. sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing

0: समाचार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: रंगजा वन बंगा बाजी सान पोट डाउन रेन नंग नोक्ते प्रोग्राम चोतादन थजा सेप्टेम्बर जंग वन बंगा तारीख हुनी बजा थजा खबर कोई हन तिलियन तांग जंग मा थजा वा खबर डाइन का प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मा थजा वा न्याफेतो तेहे रंगवो टीचर्स डे जाको न्यू दिल्ली नंग फंक्शन डंग ताको नेशनल टीचर्स अवार्ड हे चोको वा अरे अवार्ड पा रोक ब्ली वाइस रंग स्कूल टीचर्स से मा चोवा वा गाले अरे लेको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ले पॉलिटेक्निक सेवा रोकनी वाट रंग टीचर्स ले फैकल्टीज से नमिंग अवार्ड पा को जो रेवा प्रेसिडेंट मुर्मूमा अरे रंगवो कांग इंग थोता को नंग दियक पा रोंग तंग तंग उन्नति विकसित भारत पा तादंग वांग न्याभे असंतंतम हेतो क्वालिटी एजुकेशन को पा वांटे अलम्थोन पा दाइका ngama प्रेसिडेंट मा लोजाब जो रेवा प्राइम नरेंद्र मोदी ममिंग अरे टीचर्स डे रंगवो चोंग को मजा न्यू दिल्ली नंग अरे नेशनल टीचर्स डे अवार्ड चो ते हे दमना चोमिंग वा अरे चोमिंग ताको निंग थो ताको टीचर्स से मा लता हे नंग न्याभ हे थो पा किताब टेक्स्ट बुक पर लोलो हे थो पा लदंग थंग मा लिहान ज्ञान हे हे थो पा मिंग लता हे रोंडोंग सनवांग रंग मा वांथे अलम थुन पजो दाइन का ngama मोदी मा टीचर्स से नंग चो थो कुजो रेवा ngale लता हे नंग न्याप पलोलो जो वे थुक पा लदंग थंग मा लिहान खेनाखो गाले एक्टिविटी सेमिंग लोम थुक मिंग जोंगा मा प्राइम मिनिस्टर मा टीचर्स सिनंग चोथो कु जोमिंग रेफा मिनिस्टर केंटो जिनी मा सनलामा गालो कम्युनिटी वा एमएलए हे मजा जारी चोनंग आसम दमनंग तंगमन होंगता थे लोबर सियांग डिस्ट्रिक वा हिमेले गर्मे थे हे नंग होंगवा वा अरे होंगवा वक्ता को चेंटो सेक्शन वा नोक तंग हे नंग हांती पे जो माम दंग रंग गाले जारी जंग वा मिन्यान हे तुंग नंग मिला मिली पे जो माम रंग सोंग तोंग रंग नोक तंग हे नंग चोथो को जो रे वक वा अरे होंगवा वक्ता को मिनिस्टर जिनीले को डिप्टी स्पीकर कार्डो नेग्योर एमएलए पेसी जिलिन गाले तोजीर कादू हे जमिंग दंग वक जीरो नंग देवा जीरो म्यूजिक फेस्टिवल दंग मिंग करंग लोबर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले लोकल स्टेक होल्डर्स हेमा रंगरूप का रकम पिजो लाभम खोखम छेन वक्त मजा अरे फेस्टिवल दंग मिंग इंग चुंग को जीरो नंग एमएलए हागे अपा कपोकन को प्रिपरेटरी कोऑर्डिनेशन मीटिंग वंटे लोसे जमिंग रेवो अरे फेस्टिवल को होकते चंतो आर्टिस्ट ले टूरिस्ट से सेफ्टी गाले थनिंग हुबी डरंग मा थोंहुन वन लिमा ngangam jo kampa mamla gi mor ka ban minga ma apa ma are meeting ko khonte kapu phana he nang chu thuk ko jo rewa dc in charge hage tarung le sp kenny bagra niming dang wakta are meeting ko are festival dang ming thepa maru kho kham hon minga ngeng he jo aja thampa chu thum ngop pa nahar lagan police ma wa the minyan pa chu lo khakla ma ate dakwa hu rewa ruk ni wan ram rang lpg cylinders pa chu lo ik are chu lo ik ka minyan pa pa ruk ram rang pa dang tuan itanagar wa ig park colony nang songte arjun juga pa jo daika ate itanagar wa joli road ngewa chu lat khakwa ate kho nang nahar lagan police station nang case pa registered la honta maja bandadewa ptc ko blood donation camp wante lo se wakwa are camp pa trims le RK Mission Hospital ngale Arunachal Life Saving Foundation tungko romaklam jo khokam lo se wakwa PTC wa police personnel ngale trainees tongwa ka hema are camp ko rokengi kwani khu units torang blood he he donate pa wanjo e wakwa dihak he athangwa T20 Women's Asia Cup to lomi wakai ka ko thaja Dubai International Stadium ko India la Pakistan tungnang final group A rang match pa eto lomi wakwa India pa ma ko Thailand le Hong Kong team pa jen lama semi-final nang qualify pa la dang ta jo Itanagar Meteorological Center nga ma cho ya thuk jun ko state ko wa Chivaramrang district se nang Hokming ya ta jani ko rang mok rang phak dam nang rang dong ita pa da rang ma yellow alert pa khi sol ka ai Chivaram district rang warning ko ika khan ko papum pare district pa ming dang ka jo thaja ataw ya nang nok te khobor la thum ta
2: HIV pawan te khonchachi ar khonchat va perang asantha ma chojat pasan
3: HIV khonchat wing te he safety ahu thama dihak damnam

श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में। दोस्तों, इवनिंग ड्राइव के इस कार्यक्रम की चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत से। फिल्म बिल्लू बार बार का ये गीत खुदाया खैर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो सिर्फ टीचर्स को थैंक यू कहने का दिन नहीं, बल्कि उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने का दिन है। टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दिन टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? इस दिन हम भारत के महान फिलोसोफर, टीचर और फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी कोमेमोरेट करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वो एक रिनाउंड फिलोसोफर और एजुकेटर थे और उनका मानना था कि एजुकेशन सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का प्रोसेस है। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने, उनके स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने की परमिशन मांगी। इस पर राधाकृष्णन ने कहा कि अगर उनके बर्थडे को सेलिब्रेट ही

करना है तो उसे टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। और इसी सोच से इंडिया में 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो आज के दिन उन सभी टीचर्स को याद कीजिए जो सिर्फ हमें पढ़ाते नहीं बल्कि हमें सोचना, समझना और जिंदगी में आगे बढ़ना भी सिखाते हैं। एक टीचर की एक छोटी सी बात, एक पीस ऑफ एडवाइस या कभी कभी एक सिंपल सा आई बिलीव इन यू किसी स्टूडेंट की पूरी जर्नी बदल सकता है। तो आज की शाम किसी अपने फेवरेट टीचर को एक कॉल कीजिए, एक मैसेज भेजिए या बस दिल से कहिए थैंक यू सर, थैंक यू मैम। चलिए दोस्तों, अब इवनिंग ड्राइव के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत। हम सुनेंगे फिल्म गजनी से जावेद अली एवं सोनू निगम की आवाज में, ए आर रहमान के निर्देशन में, गुजारिश।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
4: दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और मैं एक बात कहना चाहती हूं कि अ टीचर मे नॉट वॉक विद अस थ्रू आउट आवर जर्नी, बट द लेसन्स दे गिव स्टे विद अस फॉर अ लाइफ टाइम। दे डोंट जस्ट टीच अस हाउ टू रीड और राइट, दे टीच अस हाउ टू ड्रीम, बिलीव एंड बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। तो चलिए साथ ही अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। हम सुनेंगे फिल्म रॉकस्टार से

दोस्तों, शाम की इस खूबसूरत महफिल में आप सभी का स्वागत है। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम शाम की महफिल का। आज की शाम समर्पित है दोस्तों एक ऐसी फिल्म के नाम जिसके डायलॉग्स, कहानी और म्यूजिक ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिल्म है वास्तव। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शाम की महफिल में बजेंगे वास्तव फिल्म के गीतों का नॉनस्टॉप म्यूजिकल सफर। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए और बस म्यूजिक को फील कीजिए।

ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं, गोविंदा के संग। अरे समझे,

0: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
0: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: तो श्रोताओं, हमारी आज की शाम की महफिल के कार्यक्रम बस यही तक. अब प्रसारित होगा हमारा स्पेशल प्रोग्राम, क्योंकि आज है टीचर्स डे. तो हम आपके साथ लेकर आए हैं एन इंटरव्यू विद डॉक्टर एम क्यू खान, और हमारे इंटरव्यूअर रहेंगी मृदुला रॉय. तो आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे, साथ ही इस कार्यक्रम से आप इंस्पायर करेंगे, एजुकेट होंगे, यही हमारा गोल है दोस्तों. तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की ये खास कार्यक्रम.
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है. मैं हूं आपकी रेडियो साथी मृदुला रॉय. आज की विशेष कार्यक्रम यानी कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे बीच आज मौजूद है विशेष अतिथि डॉक्टर एम क्यू खान, डेरा नातुंग कॉलेज ईटानगर से. सर हमें अपने बारे में बहुत सारी जानकारियां देंगे, साथ साथ शिक्षक दिवस के बारे में भी जानकारियां देंगे. नमस्कार सर.
4: नमस्कार
3: सर, आपको हमारे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है.
4: धन्यवाद
3: सर. आपने यहाँ कितने समय बिताए सर, हमारे राज्य में अरुणाचल प्रदेश में?
4: मैं अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही लंबा समय बिताया. मैं जब 23 इयर्स का था तभी 16 अक्टूबर 1989 को डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर मैंने ज्वाइन किया, और 31 जुलाई 2026 तक हमने हायर एजुकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अपनी सेवाएं दी. और इस 37 इयर्स में 34 इयर्स लगभग डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज को, और 3 वर्ष 2 महीने गवर्नमेंट कॉलेज देवमुख में रहा. तो कुल मेरी सर्विस लेंथ 37 इयर्स की रही.
3: सर आप किस विषय पर पढ़ाते थे बच्चों को?
4: मैं इंग्लिश पढ़ाया थ्रू आउट माई लाइफ, जैसे इंग्लिश लिटरेचर. अब लिटरेचर के डिफरेंट जर्नर्स हैं, वो कविता भी पढ़ाया, उपन्यास पढ़ाया, नाटक पढ़ाया, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें हमने पढ़ाई लिटरेचर की. उसके बाद लिंग्विस्टिक्स पढ़ाया टू ऑनर्स स्टूडेंट्स, ईएलटी का पोर्शंस भी हमने पढ़ाए, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. तो ऑल अबाउट इंग्लिश, एवरीथिंग आई हैव टॉट एज पर सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय आरजीयू, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी. लेकिन इससे भी बढ़कर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि मैं मात्र इंग्लिश ही नहीं पढ़ाया, बल्कि मैं बच्चों को काउंसलिंग भी दिया और एब्सोल्युटली फ्री कोचिंग भी दिया. तो दशकों मैंने दिया, और वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड. जब मैं दोईमुख पोस्टिंग मेरी हुई आफ्टर माय सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वहां मैं 28 नवंबर 2017 को ज्वाइन किया और 5 जनवरी 2021 तक वहां था. तो वहां भी मैं क्लास भी लेता था और करियर काउंसलिंग एब्सोल्युटली फ्री कोचिंग वहां भी कराया. फिर डेरा नातुंग कॉलेज में भी इवन प्रिंसिपल के पद पे आने के बाद भी मैं क्लास भी लेता था और कोचिंग काउंसलिंग भी जब जब समय मिला मैंने कराया. जी
3: सर, आपका सबसे पहला कॉलेज कौन सा था अरुणाचल प्रदेश में?
4: वो आपका ही कॉलेज डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर. तो जब मैं 1989 16 अक्टूबर को आया, उस समय कॉलेज का नाम था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ईटानगर, फिर इसका नाम बदलकर गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर हुआ. और ये थर्ड नामकरण हुआ जब डेरा नातुंग साहब बहुत ही मेघावी शिक्षा मंत्री थे, और अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत इसमें हो गया पवन हंस क्रैश में. तो उनके नाम पे इस कॉलेज को डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज का नाम दिया गया, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए. जी
3: सर, ऐसे देखा गया अधिकतर लोग मतलब शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं, तो आपने ये रास्ता क्यों चुना कि

0: ये आपको लेक्चरर या फिर शिक्षक ही बनना चाहिए?
1: जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपका क्वेश्चन। एक्चुअली मैं जब क्लास 10 में था उसी समय हमारे एक टीचर बहुत ही डेडिकेटेड हुआ करते थे और उनको जो सम्मान मिलता था, रेस्पेक्ट मिलता था, तो उससे मैं प्रेरित हुआ और मैंने क्लास 10 में ही डिसाइड किया कि मुझे शिक्षक बनना है। तो बाद के वर्षों में जब मैं इंटरमीडिएट किया यानी क्लास 12, फिर इंग्लिश ऑनर्स किया, ग्रेजुएशन श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी से, फिर उसके बाद मैंने एमए किया, तो इन वर्षों में कई लोगों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे सगे संबंधियों ने, हमारे माता पिता ने बहुत प्रयास किया कि मैं अपना च्वाइस बदलूं, लेकिन आई वॉज क्वाइट क्लियर सिंस क्लास 10 के नहीं, मुझे शिक्षक ही बनना है, मैं टीचर ही बनूंगा। और मैं तब भी पढ़ाता था जब इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था, तब से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था प्राइवेट कॉलेजेज में, बीच में एक आध दिन जाकर पढ़ाता था। तो ये पैशन हमें टीचिंग का रहा है बिगिनिंग से ही।
0: तो सर आपने तो बचपन से ही मतलब सपना देख रखे थे कि मुझे टीचर ही बनना है।
1: जी बिल्कुल,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर इतनी लंबा सफर में क्या कभी आपको कुछ ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसे कि आप भी सोचते हैं तो मतलब कुछ दुखी महसूस होते सर आपको?
1: एक्चुअली मैं यदि कहूं कि कभी भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा तो ये गलत होगा, झूठ होगा, क्योंकि हर मनुष्य, हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय भी आते हैं, अच्छे समय भी आते, बुरे समय भी आते, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो 37 इयर्स के लंबे अरसे में मुझे कठिनाइयां कम हुई, लेकिन बीच बीच में कभी कभी हुई, विशेष करके जब तक मैं फुल फ्लेज्ड टीचर्स था तब तो अधिक कठिनाइयां नहीं हुई, लेकिन जब मैं प्रिंसिपल बना तो ये कैपिटल का कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, तो प्रिंसिपल के पद पे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है तो सभी को खुश नहीं किया जा सकता, हमें रूल्स देखना पड़ता है। अब कोई ड्यूटीज नहीं करेंगे तो मुझे बोलना पड़ता है, तो कुछ लोग अपनी ओर से थोड़ा नाराज हमसे जरूर हुए होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है कि कठिनाई नहीं हो, और जो लोग नाराज हुए वो अपने ढंग से कठिनाइयां भी उत्पन्न करने का प्रयास किया, पर मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि बहुत अच्छे से मैं हैंडल कर पाया, टैकल कर पाया सारी कठिनाइयों को झेलते हुए। और मैं पॉजिटिव वाइब से बोलूंगा कि पॉजिटिविटी इज पावर, तो 99% केसेस में सब कुछ अनुभव मुझे बहुत अच्छा रहा, वो एकाध परसेंट कभी कभी कुछ कठिनाइयां हुई।
0: सर जीवन में तो उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, जैसे कि आपने कठिनाइयों का भी सामना करा, तो क्या कभी ऐसा भी दिन आया जिस पल को आप याद करके आज भी मुस्कुराते हैं अकेले में सर?
1: ये ऐसे तो कई पल आए और उसे याद करके मैं मुस्कुराता हूँ। मुझे अपने स्टूडेंट से, अब मैं अगर काउंट करता हूँ, चूंकि मैं सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में मुझे 37 वर्षों में 34 वर्ष तक सेवा देने का मौका मिला। ये बड़ा कॉलेज था, एक जमाना था 2008 से लेकर 13-14 तक 8,000-9,000 स्टूडेंट्स होते थे, तब उस समय कोई भी आता था तो हम लोग मना नहीं करते, उनको एडमिशन देते, लेकिन 2014 के बाद 4,000 से 5,000 होने लगे, क्योंकि इनटेक कैपेसिटी फिक्स हो गई ये जब सेमेस्टर सिस्टम आया। तो बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव आए, जैसे मैं फ्री कोचिंग कराया, काउंसलिंग कराया, तो जब भी रिजल्ट निकलते थे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैं गर्व से कहता हूं कि 40 से 50% ऐसे बच्चे जो हमारा कोचिंग करके आते थे, तो वो उनके सक्सेस का सुनकर जो खुशी की अनुभूति होती थी और जो मुस्कुराहट होती थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लगता। जैसे आप भी हमारी शिष्या हो, इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही सफलता के शिखर को पार किए और हर क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है और वो रेयर प्लेजर की अनुभूति होती है। हर जगह हमारे स्टूडेंट्स आज मिलेंगे, इवन हमारे कॉलेज में ही 32 हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अल्मा मेटर को सर्व करते हैं, आरजीयू में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, सभी कॉलेजेज में और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में और हर डिपार्टमेंट्स में आए, आप सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज में हैं, तो कई ऐसे क्षण आए जो बहुत मेरे लिए सुखदायी रहे।
0: सर, जब आप पहले यहाँ आए थे उस समय के छात्रों और अभी जो फिलहाल के जो छात्र छात्राएं हैं

0: उनमें से आप क्या भिन्नता है मिलते हैं सर, क्या फर्क है सर दोनों में?
1: दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और इसमें छात्रों में ही नहीं टीचर्स में भी फर्क है। उस समय जब मैं आया था 1989 में, तो उस समय से लेकर जब तक ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं आया, स्क्रीन डिजीजेस से बच्चे सफर नहीं किए, तब तक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो संबंध होते थे वो बहुत स्ट्रांग होते थे और टीचर्स भी बच्चों को अपने संतान की तरह मानते थे और बच्चे भी टीचर्स को अपने माता पिता के दर्जा देते थे और उनको उनके साथ अटैचमेंट बहुत ही गहरा हुआ करता था। पहले तब उतना सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं था, लेकिन हाल के वर्षों में आप 10 से 15 वर्षों में अगर देखें तो इसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गए, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फिर ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो इसके चलते स्वाभाविक है बच्चों में भी डिस्ट्रैक्शंस आया और पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर नाउ विक्टिम्स ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शंस ऑफ सोशल मीडिया, इंटरनेट का जमाना आया। तो अब थोड़ी सी वो जो पहले वाली बात अब नहीं रही, वो प्योर बॉन्ड एंड अटैचमेंट जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच रहता था। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूंगा, नॉट विद द इंटेंशन टू ऑफेंड एनी वन, नो ऑफेंस टू एनी वन, तो मैं रिटायर्ड हुआ 31 जुलाई को, तो हमसे जो अधिक संख्या में मिलने आए वो लोग थे जिनको मैंने 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल पहले पढ़ाया। हाल के वर्षों में जिनको मैंने आज पढ़ाया, 2 साल पहले, 4 साल, 5 साल पहले, तो ऐसे बहुत कम, रेयर, 1-2%। तो इससे साफ सिद्ध होता है, जाहिर होता है, फर्क दिखाई देता है कि पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनसे बहुत गहरा लगाव होता था, अटैचमेंट होता था। आज भी मैं जिनको 1989, 1991, 1992 में पढ़ाया, आज भले वो बहुत ही सक्सेसफुल भी हैं, बहुत अच्छे पद पे भी हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे आकाशदीप नाहरलगन या कहीं भी देखें या किसी फंक्शन में तो वो मुंह घुमा लें या हमसे स्किप करें, आएंगे प्यार से मिलेंगे। तो ये फर्क मुझे साफ दिखाई देता है कि पहले वाली बात अब नहीं रही, वो संबंध अब नहीं रहा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिलोंगिंगनेस और अटैचमेंट नहीं रहा।
0: बच्चे सर अनुशासन में भी,
1: या अनुशासन, बिल्कुल बिल्कुल अनुशासन, पहले तो अनुशासन में भी ये थे, ओबेडियंस ज्यादा थे। अभी के बच्चे, सिर्फ हम स्टूडेंट्स को ही नहीं कहेंगे, देयर हैज बीन डिटेरियोरेशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट्स हो या कहीं भी, और दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि इथिक्स जो है या वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, उसमें पतन हुआ है, उसमें गिरावट आई है। जैसे पहले टीचर से बच्चे झूठ नहीं बोलते थे कभी भी, लेकिन आज तो बात बात में झूठ बोलते हैं कई बच्चे। हालांकि मैं सभी को नहीं कहूंगा, हो सकता है उनके अपने संस्कार और परिवार के परवरिश पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अधिकांश वो ऐसा नहीं सोचते कि झूठ बोलना कोई पाप की बात है या झूठ बोलना कोई गलत है। तो 90-95% केसेस में आराम से झूठ बोल लेते, लेकिन पहले के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो झूठ कम बोलते थे, विशेषकर अपने माता पिता से, अपने टीचर से, और उनकी हर बात को माना करते थे, अनुशासन अधिक था पहले।
0: सर आज शिक्षक दिवस है, इसलिए मैं शिक्षक के ऊपर कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सर विशेष शिक्षक के किस प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है? सर कोई भी, मतलब अगर टीचर है उनके पास किस गुणों का होना जरूरी है? सर
1: तो इसमें मैं पहले उसी पे ले जाऊंगा, जब मैं ये कहता हूं कि स्टूडेंट्स, आज के समय के स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से झूठ बोल लेते हैं, तो स्टूडेंट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ टीचर्स। तो मैंने ये भी देखा है कि पहले के टीचर झूठ नहीं बोलते थे, पहले के टीचर पूरी तैयारी से आते थे और उनको लगता था कि मैं कभी भी अपना क्लास नहीं मिस करूं और क्लास जाऊं तो पूरी तैयारी से बच्चे कुछ सीखें। तो टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी रोल होती है, तो टीचर्स और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो पहले प्रैक्टिस करें, तब प्रीच करें, तब उसका असर स्टूडेंट्स पे होगा। अगर कोई भी टीचर्स कभी झूठ ना बोले, पेरेंट्स झूठ ना बोले, परिवार के बड़े लोग जो हैं सदस्य वो झूठ ना बोलें, तो बच्चे भी शायद झूठ उतना नहीं बोलेंगे। अगर वो अनुशासित हैं, समय पे आना क्लास, समय पे ड्यूटी करना, जाना, समय पे जगना, समय पे खाना, समय पे सोना, तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट हो जहां बच्चे किसी न किसी परिवार से ही आते हैं, और विद्यालय हो या महाविद्यालय विश्वविद्यालय, अगर वहां भी शिक्षक बहुत ही कर्मठता ईमानदारी अनुशासन के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पर जरूर पड़ेगा और बदलाव अभी भी आ सकती है। तो इसके लिए मैं मात्र स्टूडेंट्स को और बच्चों को ही दोषी नहीं ठहराता, इसमें हम लोगों में भी कमी है, बड़े लोगों में भी, टीचर्स में, पेरेंट्स में, वो इसलिए बच्चे भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं।
0: सर, पुराने जमाने में शिक्षक बच्चों को काफी मात्रा में सजा दिया करते थे, पर आजकल ऐसे है सर, बच्चों को अगर एक भी शब्द कुछ आप बोल दिए तो, या फिर टेढ़े आंख से भी देखे तो बहुत बड़ी हंगामा हो जाती है सर, इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर?
1: एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ एक कवि रहे हैं रोमांटिक एज के, इंग्लिश के, उनका कहना है स्पेयर द रेड स्पॉयल द चाइल्ड, मतलब बच्चों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनका ये कहना है। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो भी आज के समय में हैं, वो किसी भी प्रकार के कॉर्पोरल मतलब फिजिकल पनिशमेंट के फेवर में नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे डब्बू बन जाते हैं और उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती है। तो अगर बच्चे गलती भी करते हैं तो उनको प्यार से समझाना चाहिए, न कि उन पर हंटर या उनकी पिटाई हो, ऐसा नहीं, इसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। तो क्या होगा, बच्चे सप्रेस्ड पर्सनालिटी उनकी हो जाएगी और उसमें पर्सनालिटी में निखार नहीं होगी। तो बच्चे को हंसते हंसते पढ़ाना है, और अगर गलती भी करते हैं तो उनको प्यार से समझाना है। तो कॉर्पोरल और फिजिकल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए।
0: सर, आप हमारे शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन के लिए?
1: हाँ, ये आज शिक्षक दिवस है और सर्वपल्ली श्री राधा कृष्ण, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स जिनको कहा जाता है, और उनके जो जीवन थे, उनकी जो अपनी लाइफ थी, उसको तो पूरी तरह अगर एडॉप्ट कर लें एवरी टीचर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर पूरी तरह नहीं भी तो कम से कम जो बुनियादी आवश्यकता है, टीचर अगर हम बने हैं तो अपने आप को दूसरे गवर्नमेंट इम्प्लाई से या दूसरे इम्प्लाई से नहीं कंपेयर करें। ये बहुत ही नबुल प्रोफेशन माना जाता है और टीचर को भगवान का रूप कहा जाता है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पे सभी टीचर दिल से ये खुद से अपने आप से वादा करें कि मैं आज से बेहतर टीचर बनूंगा, बेटर पर्सन बनूंगा, बेटर ह्यूमन बीइंग बनूंगा और आदर्श बनूंगा अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। मैं खुद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अनुशासनहीनता नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं ऐसी चीज कभी नहीं करूंगा जो आत्मगिलानी का मुझे शिकार करे, और मैं एक आदर्श शिक्षक के रूप में आज से अपने आप को कंटिन्यूअस इम्प्रूव करूंगा, ताकि बच्चे सभी अच्छी चीजें हमसे सीखें और बच्चों का भविष्य हम उज्जवल बनाएं।
0: टीचर तो एक आईने की तरह होते
1: जी,
0: हैं सर,
1: बिल्कुल
0: उसी से ही सीखते सर बच्चे।
1: एग्जैक्टली और टीचर क्या बोलते हैं वो माने नहीं रखता, टीचर क्या करते हैं वो इम्पैक्ट करता है बच्चों को, वो देख कर सीखते हैं, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट्स हो। तो इसलिए अब कभी कभी कोई आया घर पे, आज के पेरेंट्स बोलेंगे अपने बच्चों को, बोल दो पापा नहीं है, बोल दो मम्मी नहीं है, तो वो तो बच्चे सीख रहे हैं ना, और फिर हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो झूठ ना बोलें, वो झूठ बोलेंगे। तो वही बात है, टीचर को भी अपने आप में बहुत सुधार लाने की आवश्यकता है।
0: सर, अब जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: श्रोताओं से चलते चलते अब मैंने अवकाश प्राप्त कर लिया, जैसे बताया 31 जुलाई 2026 को ये हमारा सफर अरुणाचल में बहुत अच्छा रहा, और हमेशा की तरह आज भी मैं यही संदेश दूंगा श्रोताओं को कि आप कभी भी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ें, पॉजिटिविटी इज पावर, और हमेशा ये देखें कि ग्लास आधा भरा हुआ है, ये न देखें कि गिलास आधा खाली है, दैट इज पॉजिटिविटी। और अपने आप को लेमिनेट करके रखें, आप अब समझ सकते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो चीजें अच्छी हैं उसको आप ग्रहण करें, जो अगर आपको लगता है कि आप में कुछ त्रुटियां हैं, बुराइयां हैं, डिमेरिट्स हैं, वीकनेसेस हैं, तो उससे आप अपने आप को मुक्त करें, उसे छोड़ें। और आपकी संगति सही होनी है, कंपनी सही होनी है, और जीवन में एक लक्ष्य

0: एक गोल आप सेट करें और उस गोल को प्राप्त करने की दिशा में पूरी लगन से समर्पित होकर काम करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन ऑल्सो डू व्हाट एनी पर्सन एनी बॉडी कैन। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल विद इन योर हैंड। हो हौसला बुलंद राही तो मंजिल मिल ही जाती है, चले तू दो कदम तो मंजिल 10 कदम चलकर पास आती है। तो बी बोल्ड, बी ब्यूटिफुल, बी स्ट्रांग एंड बी फर्म टू कंकर योर गोल एंड फुलफिल योर एम्बिशन, यू विल सक्सीड इन लाइफ।
1: सर आप हमारे यहाँ आए और बहुत सारे जानकारियां दी हमारे शिक्षकों को, विशेषकर बच्चों को भी, उसके लिए आपको आकाशवाणी ईटानगर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर।
0: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर इंटरव्यूइंग मी, दैट्स ग्रेट।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर भेंट वार्ता डॉक्टर एम क्यू खान के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे कुछ ही देर में आदि श्रोताओं का कार्यक्रम आदि भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईरानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां बात हम करते हैं दिल से दिल तक।

selak ibom dola bito delok ke 6 central government organization lok teacher kidar mcom bito delok ke higher education institute amlang polytechnic lok teacher kidar mcom national award am 21 teacher ko bito nahar lagan police aing aum gas cylinder pe obinam recover ibito ko pyona amisim nahar lagan police station lo case KSM under section 305 close a lock restaram ito pyona amisok amuna arjun jugab tartiers na ko delok ke bim itanagar juli road lock arresto women t20 asia cup 2026 cricket ikisinabam indian airline pakistan dubai international stadium lo final group a match am cm ka indian time lo 8 baji lok irovia मलो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी बंदर दियालो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप पबो को इबोतो ब्लड कैंप पबो सोलो पुलिस पर्सनल एलंग पुलिस ट्रेनिंग इनाकिदार लेको दोला 779 यूनिट ब्लड को डोनेट इतो कैंप सिम पीटीसी बंदर दुआ ट्रिम्स नहर लगन आरके मिशन हॉस्पिटल इटानगर दलो के अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन लेको दोला इबोसितो पीटीसी लोक प्रिंसिपल प्रिंसिपल दुसु कालिंग बिल उदोने ब्लड डोनेशन इनाम सी कम्युनिटी सर्विस एम लंग सोशल रेस्पोंसिबिलिटी एम लेंकान सी नाम प इदुंग एम लुकान तो 2026 जीरो म्यूजिक फेस्टिवल लगा प लुअर सिवनसिरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एलंग लोकल ऑर्गेनाइजेशन लेको दोला आई रूप रेडी बम दुंग फेस्टिवल सोलो सिक्योरिटी देलोक ट्रैफिक मैनेजमेंट असी तिरपनाम इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट emergency service kitar am ai rup ready bom dum emile hage appa bu lukan dona zero festival se music festival program pa tombang solo arunachal solo culture tradition diversity am tani among si kendo pa promote ibom dum am lan lukan to arunachal west coming lok first time angu country lok asin ko recover itung recover inam solok amuna opio fogon japonicas commonly ludung sim duart lily tarp delok mendo grass am kom ludung asin sim dita yorba 2185 meter jega among raing kolok patung asin si east asia lo available pa kadung deputy chief minister sonamen ludona अरुणाचल लगा पे बोत्रुना अतिको पे इधुम दलोक के सिंग सिम रिकोपर इबोना किदार एम कोम आई रूपे कोई तो मेलो मिनिस्टर केंटो जिनी भी गालो एमएलए तकम दलोक के गालो सिविल सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस किदार एम लीड दोला लुअर सियांग लोक हिमे दोलुंग लो आतो आदोला कोंदो का असम अरुणाचल बॉर्डर हिमे बोदोती लोक मारमन सिला इंसिडेंट इकुएम कांगो दोला दोलुंग अमी किदारम लुरिक्सिदोला लुकान दोना मारमन बुमन कामा दोला लको पर ये वसिदो पर लुवम तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली लो नेशनल टीचर डायलॉग अवार्ड पाना टीचर किदार एम लुकान दोना पुरीएम किताब पर तुम लोग पुरीबोमाद इदोला आउट ऑफ सिलेबस लोग कम পরিবদলা আঙু আঙু আউট নলেজ এম কম পালা দোপে দেলোক টিচার লোক আগের কিতাব পেতম লোক নলেজ এম বিমা দোলা আঙু স্কিল বেলু মোটিভেশন দেলোক ডেভেলপ কাদোপ ইবম দোলা স্টুডেন্ট ফিউচার এম স্ট্রং পে বনাই দোলা ইম্পর্টেন্ট রোল এম আই রূপে ইবম দোপেম দুকান্ত প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু ইন্ডিয়ান সলক পরমার প্রেসিডেন্ট ডক্টর সর্বপালি রাধাকৃষ্ণন মৃপাং সিদোলা বিকেন্দাম পানাম স্কুলার রাইটার দলক লিডার আপ গদোলাঙ্কম টিচার আগের এম আই আপ মুবম সিনাম আপ এম আই রূপ কোয়িত লিপ্ত মেট্রোলজিক্যাল সেন্টার ইটানগর লুকান্দোন ইয়েলো এলার্ট লো এইং কোলাং আউম ডিস্ট্রিক্ট দলক পাপুমপারে ডিস্ট্রিক্ট টুইনস ক্যাপিটাল ইটানগর নাহালগন এম ওয়ার্নিং বিতুং लुपा बिनम जेगा सोलो नेक्स्ट 24 आवर्स लो बजरूप दोमरी लिंग दलोक बजरूप पदों मसिया ओला दुंगमला लुकंतो

जी हाँ दोस्तों, ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ बात होती है दिल से दिल तक। और स्वागत है आप सभी का दोस्तों कार्यक्रम आज के कलाकार में। दोस्तों आज के कलाकार में, आज के इस महफिल में हम बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने अपनी कला से हमारे दिलों में एक खास जगह बनाई। और आज के इस महफिल में हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे फनकार को जिनकी आवाज में कभी शरारत थी, कभी मोहब्बत, कभी दर्द और कभी जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट कुमार सानू के बारे में। इससे पहले कि हम और आगे बात करें, चलिए हम सुनते हैं उनका बहुत ही प्यारा सा गीत, ओ जाना ना जाना, फिल्म तेरे नाम से।

दोस्तों, मैं क्षमा चाहती हूँ कि ये गीत ओ जाना ना जाना है फिल्म जब प्यार किसी से होता है, ना कि तेरे नाम। शायद मैं कंफ्यूज हो गई थी ओ जाने जाना से, क्षमा कीजिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की शाम दोस्तों हम लेकर आए हैं एक ऐसी आवाज, यानी कुमार सानू, जिसे सुनते ही शायद आपको 90s के वो दिन याद आ जाए। कैसेट प्लेयर, फेवरेट गाने के रिवाइंड, होती हुई टेप और दिल में किसी खास इंसान के लिए छुपी हुई मोहब्बत। कुमार सानू का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को कलकत्ता, जो आज कोलकाता है, में हुआ था। उनका असली नाम है केदारनाथ भट्टाचार्य। संगीत उनके लिए बिल्कुल अनजाना नहीं था। उनके पिता पशुपति भट्टाचार्य खुद एक वोकलिस्ट और कंपोजर थे। कुमार सानू ने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत 1980s में की, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1990 की फिल्म आशिकी से। आशिकी के साउंड ट्रैक ने उन्हें हिंदी सिनेमा के लीडिंग प्लेबैक सिंगर्स में ला खड़ा किया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, नजर के सामने, अब तेरे बिन जैसे गानों ने उनकी आवाज को हर घर तक पहुंचा दिया। और फिर आया 90s का वो दौर जहां कुमार सानू की आवाज जैसे रोमांस का दूसरा नाम बन गई। साजन, दीवाना, बाजीगर, 1942 अ लव स्टोरी, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म्स और सुपरहिट सॉन्ग्स। मेरा दिल भी कितना पागल है, बाजीगर ओ बाजीगर, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये सिर्फ गाने नहीं थी, ये एक पूरी जनरेशन की यादें हैं। तो चलिए चलिए इन्हीं यादों को एक बार फिर से ताज़ा करते हैं और सुनते हैं कुमार सानू का एक और प्यारा सा गीत। फिल्म राजा हिंदुस्तानी से हम सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में परदेसी।

0: Attention, Pari Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों, हम बात कर रहे थे कुमार सानू के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमार सानू ने 1990 से 1995 तक लगातार 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जीते और 1993 में उन्होंने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन कुमार सानू की कहानी सिर्फ अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। उनकी आवाज की सबसे खास बात थी उसकी मेलोडी, वो सॉफ्टनेस जो एक रोमांटिक सॉन्ग को इंटीमेट बना देती है, और वो एक्सप्रेशन जो एक सैड सॉन्ग को सीधा दिल तक पहुंचा देता है। इसीलिए उन्हें प्यार से मेलोडी किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता था। और हिंदी सिनेमा तक सीमित रहने के बजाय कुमार सानू ने हिंदी के साथ साथ बंगाली, नेपाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी और ओडिया जैसे कई भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए। 2009 में उन्हें

है भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, कुमार सानू की आवाज को एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो शायद हम बस इतना ही कहेंगे कि कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और कुमार सानू की आवाज उन्हीं आवाजों में से एक है। तो चलिए, यादों के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा लीजिए और लौट चलिए उन्हीं हसीन शामों में। हम सुनेंगे कुमार सानू की आवाज में एक और आखिरी गीत फिल्म दिल है तुम्हारा से, मस्ताना मौसम है।

0: 지 따갑세 아감고 물래 아까스파니 이타나걸 일꿈 로케서 보이사 멀린지든 물론 이 물을 돌루가 밥네 냠냐가고 아니오면 억지르가베 HIV라 AIDS가 빠고 삼닝의 젠도 HIV AIDS 알만보 HL 지 따갑세 아감고 물래 아까스파니 이타나걸 일꿈 로케서 보이사 멀린지든 물론 이 물을 돌루가 밥네 냠냐가고 아니오면 억지르가베 HIV la AIDS ke pago samning chendo HIV AIDS alman bo HL ab su tel so chim bo sam chinam sam nu le bos dubri ma pan ma so HCM yo kam chida pa hal so ning ni vyap si tan hal do ma de ne nu le sam al ja chen do dubri pa sam chen do dubri nam si yo kam nu le chen do bolo so H pago sam nu le ayab ka al chen bal do bolo kam nu so H wo ning do ja kam so H sam nu le anyab si su du gitai na si koi go su du gitan ओगे HIV ला AIDS ओगे कजिदन है ब्लॉक कम सीनियम निगा दोबम कोलो ओगे सो उई ना को सुन दोल कम ओगे सो सो बीजीपी न नम पी को सुन नी एच वो ओगे पी कम हो सो एच सी दोदन ओगे सो एच सी नुले एच सी उसी मादन नुलुक अला चिर कोलो चेतिन मिसल दोकलो लेकिन गो दवन दावन ला दोल कम नुले सी एच सी उमादन है ओ गाव नुले एससी दो नै दोमा दने हम मोद मोदम का द नुल मेडिकल हाला नुल एंगम का कातम दो लिपाने ओ पेन कोलो मुलु निंग एचआईवी ला एस गुतु गोरा लो निन दोद लो कम होनी तुलो हम कम नुल अन्या बि दो दो लिदन साम नुल तिमपा दो लिमा दने साम या नुल से का दो लिपने एम अबदी सि से काम अब अन्या मा तिमपा बन्यो कम सोनी सि एचआईपी दो ता दने ओगे साम नुल चेन दो तकल बाहरा नुल चिन दो लो कम नुल 1097 host number so call mug do sam anya ba takat ka og sam chem do sam ayar gi mug do sam nulam echap ma do wel kal do bung a Arunachal Pradesh state aids control society og dhs nahar logon log a jilin panan ke se takap se puye het ko paya lin cho
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम निशी भाषा में समाचार और निशी भाषा में एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। चलिए अब वक्त है माय स्टेट माय प्राइड के कार्यक्रम का। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक, और मैं हूं आपकी आरजे मंच। तो चलिए शुरू करते हैं माय स्टेट माय प्राइड का ये खास कार्यक्रम।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज। माय स्टेट माय प्राइड इस कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं आपकी रेडियो साथी गैरत। दोस्तों, इस अंक में हम आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो अपनी डेडिकेशन और अपने कॉन्फिडेंस से राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को प्रेरित किया है और आज भी हमें प्रेरित करते हैं। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार अरुणाचल प्रदेश का नाम दर्ज करने वाले श्री तापी मरा से आकाशवाणी द्वारा की गई इंटरव्यू के कुछ प्रेरणादायक अंश आपके साथ साझा कर रही हूँ, जो अपनी गैर मौजूदगी में भी राज्य का सितारा बना हुआ है और अरुणाचल प्रदेश का गौरव है। बचपन में ही यानी अपने क्लास 4 में ही तापी जी ने ये निश्चय किया था कि उन्हें हिमालय की चोटी पर फतेह करना है।
3: जब हम बचपन में क्लास 4 में पढ़ाई किया करता था, एक दिन क्लास करने के बाद लेसन 3 में था, लेसन 3 में सोशल साइंस में मिस बचेंद्री पाल के बारे में एक पैराग्राफ था। एक पैराग्राफ पढ़ाने टीचर पढ़ाने के बाद हिमालय का बारे में डिस्क्राइब कर रहा था, उसमें बचेंद्री पाल का बारे में माउंट एवरेस्ट बारे कहानी हम सुन ले हिमालय। फिर मेरा घर पढ़ाने के बाद स्कूल छुट्टी होने के बाद हम घर गया, घर में आने मम्मी को पूछा है, मम्मी बोला कि हिमालय कहाँ में बोला, मेरे मम्मी बोला हिमालय बहुत दूर है। हम बोला कि हम कर सकता है क्या, मेरे मम्मी बोला कि तेंजिंग जी का नाम लिया है, तेंजिंग शेरपा का नाम लिया है, तेंजिंग नोरगे शिरपा का। उसने बोला कि एक कुली माउंट एवरेस्ट को हिमालय को चढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली करेगा बोला।
4: बिल्कुल।
3: मेरा पापा को पास किया, पापा पूछा है, पापा को हम बोला कि ये कर सकता है क्या, बोला पापा बोला

0: कर सकता है, मेहनत, ईमानदारी और कॉम्पिडेंस
1: जी
0: होने से आप दुनिया का किसी भी कोनर में जाकर, बूट को घर में जाकर, बूट को भी डिपीट करके
1: जी
0: घर में
1: वापस
0: जिन
1: आ
0: वापस आ
1: सकते हैं।
0: सकता
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: इसलिए मैं वहां से होने बाद में डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट पर मेरा दिमाग सेट हो गया
1: जी जी
0: टॉप में।
1: जी
2: दोस्तों, किसी भी चीज या काम में इंस्पायर्ड होने के लिए पूरे सालों की तपस्या भी जरूरी नहीं होती। एक लाइन या एक पैराग्राफ भी कई बार काफी होता है। बस निरंतर मेहनत करनी है, और ये बात मराजी ने सिद्ध कर दिया है। हर इंसान किसी न किसी तरह से किसी एक को इंस्पायर जरूर करती है। लेकिन जब तापी मरा जैसे नामी लोग अपनी कहानी बताते हैं, अपना परिश्रम और दृढ़ निश्चय की बातें लोगों को बताते हैं, तो आवाम के लिए एक सीख बन जाती है। कुछ लोग उन्हें सीधा फॉलो करते हैं और कुछ लोग उनकी कहानी से अपने आने वाली पीढ़ी को नई राह दिखाते हैं।
1: तो एक्सपेडिशन के बारे में जब तैयारी होती है, जो प्रिपरेशन होता है, जब आपने अपना प्रिपरेशन शुरू किया था, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए।
0: जब हम एक्सपीडिशन के प्रिपरेशन कर रहा
1: जी
0: था, करते समय में एक जो हमारा गांव में अब कहीं में भी नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था उस समय में, हम हर जगह में दरवाजा को खटखटाया, पूरा दरवाजा बंद हो गया था हमारे लिए।
1: जी
0: उसमें हम सोचा था एक अंधेरा हो गया। कभी कभी महसूस करता है अंधेरा होने के बाद भी कभी उजेला तो होता है।
1: जी
0: जब अंधेरा हो जाता है दिल सब डाउन हो जाता है,
1: जी
0: जब
1: जी
0: उजेला होता है तो दिल खुशी हो जाता है।
1: बिल्कुल सर।
0: इसी तरह मेरा भी जिंदगी में ऐसे, जब सब कुछ बंद हो गया था, हम अचानक हम सोचा है कि सब कुछ बंद हो जाए, मैं इंडियन माउंटेन फाउंडेशन IMF को और बहुत सा ऑर्गेनाइज को हम रिक्वेस्ट करते करते ढूंढ ढूंढ कर, मेरा दिल्ली से क्या बोलता है जो पहाड़गंज रेलवे स्टेशन से हम दिल्ली में आता था, दिल्ली में आने के बाद अरुणाचल चाणक्यपुरी में अरुणाचल भवन में अपना आरक्षक को वॉक कर हम पैदल आता था। तो
1: जी
0: मेरा पास ऑटो भाड़ा भी नहीं था, ऑटो भाड़ा तो था लेकिन हम उसको खर्चा करना नहीं चाहता था क्योंकि हमको एक्सपीडिशन के लिए यूज करना है
1: जी
0: बोलकर,
1: जी
0: समन करना है
1: जी
0: बोलकर। ऐसे करते समय में हम उम्मीद तो था अरुणाचल भवन में सीट मिलेगा बोलकर, लेकिन डोमेट्री में सीट तक नहीं मिलता था। सीट नहीं मिलने के कारण हम रात को कार में सो जाता था, गाड़ी गैरेज में हम सो जाता था।
1: जी
0: गाड़ी गैरेज में सोने के बाद हम ये चीज को सोचता है कि सोना था, इसका वन टाइम ब्रेकफास्ट करता था। वन टाइम ब्रेकफास्ट पास करने के बाद फिर हम नेक्स्ट वो लोग को मेन लैंड का आदमी को पाइट करने निकल जाता था। जाने के बाद भी एक्सलेंट होने के बावजूद भी हम चेंज नहीं मिलता था।
1: जी
0: इसके बाद मेरा सपना पूरा टूट गया, हम अपना स्टेट में आ गए। अपना स्टेट में दो तीन डिपार्टमेंट में गया, जाने के बाद फिर उसने भी ये चीज एक डिपार्टमेंट में तो ऐसे बोला है कि आप सकल सूरज से तू नहीं लगता है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंबिंग करेगा, ये लड़का एवरेस्ट चढ़ेगा बोलकर। इतना हुआ है, हम कभी कभी महसूस करता था फिल्म का सीन, जैसे
1: जी
0: हम एप्लीकेशन दे रहा था, आपका एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए टाइम नहीं है, आपका सर मेरा डॉक्यूमेंट्स को भी देखो, एसएलएन आपका डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए टाइम नहीं है, इसका सर फोटोग्राफ को भी देखो, फोटोग्राफ देखने के लिए टाइम नहीं है आपके
1: जी
0: पास
1: जी
0: आपको। इसके बाद पीर सब लोग ये लड़का एवरेज चढ़ेगा बोला बोलकर, हाँ को इतना हुआ है। होने के बाद हम उसको पॉजिटिव में लिए, निगेटिव कभी नहीं लिया,
1: जी जी
0: हाँ ये
1: बिल्कुल
0: अनजान है, इसका अब नॉलेज नहीं है। इसके बाद हमने प्यार से रिप्लाई दिया, एक दिन आपको सर जवाब मिलेगा,
1: जी
0: ये देखिए एक दिन जवाब मिले। इसके बाद फिर मैं सोचा कि लास्ट में फाइनल मेरा अल्टीमेट हो गया था, हम तेंजिंग नोर्गे एक जैसे कुली बनकर हम एवरेस्ट का पटे करेगा, सो मेरा दिमाग में रह गया।
1: जी
0: इसके बाद हम घर चला गया, घर जाने के बाद फिर वहां में आया मेरा जो दीदी बोला है, एक अता जैसे मैदा अता जैसे दिखने ऐसे व्हाइट वाला आदमी आया बोला,
1: जी
0: सफेद
1: जी
0: वाला आना,
1: बिल्कुल सर।
0: हम देखा है तू सच में इससे कोई फॉरेनर होगा।
1: हाँ जी
0: रात को एक लड़का आया, वो लड़का मेरे लिए भगवान बन गया, वो लड़का भी ना
1: जी
0: आज वो लड़का बोला कि हम WWE में देखा है ना, ऐसे आदमी कभी लड़के नहीं देखो, वो लड़का आदमी व्हाइट आदमी हम लड़ने चाहता है बोलकर ना,
1: जी
0: दारू पी कर आदमी IV में डिस्टर्ब कर रहा था। उस
1: जी
0: समय में
1: सर।
0: हम बोला कि क्यों ऐसे डिस्टर्ब, आपका गाँव में आया ना, हमारा गाँव में आया बोलकर, तुम्हारा गाँव तो नहीं है बोलकर। फिर वो इतना डरा हुआ था जो आदमी,
1: जी
0: आने के बाद फिर बोला कि सर वो आदमी को बोला है आप जिस मिशन पर आ रहा है हम आपको हेल्प करेंगे बोले, इसका आप चिंता मत करो, मेरा गांव है वो तो
1: जी
0: बाहर का है। इसके बाद मेरा चाचा के घर में तकमरा के घर में ले गया, ले
1: जी
0: जाने हेड जी भी है, और वहां भी सोने के लिए नहीं सके, वो बहुत टेंस में था।

0: जी
1: चलो कोई
0: डरा
1: बात
0: मत
1: नहीं,
0: जी।
1: अब हम हमारा फ्रेंड है, क्लाइंबिंग फ्रेंड है, शिशुपाल बिस्ट इंस्पेक्टर घर ले जाते, चलो आईटीपीपी के में हम ले, वो हमें रात को बीते। नेक्स्ट डे को बोला कि हमको दा प्रिजो ले चलो, बोले दा प्रिजो ले गया, दा प्रिजो से बोला जीरो चलो, जीरो गया क्या ना, इसके बाद भी जीरो से ईटानगर गए, डोनी पोलो अशोका में लेकर हमको एक रूम बुक कर दिया।
0: जी
1: वो एसी रूम में पहले रात सोया था, हम इतना सांस लेने के लिए तकलीफ हो गया था उस
0: जी
1: समय।
0: जी
1: इसका यहाँ एक दिन बैठने के बाद फिर हमको बोला कि गुवाहाटी चलो, बोला चलो एयरपोर्ट तक। हम एयरपोर्ट तक पहुंचे, पहुंचने एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इसके बाद हमको वहां में कहे नंदन होटल,
0: जी
1: अभी फोर स्टार होटल है,
0: जी
1: वहां आ
0: जी
1: गया, वहां में फिर आगे एसी रूम में बैठा, फिर हमको
0: जी
1: तकले। इसके बाद फिर हमको वो एक थर्मोप्लक्स दिया,
0: जी
1: देने बाद वो हमको पूछे कि यू नो टफी, बोला यस या यू नो पुसंग मरा, बोला यस आई नो, बोला ही वॉज माई ग्रेट ग्रैंड फादर, बोला डेड मैन इज
0: हाँ
1: टू
0: जी
1: कॉल
0: हाँ
1: मी
0: जी
1: या
0: जी जी
1: या ही टोल्ड इट, ही वॉज टोल्ड इट, वाह आई एम लकी मीट मिस्टर पुसंग मरास ग्रैंड चिल्ड्रेन्स,
0: जी जी
1: यस। मैं उसको पूछे वाई, बोला सर आई वॉन्ट टू बायोग्राफी ऑफ द मिस्टर पुसंग मरा,
0: जी
1: आई
0: जी
1: सर्च द ऑल अरुणाचल, ऑल ओवर अरुणाचल
0: जी
1: टिबेट ऑल्सो,
0: जी
1: बट आई वॉन्ट टू राइट मिस्टर पुसंग मरास बायोग्राफी।
0: अच्छा
1: ओके बोला। इसके बाद ऐसे बोलने बाद हम एयरपोर्ट दे एक थर्मोप्लक्स दिया कि ये मेरे पापा का थर्मोप्लक्स है, बोले
0: अच्छा जी
1: और पापा का थर्मोप्लक्स किया है माउंट सर एडमोंट हिलरी के साथ क्लाइंबिंग करता था, जो
0: अच्छा
1: माउंट कुक को
0: हाँ जी हाँ
1: न्यूजीलैंड
0: जी
1: में मैं
0: जी जी
1: क्लाइंबिंग कर
0: जी
1: चुका हूँ, उसमें क्लाइंबिंग, और मैं उसका पिताजी बहुत ग्रेट माउंटेनर था, हिलारी के साथ क्लाइंबिंग करता
0: जी
1: था
0: जी
1: उसका सन था। इसके बाद उसने बोला कि सर, बोला इसके बाद फिर वो चला गया, हमको एक जीपीएस करे दो बोलकर क्या था 6,000 रुपीज दिया। इसका बाद हमको डायरेक्ट ईटानगर तक टाटा सोमो को रिजर्व करके जाओ, बोले
0: जी
1: इसका बाद हम ईटानगर पहुंच गए। पहुंचने बाद जाने हम तो भूल गया, भूल जाने बाद 2007 को 6 को एशिया आए, 7 का मिड में वो आ गया, आने बाद तकम सोरंग के पास आया, वो लड़का कहा में तपी मरा खा में, वो लड़का
0: जी
1: उसने तपी मरा ढूंढ ढूंढ कर, हम उसमें पासीघाट कॉलेज में था।
0: जी
1: उसके बाद फिर उसने बोला कि आ गया, आने के बाद हम बैठ गया तो चलो, बोला हमको वेटिंग कर रहा था,
0: जी
1: फिर हमारा गांव ले गया, ले जाने बाद फिर उसका काम हो गया, हमको सैलरी भी मिल रहा है,
0: हाँ जी
1: हमारा जो इक्विपमेंट भी आ रहा है, हम इतना खुश हो गया, उसके साथ काम करने में इंटरेस्ट हो गया।
0: जी
1: फिर उसने बोला है कि दा प्रिजो पहुंच गया, तभी पीसीओ में जाएगा, बोला है, और न्यूजीलैंड में कॉल किया,
0: जी जी
1: कॉल करने के बाद बोला कि हम काम करके 3-4 महीना काम कर रहा था, और न्यूजीलैंड में कॉल करने के बाद ऐसा किया, क्या तांसा किया, हम बोला
0: जी
1: क्या बात है सर, या कॉन्ग्रेचुलेशन, बोला
0: हाँ जी
1: हमको गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड से हम आपको स्पॉन्सर करा दिया,
0: अच्छा जी जी
1: प्री एवरेस्ट के लिए, माउंट आइलैंड के लिए आपको स्पॉन्सर दिला दिया, आप जाना है बोलकर। इसके बाद हम यहाँ में आ गए ईटानगर में,
0: जी
1: ये एक्सिस बैंक
0: एक्सिस
1: से
0: बैंक
1: हमको 1 लाख रुपया दिया,
0: अच्छा
1: 1 लाख रुपया दिया, जाओ नेपाल में जाओ क्लाइंबिंग करने जाओ,
0: जी
1: इसका 1 लाख रुपया दे दिया, आप जो चाहिए ऐसे भी कर लो, बोले। उसके बाद फिर हम 1 लाख ले लिया, हमको बोला है कि एटेन एडवेंचर में जाओ, बोला है वहां में जाओ ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप पार्टिसिपेट करने जाओ।
0: जी जी
1: इसके बाद हम नेपाल चला गया, काठमांडू, काठमांडू पास टाइम हम गया था, जाने पर हमारा वो आता एक जो वहां में होने बाद हम कहा जाएगा क्या जाए, लास्ट में हम नेपाल माउंटेन एसोसिएशन को मिला है, मिलने का वहां एंट्री किया, इस एटेन एडवेंचर में किया,
0: जी
1: जाने के बाद हम वहां में निकल गया, निकल जाने वो गाइड चाहिए क्या, बोला कि मेरा पास पैसा नहीं था गाइड के ना, हम 1 लाख को कुछ सामान ले जाए, गाइड जरूर नहीं, हम चला जाएगा
0: जी
1: नेपाल।
0: जी
1: इसके बाद भी ना हम वहां मिलने के लिए बोला है, जो आइलैंड पीक का ये बेस के में पहुंच जाओ, बोला है। इसके बाद आइलैंड पीक के भी बेस के में हम पहुंच गया, पहुंच जाने बाद फिर अकेला गया वहां आइलैंड पीक के बेस के मैप देख देख कर पहुंचे, पहुंचने के बाद फिर देखा है तो मेरे पास एक ही जूता था, एक ही शूज था, इसका एक शूज मेरा जो काम करने वाला हमको हेल्पर करने वाला इंडियन का प्लेक रखा हुआ है,
0: जी
1: जो झंडा रखा, हमको बहुत गर्व महसूस किया
0: जी जी
1: इंडियन
0: जी
1: टीम में बोलकर।
0: हाँ जी
1: इसके बाद फिर हमारा जो काम करने वाला जूता नहीं था,
0: जी
1: वो सैंपल जूता कर रहा था, हम मेरे जूता को निकल कर उसको दे दिया,
0: जी जी
1: हम बोला कि आप हम स्पोर्ट्स शूज से क्लाइंबिंग करेगा, इसका आप ये चीज को पहनो, आप यहाँ से बीबी बच्चा को आपका सब कुछ को यहाँ से आपको रोज रोटी चल रहा है
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: आप पड़ोस पाए तो कुछ हो जाएगा,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: आप कहीं से रोज रोटी नहीं मिलेगा, आपका
0: बिल्कुल
1: बीबी बच्चा तकलीफ होगा,
0: जी जी
1: हम तो
0: जी
1: बेचलो रहे, कुछ होने से मेरा कोई चिंता नहीं है
0: जी
1: मेरा,
0: जी जी
1: हाँ इसलिए मेरा जूता पड़ो। वो शिरपा भी इतना खुश हो गया। इसके बाद फिर हम वहां में जाने के बाद फिर क्लाइंबिंग शुरू हो गया,
0: जी
1: शुरू होने बाद 8 hours.

0: जो क्लाइंबर कर क्लाइंबिंग करने वाला हम 3 आवर्स में कर लिया। करने के बाद मेरा जो स्पोर्ट्स शू पहना था जो एडिडास,
1: हाँ जी
0: वह मैं -30 में आ गया, तो वो जूता इतना तंदा थान हो गया, टूट गया।
1: ओके जी
0: टूट
1: जी जी
0: जाने के बाद हम जूता को निकल कर फेंक दिया, हम मुजा के साथ क्लाइंबिंग करना शुरू हो गया। इसके बाद मेरा मुजा के साथ क्लाइंबिंग कर, सुक्स के साथ ना
1: जी जी
0: क्लाइंबिंग का तंदा तो होता था ना। इसके बाद फिर 2 स्पेनिश क्लाइंबर देखा है,
1: स्पेनिश जी
0: हाँ स्पेनिश
1: जी
0: क्लाइंबर आया था, जापानीज इंग्लिश क्लाइंबर लोग आ रहा
1: जी
0: था।
1: जी
0: आने बाद हमको बोला है कि नॉनसेंस इंडियन, व्हाट आर यू डूइंग,
1: हाँ जी जी बिल्कुल
0: व्हाट आर यू डूइंग
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: इसके बाद फिर हम पहुंच गया जाने के बाद, और लोग आगे निकल गया। हम धीरे धीरे इतना सांस को लास्ट एनर्जी को लेकर हम टॉप में उन लोग बराबर में पहुंच गया। वो लोग हम पहुंचने के बाद गले लगाया, यू आर द ग्रेट बोले,
1: जी जी जी
0: वाई बोले, यू आर ए जेनियस, विदाउट शूज यू क्लाइम माउंट आईलैंड पीक बोले। इसके बाद हम सबको गले लगे।
1: जी
0: इसके
1: जी
0: बाद फिर नो टाइम हम वापस आ गया,
1: जी
0: क्लाइंबिंग डिसन हो गया।
1: जी
0: डिसन होने के बाद फिर बेस कैंप में पहुंचने के बाद बीबीसी वाला भी न्यूज, जो बहुत सा आदमी लोग बीबीसी बहुत आदमी लोग न्यूज लिए है,
1: हाँ
0: लेने बाद फिर ये आदमी यूनिक है बोलकर सब लोग। इसके बाद जो हम एंटोनी मार्क हूबर, मेरा जो स्पॉन्सर रहता
1: जी जी
0: न्यूजीलैंड
1: जी
0: से,
1: हाँ जी
0: इसको जो हम फोन किया है
1: जी
0: प्रोफेसर सर का,
1: जी
0: उसने बोला कि माय सन वेल डन बोला।
1: जी जी जी
0: इसके बाद फिर हम वापस आए, आने के बाद इंडिया दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचे टाइम्स ऑफ इंडिया वाला वो पब्लिश किया,
1: जी
0: इसको अरुणाचल टाइम्स का ज्ञातिका चो
1: जी
0: और रिपोर्टर,
1: हाँ
0: हम
1: जी
0: जैसे लिख बोला है ऐसे लिख दिया आपको जैसे बताया ना,
1: जी जी
0: और डायरेक्टर का नाम को भी लिखकर पेपर में पूरा निकल गया।
1: जी
2: शुरुआती दौर अधिकतर लोगों के लिए एक हरा देने वाला होता है, लेकिन इंसान की डेडिकेशन और उनकी मेहनत ही उनकी कामयाबी तय करती है। एक बहुत ही मशहूर फिल्मी डायलॉग है, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। कई लोगों के ठुकराने के बाद कैसे एक अनजान सा इंसान अपना बन गया और उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद कर दी, ये किसी फरिश्ते से तो कम नहीं है। ऐसा लगता है पूरी कायनात ने मिलकर प्लान किया है और एक फरिश्ता उनकी मदद के लिए भेज दिया है। इतना नर्म स्वभाव, सद्भावना से भरा एक ऐसा इंसान जो किसी की रोजी रोटी या परिवार के लिए -30 डिग्री पर भी बिना जूते के चल जाए, उससे बड़ा सद्भावना की और क्या मिसाल हो सकता है। आइए सुनते हैं तापी मराजी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते करते हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देते हैं।
0: इसलिए मेरा यूथ लोग को मैं मैसेज ना, मोबाइल के पीछे मोड के लिए,
1: बिल्कुल
0: मोबाइल बहुत अच्छा में अच्छा चीज है,
1: जी
0: लेकिन अच्छा से यूज करने से सोशल मीडिया लेकिन बहुत खराब, आपका
1: जी
0: फिजिकल फिटनेस हो जाएगा आप मोबाइल करते रहने से। स्पेशली जो पबजी गेम है ना,
1: जी पबजी
0: ऐसे वाला गेम खेल खेल कर आपका फिजिकल बहुत खराब हो जाएगा।
1: जी जी जी
0: इसलिए ये चीज है, अरुणाचल का यूथ लोग अरुणाचल को प्यार कीजिए, अरुणाचल के कुछ करने के लिए सोचिए।
1: बिल्कुल
0: हमारा हम अरुणाचल को प्यार करेगा तो हमारा अरुणाचल भी
1: हम
0: अच्छा
1: तो
0: हो जाएगा,
1: जी जी
0: अगर हम प्यार नहीं करेगा तो ये चीज है। इसलिए आप अरुणाचल को प्यार करता है, अपना माँ पिताजी को, अपना भाई बहन को, अपना देश को प्यार करता है तो
1: जी
0: ड्रिंक नहीं कीजिए, जो सोशल एलिमेंट काम नहीं कीजिए,
1: जी
0: और जो भी चीज है नेशन बिल्डर और स्टेट बिल्डर के लिए काम कीजिए।
1: जी
0: जय अरुणाचल, जय हिंद।
2: उम्मीद पे दुनिया कायम है। दोस्तों, आप सभी तापी मराजी को बखूबी जानते हैं, हम उनके सलामती की दुआ आज भी करते हैं और आप भी अपने दुआओं में जरूर उन्हें शामिल कीजिए। श्रोता, आज आप माई स्टेट माई प्राइड के इस अंक में सुन रहे थे तापी मराजी से आकाशवाणी द्वारा की गई बातचीत के कुछ प्रेरणादायक अंश। माई स्टेट माई प्राइड के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक और नए इंस्पिरेशन के साथ आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार

0: ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Happy birthday, Simran.
2: Amit, you bum, you idiot.
1: Simran,
2: you scare me. Wait a second, I'll tell you. Look.

श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक, और मैं हूं आपकी आरजे मांज। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के एक छोटे से कारवा के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाने जा रही हूं फिल्म पटियाला हाउस का बेहतरीन सा ये एल्बम। तो चलिए, बिना किसी एड ब्रेक्स के, बिना किसी बातें, बिना कोई झंझट या बिना कोई रोक टोक, हम सुनेंगे ये इस फिल्म का गीत। हम सुनेंगे इस फिल्म में, इस गीत कार्यक्रम में गीत जैसे लौंग द लश्कारा, क्यों मैं जागू, रोला पै गया जैसे बेहतरीन गीत। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे, और बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वेस्टर्न मेलोडीज का कार्यक्रम आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। शाम की इस सुहानी महफिल में आप सभी का स्वागत है भूले बिसरे गीत के कार्यक्रम में। कहते हैं कि वक्त गुजरता जरूर है, लेकिन कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। कुछ गाने भी ऐसे ही होते हैं जो सालों बाद सुनने पर हमें सीधा उन्हीं खूबसूरत लम्हों में ले जाते हैं। तो आज की शाम चलिए यादों की उन्हीं गलियों में एक बार फिर लौट चलते हैं, जहां मोहब्बत थी, दोस्ती थी और गीतों की मिठास थी। आप बस अपनी आंखें बंद कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए और महसूस कीजिए गुजरे हुए दौर की खुशबू। चलिए दोस्तों, भूले बिसरे गीत के इस कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम सुनेंगे फिल्म आन मिलो सजना से, लता मंगेशकर की आवाज में, तेरे कारण मेरे साजन।

श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और आइए अब भूले बिसरे गीत के इस सुंदर से कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत। अगला गीत हम सुनेंगे फिल्म आंधी से, जिन्हें गाया है किशोर कुमार ने। हम सुनेंगे ये गीत इस मोड़ से जाते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस गीत के बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने, वहीं पे संगीत के निर्देशक है आरती बर्मन। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: पूछे जो कोई।
2: दोस्तों, भूले बिसरे गीत के इस कार्यक्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत, पूछे जो कोई मुझसे, जिन्हें गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। ये गीत है फिल्म आप आए बहार आए से। संगीत के निर्देशक है आनंद चमकीजे, संगीत के निर्देशक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वहीं पे गीत के बोल लिखे है आनंद बख्शी साहब ने। चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, हमारे भूले बिसरे गीत के इस कार्यक्रम में आज का ये आखिरी गीत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ फिल्म अनामिका से लता मंगेशकर की आवाज में। चलिए सुनते हैं, बाहों में चले आओ।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज की शाम और हमारे आज के ट्रांसमिशन को अलविदा कहने का। आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ आज का ये सफर यही समाप्त होता है। सुबह से लेकर अब इस रात तक अब आपने अपना वक्त और

अपनी मोहब्बत हमारे साथ बांटी, इसके लिए दिल से शुक्रिया। हम आपसे विदा लेते हैं, साथ ही आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों के साथ एक सुकून भरी रात गुजारिए और कल फिर इसी फ्रिक्वेंसी पर हमसे जुड़िए। मैं हूँ आपकी होस्ट और मेरी मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त बिंदुम दिंदो मंच, और मेरी तरफ से आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने के लिए स्टूडियो तथा HPT में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगचांग एवं तकनीकी अभियंता होलीराम बर्मन। साथ ही दोस्तों, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले FM गोल्ड के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। व्यक्ति और अन्य जीव जगत का जीवन दुख का दूसरा नाम है। अन्य जीवों के दुख उसकी अपनी परिधि से बाहर होते हैं, परंतु व्यक्ति के अधिकांश दुख उसके
1: परंतु व्यक्ति के अधिकांश दुख उसके अपने ओढ़े हुए होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, भय, कमियां, लालच, लालसा हर जीव के हृदय में स्थायी घर बनाकर रहते हैं। बड़े से बड़ा धनवान भी दुखों के इन मूल कारणों से बच नहीं सका है। कहने को ये सब विकार हैं, पर सांसारिक जीवन के लिए स्वीकार हैं। हर कोई जोगी या जोगिन बन नहीं सकता, पर हाँ, अगर कोई इन पीड़ाओं की साफ बयानी कर दे तो ये दुख कम हो जाते हैं। कहते हैं ना, दुख अगर किसी को बता दिया जाए तो आधा रह जाता है, और अगर उसमें दूसरे का दुख भी शामिल कर लिया जाए तो उसके बदले महज सुख ही नहीं मिलता, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ सरीखे बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं। जी हाँ, छायावाद की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा ने इस जीवन को दुख का सागर बताते हुए उस सत्य को पूरे सबूतों के साथ व्याख्यायित किया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए महादेवी वर्मा के सुख दुख के इस संगम को विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह से।
2: महादेवी को दुख इतना अन्यतम और प्यारा नहीं था। कह सकते हैं कि महादेवी के जीवन में दुख था, लेकिन दुख के पहले सुख की अनुभूतियां थी, और उन सुखद अनुभूतियों को सामाजिक जीवन में टकराहट की स्थिति में दिखाई देने के कारण महादेवी ने दुख को गले लगाया था, और यह दुख उनका केवल निजी दुख नहीं रह गया था बल्कि सार्वभौम दुख था, और स्त्री के संदर्भ से देखें तो समस्त स्त्री जाति का दुख था। महादेवी जितनी मुखर गद्य के क्षेत्र में श्रृंखला की कड़ियां नामक पुस्तक में होती हैं, और स्त्री के तथा समाज के जीवन पर, सामाजिक संरचना पर जिस तरह से टिप्पणी करती हैं, वहां से यह सूत्र प्राप्त किया जा सकता है कि महादेवी की रचनाओं में दुख का जो झीना आवरण है वह किन कारणों से है। क्या वे कारण महादेवी द्वारा स्वयं निर्मित किए हुए थे, अथवा समाज की संरचना में ही कहीं न कहीं कोई दोष था और उस दोष के आधार के रूप में वे टिके हुए थे।

एक उनकी कविता है और इस पूरी कविता में दुख और दुख की व्याप्ति, साथ ही साथ सुख और सुख की कीमत, यह झीणे तौर पर दिखाई देती है। इस कविता में महादेवी अपने जीवन के स्वप्निल संसार में एक युवा किशोरी आंखें खोलती है और उसकी परिणति एक दुखात्मक पृष्ठभूमि में होती है। उस पूरी कहानी को महादेवी ने निजी और सार्वजनिक दोनों स्तर पर साझा किया है। बांच ली मैंने व्यथा की, बांच ली मैंने व्यथा की, बिन लिखी पाती नयन में, मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी, खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी। आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है, जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। बांच ली मैंने व्यथा की, बिन लिखी पाती नयन में। यह कैसी व्यथा थी और किसकी व्यथा थी जिसको बिन लिखे ही महादेवी ने किसी अन्य की आंखों में बांच लिया था। और आगे एक और कविता में कहती हैं, नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला, साध हे तुम बन सघनतम, सुरंग अब गुंठन उठा गिन आंसुओं की रेख लेते। ये कविता एक तरफ अपने प्रिय को संबोधित है कि साध हे तुम, प्रिय को प्रिय नहीं कह रही, साध कह रही है। साध यानी साधना का संसार यानी इच्छा। महादेवी की कविता में साध, स्वप्न, शून्य, क्षितिज जैसे शब्द बार बार आए हैं और साध की जो कीमत होती है यानी इच्छा रखने की, भाव रखने की, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में सहज ही स्त्री के पक्ष से देखा जा सकता है कि वह कीमत कितनी भारी होती है। और महादेवी के लिए वह साध फिर एक सपना बन जाता है, लेकिन उस सपने को लेकर वे आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, आंसू का तन विद्युत का मन, प्राणों में बरदानों का प्रण, धीर पदों से छोड़ चले घर, दुख पाथे संभाले। महादेवी ने दुख को अपना पाथे बना लिया और जब वो सुकुमार थी, कोमल थी, उनके भीतर रमणीय भाव था और वे चाहती थी कि उनको सुख मिले जैसे हर स्त्री की इच्छा होती है, और सुख ऐसा ना हो कि अपने सुख से किसी को दुख हो, तो महादेवी इस तरह का सुख चाहती थी। वे साफ कहती हैं, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, उस सोने के सपने को देखे कितने दिन बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसाकर रीते। अब आप देखिए यह जो भाव है कि वह सोने सा सपना कब का था, युवावस्था का, किशोरावस्था का, जब महादेवी सामाजिक संबंधों और संरचनाओं को जो घर के बाहर के समाज में व्याप्त था उसको उस तरह से नहीं समझ पाई थी, और तब उन्होंने वह सुनहरा सोने जैसा स्वप्न देखा था। लेकिन उस सोने जैसे सपने को देखे हुए भी युग बीत गए और अब दुख का कोश भी मोती बरसा बरसा कर रीता हुआ है। इस दुख की व्याप्ति हो गई है, यह दुख निजी दुख से अब संसार के दुख के लिए सन्नद्ध कर चुका है और सांसारिक दुखों का एक बड़ा कारण समाज में स्त्री की स्थिति है जिस पर महादेवी की निगाह रही है। क्या अनुनय में मनुहारों में, क्या आंसू में उद्गारों में, आवाहन में अभिसारों में, जब मैंने अपने प्राणों में प्रिय की छांह छिपा ली। मैंने तो अपने प्रिय की छांह को यानी अपने लिए सुख के भाव को अपने भीतर ही समाहित कर लिया है, तो अब क्या अनुनय और क्या मनुहार, क्या आंसू और क्या उद्गार, क्या आवाहन और क्या अभिसार, अब मेरा सुख तो मेरे भीतर है और इसलिए मैं अब जो कुछ कहती हूँ संसार उसके बदले मुझे मतवाली कहता है। और महादेवी ने अपनी एक कविता के बंद में स्वयं को अपने सुने पन की मैं हूँ रानी मतवाली ये कहा है। और एक जगह और कहती हैं, भावे क्या अली अस्थिर मधुदिन, दो दिन का मृदु मधुकर गुंजन, पल भर का यह मधु मद वितरण, चिर वसंत है मेरे इस पतझर की डाली डाली, क्यों जग कहता मतवाली। संसार के लिए तो एक उलाहना है ही कि तुम मुझे मतवाली क्यों कहते हो, मैंने तो अपने पतझर की डाली डाली को ही वसंत का भाव दे दिया है, इसलिए मैं तो किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ, मैंने तो अपने कष्ट को अपने लिए स्वयं चुना है और न मुझे इसके लिए किसी से कोई इच्छा है न प्रतिदान की अभिलाषा है। तो कहती हैं कि अब मेरे लिए अगर कोई संदेश है तो वो और क्या हो सकता है, अब कहो संदेश है क्या, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, एक इंगित के लिए शतबार प्राण मचल चुका है, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या।
वे कहती हैं कि मेरी कोई इच्छा इस संसार से कुछ प्राप्त करने की नहीं।

0: है, जब इच्छा नहीं है तो दुख का कारण नहीं है। आगे कौन सा चंदन चांदनी का देश है जिसका मुझे कोई दर्शन करवा सकता है या प्राप्ति करवा सकता है। तो इसलिए कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। एक जगह और कहती हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव ये मेरा मिटने का अधिकार। ये जो मर्त्य लोक है इसके बंधन से मुक्ति मैं नहीं चाहती, इसके दुखों से मुक्ति मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब तक दुख समाप्त नहीं होते महादेवी का कार्यभार भी समाप्त नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि ये दुख महादेवी को क्यों है, ये तब तक पाठक को, श्रोताओं को समझ नहीं आ सकता जब तक वे ना समझें कि महादेवी का यह दुख केवल मनुष्य मात्र होने का दुख नहीं है, देह धरे को दंड नहीं है। महादेवी देह धरने को यानी संसार में आने को दंड नहीं मानती, देह से उन्हें अनुराग है, प्यार है। लेकिन वो कहती हैं, स्मित बनकर नाच रहा है अपना लघु सुख अधरों पर, अभिनय करता पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। सुख दुख की कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है, इसे हम सहज ही यहाँ देख सकते हैं कि सुख है वह स्मित लाता है चेहरे पर, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता, वह भी साथ साथ आता है, वह अभिनय करता है पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। इस तरह से सुख दुखात्मक जो भाव है महादेवी के यहाँ, वह युग्म रूप से साथ साथ चलते रहते हैं और कई बार बाइनरी अपोजिशन भी बनाते हैं। जब वे ही शब्द जो सुखात्मक भावों के लिए आते हैं कहीं कहीं दुखात्मक और बंजर अर्थों को ध्वनित करने लगते हैं कि मैं दिन को ढूंढ रही हूँ। देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। हीरे के प्याले में सिकता की मांग हो रही है और महादेवी दिन के उजियाले में जुगनू को ढूंढ रही है। दोनों ही विरोधी स्थिति है, विरोधाभासी स्थिति है। और क्यों महादेवी की कविताओं में इस तरह की विरोधाभासी स्थितियों का वर्णन है? दुख स्थायी भाव की तरह दिखाई देता है, लेकिन दरअसल दुख के साथ उसके पृष्ठभूमि में सुख का एक गहरा झीना सोता भी बहता चलता है।
1: तो कहती है महादेवी तुम क्या लिखते हो, तुम ये सब क्या भूल जलूल बात देखते हो, सीधी बात देखो, लिखने आती नहीं थी उस समय भी नहीं आती थी, अब तो उसको शायद एमए पढ़ता विद्यार्थी, लेकिन तब तो आठवें दर्जे में पढ़ने वाले व्यक्ति की रचना थी, परंतु उसमें साफ बात नहीं कही है। और फिर उसके बाद थोड़ा दर्शन भी आया और भाव में संयम भी आया, भाषा भी दूसरी ही, निर्जा में जाके गीत का तत्व आ गया मुझे और मैंने मानव दिशा भी पा ली है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि उस समय मैंने कैसे लिखा होगा। ये
0: है महादेवी और महादेवी की कविता में अभिव्यक्त दुख का गागर और सुख का सागर।
2: वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह ने ठीक ही कहा है कि महादेवी वर्मा की कविताएं भले दुख से जन्मी हो मगर सुख दामन की तरह हरदम साथ चलता रहा और वो दुख नीर बनकर सुख के एक बड़े सागर में विलीन हो गया और साहित्य को संवेदनाओं के अनेक धरातल दे गया। अगर रचनाकार अपनी बात को तमाम हकीकियों से जोड़ते हुए समाज के सामने रखता है तो उसके परिणाम सदियों तक सचेत और आंदोलित करते हैं। दुष्यंत कुमार भी एक ऐसे ही रचनाकार रहे हैं। अपने बोझ से झुक कर दोहरे हो चुके पसीने से तर बतर मेहनत कश इंसान के बेहद बदरंग चेहरे को बेहद खूबसूरती से उभारती उनकी गजलों ने जो बरगद खड़ा किया, उसके साये में धूप का कोई कतरा आज तक कहीं नजर नहीं आता। व्यवस्था के विरुद्ध इस सजग विद्रोह ने ही हिंदी गजल की मजबूत बुनियाद रखी। 27 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर उन्हें उन्हीं के स्वर में कहे इस शेर से याद कर सकते हैं।
3: हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना।
2: अनेक विवादों के बीच दुष्यंत कुमार ने अपनी भाषा, अपने कहन और अपनी बहर से हिंदी जगत को जो नया आकाश दिया वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। सुनते हैं एक बातचीत, दुष्यंत कुमार, अपनी बहर, सबकी गजल। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कवि, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर शिव नारायण और वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री मंगल नसीम।
4: दुष्यंत दोस्तों एक ऐसा नाम

0: है जो हिंदी गजल और उर्दू गजल के बीच में एक पुल बनाता है। उनकी एक किताब है गजल के ऊपर, साये में धूप, जिसमें तकरीबन 54 गजलें संग्रहित हैं, और उन्होंने जीवन के हर हिस्से पे लिखा है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें दुष्यंत जी के बारे में।
1: बहुत बहुत आभार आपका मंगल जी,
0: जी
1: आपने बहुत अच्छी परिचय दिया उनके बारे में। गजल तो मुख्यतः उर्दू फारसी की विधा है,
0: जी
1: लेकिन उस विधा को फॉर्मेट को लेकर हिंदी में उन्होंने जितना काम किया,
0: जी
1: कहना चाहिए कि हिंदी का जो मिजाज था प्रतिरोध, अपने समय के प्रतिरोध को उन्होंने उस गजल से जोड़ दिया।
0: जी
1: और हिंदी में गजल की परंपरा यूं तो बहुत पुरानी रही है,
0: जी
1: जितने बड़े बड़े कवि हुए सबने गजलें कही हैं, वो निराला हो, पुरानी अगर हम चले जाएं तो कबीर तक,
0: जी
1: यहाँ तक कि जितने प्रगतिशील कवि हुए उन सबने भी गजलें कही। अब
0: जी
1: शमशेर बहादुर सिंह हो, केदार जी हो, यहाँ तक कि अभी हाल में उनका निधन हुआ रामदरस मिश्र जी,
0: रामदर्श मिश्र, हाँ जी
1: उन्होंने भी गजलों में बहुत काम किया। लेकिन सन 70-75 के बीच दुष्यंत कुमार जब गजल लेकर आए,
0: जी
1: अच्छा गजलों को उन्होंने अपने जीवन के, एक तो ईश्वर ने यूं ही उनको बहुत कम समय दिया,
0: जी
1: लेकिन अंतिम समय में गजलें वो कह रहे थे।
0: जी
1: और उन्होंने जो समकालीन हिंदी कविता का मिजाज था,
0: जी
1: लगभग उसी मिजाज और तेवर के साथ वो हिंदी गजलों में आए।
0: जी
1: और जैसे वो कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको
0: को
1: सुनाता
0: सुनाता
1: हूँ,
0: हूँ,
1: एकदम आम फहम भाषा में, जिसे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है,
0: जी
1: उन्होंने गजलों को उससे जोड़ दिया। और जितने शेर कहे, जितनी गजलें उन्होंने कही, उसे लोगों ने अपने समय के साथ जोड़कर देखा, व्यवस्था के खिलाफ देखा,
0: जी
1: और वह जो उनका प्रतिरोध था वो हिंदी गजल की मुख्य आवाज बन गई।

0: दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, गजल का जो लुगती मानी, जो डिक्शनरी, जो,
1: हाँ,
0: जो शब्दकोश का मतलब है गजल का, उसमें
1: जी,
0: वो है औरत से बातचीत करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुफ्तगु।
0: अब इस बात को भी मैं समझता हूँ कि ठीक से नहीं लिया गया, औरत से बातचीत करना, इसका क्या मतलब? तो इसको सपाट रूप से ले लिया गया और तब के शायरों ने, औरत से बातचीत करना, तेरी जुल्फें बहुत खूबसूरत हैं, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तेरी पाजेब की झंका। लेकिन अब से कोई 25-30 साल पहले से आप हम देखें तो बहुत से कंटेंट उसमें शामिल हुए हैं गजल में जो श्रृंगार से अलग हैं।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही नसीम जी। और जितने बड़े बड़े शायर, हालांकि तरक्की पसंद शायरों की कमी नहीं है
0: जी,
1: जिन्होंने मजदूरों की जबान को जो है और लोगों की जबान को भी जो है गजलों में लाया
0: जी,
1: लेकिन उर्दू गजल जो है वो पर्याय हो गया मोहब्बत की गुफ्तगू के लिए, श्रृंगार के लिए वो। लेकिन श्रृंगार तो संयोग पक्ष भी होता है, वियोग पक्ष भी होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: पर दुष्यंत जिस समय हुए वो उबाल का समय था
0: जी, बिल्कुल।
1: लोग संतरस्त थे उस समय एक व्यवस्था से, और उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते थे
0: जी।
1: इसलिए जब मतलब दुष्यंत कहते हैं उस समय, वो अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं, तो लोगों ने

0: ऐसे नाजुक सिरों को भी जो है व्यवस्था परिवर्तन से जोड़ कर देखा। और बहुत सारे लोग प्रतिरोध का अर्थ विरोध समझते हैं
1: जी,
0: पर प्रतिरोध का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है अपनी बातों को कह लेने की जिद।
1: जिद
0: ऐसा लगता है कि उनकी गजलों को पढ़ते हुए कि वक्त ने उनको अपने लिए जो है चुना कि तुम शेर कहो, तुम गजलें हमारे लिए कहो, और जो परिस्थितियां थी उसको उन्होंने आम आदमी के जबान पर ला दिया।
1: जो एक रक्षा वाला भी समझता,
0: रक्षा वाला भी समझ सकता
1: और एक प्रोफेसर भी समझता,
0: एक प्रोफेसर भी समझ सकता।
1: ये समझिए कि उनके जो प्रतीक और इस्तारे थे वो भी अलग थे। तू किसी रेल सी गुजरती है,
0: हाँ,
1: मैं किसी पुल सा थर थर, अपने आप को पहचानना और दूसरे को और समझ के उसको शेर में ढालना।

0: देखिए ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दुष्यंत के व्यक्तित्व, शायराना व्यक्तित्व का जो संगठन है वो परिमल से हुआ
1: जी।
0: इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो रहने वाले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये जो टोन है उनके कहन कौशल का, ये इन दोनों जगहों का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है।
1: जी जी।
2: दुष्यंत कुमार जन्मे भले राजपुर नवादा बिजनौर में हो, शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की हो और कार्य क्षेत्र आकाशवाणी दिल्ली और भोपाल रहा हो, पर उनकी भाषा में समूचे भारत की महक है। उनकी गजल का माध्यम भले हिंदी रहा हो मगर उर्दू जगत को भी उनकी भाषा अपनी सी लगी और खड़ी बोली वालों को भी। कुछ शब्द उन्होंने अपने भी गढ़े जो मुहावरे बनकर आज हिंदी के परचम को पूरी जगत में लहरा रहे हैं। हिंदी भाषा को आगे लाने में साहित्यकारों का ये योगदान सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। सुनते हैं एक वार्ता, हिंदी भाषा राजकाज से कामकाज तक। वार्ताकार हैं भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर श्रीवास्तव।
3: किसी भी साहित्य के विकास में भाव, संवेदना, कथ्य और शिल्प, इन सबसे अधिक भाषा का योगदान रहता है। वह भाषा मातृभाषा भी हो सकती है और अनुवादित भी हो सकती है। अपनी भाषा के दर्द, पीड़ा, संवेदना और पक्ष ज्यादा हितकर इसलिए माने जाते हैं। आज भारतेंदु, निराला, प्रेमचंद, महादेवी, पंत, जयशंकर प्रसाद, बच्चन आदि की बदौलत हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर मान सम्मान को प्राप्त कर पा रही है और लगभग 145 देशों में अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनी हुई है। साल का सितंबर महीना अस्तित्व में है और सरकारी महकमों में फाइलें हिंदी में रंगे जाने की कवायद जारी है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार और उसके अधीन संगठनों में हिंदी की कई वर्कशॉप आयोजित कर प्रतिभागियों को सरल हिंदी का सरकारी कामकाज में प्रयोग कैसे करें के गुर सिखाए जा रहे हैं। सीख तो लोग रहे ही हैं और हर साल सीखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रयोग वर्ष पर्यंत करते हैं अथवा हिंदी पखवाड़े या सितंबर माह तक ही यह जागरूकता रहती है। गौरतलब है कि हमारा कानून सरकारी दफ्तरों में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संगठन के चीफ या उच्चाधिकारी को सौंपता है। साथ ही राजभाषा से संबंधित कार्यों में सहयोग, मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि इस ढांचे पर हम गौर फरमाएं तो पाते हैं कि हिंदी को लागू करने के लिए दो स्तरों पर प्रतिबद्धता अनिवार्य है। पहला वह जो राजभाषा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि संगठन का प्रमुख उच्चाधिकारी या मुख्य प्रबंधक इत्यादि, और दूसरे वे जिन्हें हम मुख्य रूप से हिंदी ऑफिसर या हिंदी के अन्य पदाधिकारियों के रूप में जानते हैं। एक तीसरा पक्ष उन कार्मिकों का है जो व्यवहारिक रूप से हिंदी का कार्य करते हैं। यदि सरकारी कार्यालयों की व्यवहारिक स्थितियों का अवलोकन करें तो यह तथ्य निकल कर आता है कि जहां उच्चाधिकारी या संगठन के प्रमुख के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का प्रश्न है, वहां हमें उस संस्थान के प्रमुख की व्यक्तिगत अभिरुचियों और मिजाज की ओर ताकना पड़ता है। यदि संगठन का प्रमुख हिंदी भाषा के प्रति कुछ रचनात्मक लगाव रखता है तो वह इसके लिए प्रयास करता है, अन्यथा अधिकतर का रुख हिंदी के प्रति उपेक्षित ही रहता है। दुर्भाग्य की स्थिति तो तब बनती है जब ऐसे पदों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही लोग आसीन होते हैं परंतु अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता से वे मुक्त नहीं हो पाते। इसमें से कुछ अपने संगठनों में हिंदी को प्रोत्साहन की बात करते भी हैं तो उनकी निगाह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिए

0: जाने वाले पुरस्कारों पर गड़ी रहती है। हमें यह मानना होगा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम उसकी सेवा निस्वार्थ रूप से अपना पुनीत कर्तव्य समझकर न करें। यह समझना आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। यह भी देखना होगा कि हिंदी अधिकारियों को भी केवल अनुवाद की भूमिका तक सीमित न रखकर प्रशासनिक एवं राजभाषा संबंधी कार्यों में पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। हिंदी कार्यशालाएं भी केवल औपचारिकता न बने बल्कि नोट शीट, पत्र, टिप्पणियां और कार्यालयी आदेश सरल एवं स्पष्ट हिंदी में तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दें। साथ ही सरकारी हिंदी को कठिन और कृत्रिम बनाने के बजाय सरल, सहज एवं प्रचलित हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह भी प्रायः देखा गया है कि हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जो भी नीतिगत दस्तावेज बने वो मूलतः हिंदी में बने और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो, तब निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी के स्वर्णिम दिन प्रारंभ होंगे। अंततः हिंदी के प्रयोग को अतिरिक्त बोझ या दंडात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि सहज और जनोन्मुख प्रशासन के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व करेंगे, हिंदी अधिकारी प्रभावी मार्गदर्शन देंगे और प्रत्येक कर्मचारी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी राजभाषा का वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा। हिंदी के राजकीय प्रयोग की दृष्टि से का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वहीं खा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। बस 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में का क्षेत्र से हिंदी में मूल पत्राचार के लिए अत्यंत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। का से का क्षेत्र में 100%, खा क्षेत्र को 100% तथा गा क्षेत्र को 100% तक हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य रखा गया। खा क्षेत्र के लिए भी का क्षेत्र को 90% और गा क्षेत्र को 90% हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित था। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के लिए 100% तथा हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य का क्षेत्र में 75% और खा क्षेत्र में 50% था। हिंदी के राजकीय प्रयोग की तस्वीर को केवल का और खा क्षेत्रों की उपलब्धियों से नहीं आंका जा सकता। गा क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा विभाग के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के गा क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कहीं 20-30% के आसपास है तो कहीं 40-50% से ऊपर और कुछ मामलों में 60-70% से भी अधिक दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आंकड़ों में गा क्षेत्र में हिंदी पत्राचार 62%, 69% और 77% तक दर्ज हुआ है। यह स्थिति बताती है कि गा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गया है, यह अनेक कार्यालयों में हिंदी पत्राचार, टिप्पण और अन्य कार्यालयीन कार्यों में उसका प्रयोग हो रहा है। फिर भी गा क्षेत्र में एकरूपता नहीं है, कहीं हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत मजबूत है तो कहीं अभी अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है। इसलिए हिंदी को राजभाषा से कामकाज की भाषा बनाने की अगली महत्वपूर्ण चुनौती गा क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को और व्यापक, सहज तथा नियमित बनाना है। यह आवश्यक है कि राजभाषा के प्रति हम सिर्फ एक औपचारिक दृष्टिकोण न रखते हुए अपितु उसे अपना कर्तव्य बोध मानकर उसके क्रियान्वयन का प्रयास अपने कार्यालयों में करें तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब वास्तविक रूप से राजभाषा हिंदी हमारे सरकारी कामकाज में 100% रूप से व्यवहारिक धरातल पर उतर आएगी।
1: अगर अपनी भाषा है तो संस्कृति भी अपनी होगी, संस्कार भी अपने होंगे, दोस्त भी अपने होंगे, समाज भी अपना होगा और देश तो सदा अपना रहेगा ही रहेगा, अखंड और हर दृष्टि से मजबूत भी होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा था, हिंदी भाषा देश की संस्कृति, एकता और भावनाओं को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमसुर रहमान फारूकी, विष्णु खरे और बाल शौरी रेड्डी आदि सभी ने अपने साहित्य से अपनी भाषा और संस्कृति के विकास में अमिट योगदान दिया। इन सबको नमन करते हुए आपसे यही विदा लेते हैं। वाचन

0: ये आकाशवाणी है। आज रात्रि के राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में हम आपको विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा प्रस्तुत मृदंग लय विन्यासम सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू ए मृदंगम लय विन्यासम बाय विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू।
0: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू आकाशवाणी हैदराबाद के प्रतिष्ठित टॉप ग्रेड मृदंगम कलाकार हैं। वे अपनी उत्कृष्ट कला और संगीत के प्रति गहरी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। वे महान मृदंगम वादक एवं आंध्रमणि की उपाधि से सम्मानित स्वर्गीय श्री वाराणसी गंटया शास्त्री के पौत्र हैं। उन्होंने ये कला अपने पिता प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान स्वर्गीय श्री वाराणसी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। श्री मोदी ने SRCC के विद्यार्थियों की भी सराहना की जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है। श्री जोशी ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में

0: महिला टी ट्वेंटी क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 56 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 6 ओवर में 3 विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन पर सिमट गई। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज मलेशिया की जोड़ी को 21-16, 18-21 और 21-11 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India becoming the fastest growing major economy.
2: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector from arts to politics. He added that together 140 crore Indians will make India both Viksit and Atmanirbhar. President Draupadi Murmu today stressed that teachers must be held in the highest esteem as they help India learn and lead. In an article on the occasion of Teachers' Day, President Murmu said encouraging independent thinking in students, igniting their curiosity, promoting the tendency to ask questions and sharpening their capacity for argument and judgment are among the most useful and rewarding dimensions of teaching. Earlier today, President Draupadi Murmu conferred the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers received the awards from the President. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilimay Tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastav, said today work was also underway to construct an access road from nearby Siatrubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastav elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not possible. India continues to assist Nepal in the humanitarian assistance and disaster relief operations. In the country's risen to 1,344, rescue operations are underway in 8 affected districts, while around 5,000 people remain missing. More than 13,000 people have been rescued.
3: सनियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं.
4: Telling these stories with real pleasure.
5: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
6: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता।

0: था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है, जबकि लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आ गई थी। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। इस बीच नेपाल, भारत और चीन की बचाव टीमें बाढ़ प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए संयुक्त अभियान चला रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 72 घंटे के लिए हमले रोकने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने 3 दिनों तक कीव पर कोई हमला न करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय शांति वार्ता के लिए अमरीकी दूतों की कीव यात्रा के मद्देनजर लिया गया। कुछ दिन पहले बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि मानवता के हित में यूक्रेन में युद्ध समाप्त होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत युद्ध रोकने के लिए हर शांति प्रयास का समर्थन करेगा। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच कई वर्षों से संघर्ष जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी जानमाल का नुकसान हुआ है, बुनियादी ढांचे नष्ट हुए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: अमेरिका ने सऊदी अरब के लगभग $5 अरब के संभावित सैन्य हथियार सौदे को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से अमेरिकी कांग्रेस को भेजी गई अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित सौदे में हजारों सटीक निशाना साधने वाली किट, सामान्य इस्तेमाल के बम, कंटेनर, स्पेयर पार्ट्स, सहायता उपकरण तथा तकनीकी और लॉजिस्टिक सेवाएं शामिल हैं। अमरीकी विदेश विभाग ने कहा है कि इस सौदे से सऊदी अरब की सुरक्षा मजबूत होगी और इससे अमरीका की विदेश नीति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। डेनमार्क और यूरोपीय संघ के 4 अन्य देशों ने यूरोपीय संघ से बाहर के देशों में प्रवासियों की वापसी के लिए केंद्र स्थापित करने की एक रूपरेखा पर सहमति जताई है। इन देशों को उम्मीद है कि इन केंद्रों में अगले वर्ष से प्रवासियों को भेजा जा सकेगा। ये समझौता कोपनहेगन में आयोजित बैठक के बाद सामने आया। ये यूरोपीय संघ के उन प्रवासियों को संघ से बाहर तीसरे देशों में भेजने की नई कोशिश है जिनसे चरण आवेदन खारिज हो चुके हैं। इस पहल में डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और ग्रीस शामिल हैं। सात्विक साई राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान के 56 रन के लक्ष्य को भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन पर सिमट गई। श्री चरनी और प्रेमा रावत ने 3-3 और दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। नेपाल में अचानक आई

0: बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 72 घंटे के लिए हमले रोकने का आदेश दिया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अमृत भूषण विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts that 7.8% GDP growth amid global uncertainty is proof of India's economic resilience. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside a Chilime tunnel in the Himalayan nation hit by flash floods. Russian President Vladimir Putin orders 72-hour pause in strikes on Ukrainian capital Kiev. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty reach men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: The Prime Minister said Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence.
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है, तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है। और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है, तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: The Prime Minister added that together 140 crore Indians will make India both Vikasit and Atmanirbhar. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilime tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastav, said today work was also underway to construct an access road from nearby Syabrubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastav elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not possible. India continues to assist Nepal in the humanitarian assistance and disaster relief, HADR, operations in the country. Separately, a Bailey Bridge is being built in Devi Ghat to restore connectivity affected by the August 26 floods and landslides. The joint effort underscored active cross-border disaster response and technical collaboration between Indian specialists and Nepalese defense forces. Mr. Srivastav highlighted India's commitment to supporting Nepal through both technical expertise on site and humanitarian aid for surrounding communities. Meanwhile, the death toll from the devastating flash floods in Nepal has risen to 1,344. Rescue operations are underway in 8 affected districts, while around 5,000 people remain missing. More than 13,000 people have been rescued so far. Chief Justice of India, Justice Suryakant, today emphasized on the importance of the culture of health.